100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 18 जून सन 2026, सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा प्रारंभ हो रही है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

सुप्रभात आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से सजी पुष्पांजलि, जो आपके मन को शांति, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कर देगी। मैं रतन आपके साथ हूं, तो आइए श्रद्धा के इन स्वरों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान गणपति की वंदना के साथ ओम श्री गणेशाय नमः।

भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का विस्तार करना भी है। आइए कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। ओम नमः शिवाय।

प्रातः के 6:11 हुए हैं। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि, आज अपने दोस्त रतन के साथ। भक्ति का एहसास अति सुंदर है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु स्वयं हमारे समीप आ गए हों। भक्तजन कहते हैं, भक्ति की धारा जितनी गहरी होती है, जीवन उतना ही सरल और आनंदमय हो जाता है।

भक्तजनों, भक्ति का हर पहलू जीवन को नई दिशा देता है। ये केवल प्रार्थना या भजन गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, सेवा और विचारों में भी झलकती है।

भक्ति का सबसे बड़ा रूप सेवा है, ऐसा कहा गया है। सेवा ही सच्ची पूजा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह भक्ति का सबसे पवित्र स्वरूप बन जाती है, और ऐसी भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए हम भी सेवा भाव को पूर्ण रूप से अपना कर भक्तजनों की सेवा करें और प्रभु का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करें।

प्रातः के 6:30 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि 100.7 FM रेनबो पर। ईश्वर का प्रेम ऐसा है जो बिना किसी शर्त के होता है। वे हमें हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं और हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे हित में होता है।

दीजिए जाने की अनुमति। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम सदाबहार गीत बिल्कुल तैयार है न्यूज ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो।

करता हूँ आपके जीवन में शांति, सुख, सुख और समृद्धि का संचार करें। आज का ये दिन आपके लिए मंगलकारी और शुभ हो, इसी कामना के साथ अब आज की पुष्पांजलि से अपने दोस्त रतन को

नमस्कार, प्रातः के 7 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच हाल के समय में सहयोग और आपसी संपर्क में निरंतर वृद्धि हुई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के रूप में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा तथा 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन का प्रारंभ होगा। उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इस अवसर पर वृक्षारोपण कर हरित पर्यावरण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने सूचना विभाग द्वारा लगाई गई सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में कल खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170

रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44.3 ओवर में 232 रनों पर ही सिमट गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, 7:04 का समय और साथ में कुछ सेकंड्स 39, 40 और 41, ये सेकंड्स लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और हमसे कहते हैं कि जैसे हम कभी नहीं रुकते, वैसे आपको भी अपनी लाइफ में कभी नहीं रुकना है। जीवन में चाहे जितने ही परिवर्तन क्यों ना है, उन सभी परिवर्तनों को स्वीकार करते रहिए और अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहिए। तो बस इसी बात को फॉलो करते हुए हम भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात हुई और ये देखिए 7:05 का समय हो चुका है और प्रोग्राम भी बदल चुका है, यानी कि पुष्पांजलि से अब हम आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट शो सदाबहार गीत पर। और सदाबहार गीत में आज मैं रतन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत जो कि होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और कुछ मीठी मीठी बातें साथ में होंगी, आपकी प्यारी प्यारी मेल्स भी, उनको भी हम ज़रूर आपके लिए पढ़ेंगे। तो आज इस प्यारे से मौसम में, इस सुहावनी मौसम में आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, आज के इस प्रोग्राम का आनंद उठाइए। मैं रतन आपके साथ हूँ और आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे आपके अपने प्यारे से शो, आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर। तो बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं, इस प्यारे से गीत के साथ आज के इस शो का आगाज़ कर चुके हैं, बस इसे सुनिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।

और वाकई में दोस्तों इस खूबसूरत मौसम में अगर इतनी प्यारी प्यारी साथ, इतना प्यारा सा साथ और इतना प्यारा सा एहसास मिल जाए तो वाकई में ये दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ मुलाकात होती है और इस खुशी को, इस आनंद को हम पूरी तरह से महसूस करते हैं, फील करते हैं और आप अपनी मेल्स के माध्यम से भी हमें ज़रूर पूरी तरह से महसूस भी कराते हैं कि कितना अच्छा फील आप भी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर। और वाकई में जब हम दोनों यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि आप और हम, तो एक बहुत ही अच्छा सा, खूबसूरत सा यहाँ पे माहौल बन जाता है और वो माहौल डिस्क्राइब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल, शब्द कम पड़ जाएंगे उन बातों को आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन एहसास कीजिए, फील कीजिए, बहुत अच्छा लगता है इस प्यारी सी सुबह में जब आप बिल्कुल फ्रेश होकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त बाहर से घूम कर आ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त अभी चाय की चुस्कियों के साथ अपने सुबह के सारे कामकाज निपटाकर आराम से एक हाथ में पेपर, एक हाथ में चाय का प्याला और सामने रेडियो जिस पे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। वाकई में ये पल बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त भी अभी बिस्तर पर सोए हुए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बस ये थोड़ा सा इंतज़ार है कि चलिए ये प्रोग्राम और बीत जाए, इसको पूरा लेटे लेटे सुन लेते हैं और उसके बाद उठेंगे, तब जाके फ्रेश होंगे, आगे के काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों समय काफ़ी हो चुका है, देखिए बाहर धूप भी खिल चुकी है, तो बस उठ जाइए और हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए। अगला गाना सिर्फ आपके लिए आपके अपने रेडियो सेट पर ये रहा, इसे एंजॉय कीजिए और अपने दोस्त रतन का साथ इसी तरह निभाते रहिए। सुनते रहिए सदाबहार गीत।

दोस्तों 7:15 का समय हुआ है और आपके मेल्स सुबह 6:30 से ही 6:15 से ही हम तक पहुंचने लगी थी और लगातार बहुत सारी मेल्स हम तक आ भी चुकी हैं. उन मेल्स को भी हम थोड़ी देर में ज़रूर शामिल करेंगे. लेकिन सदाबहार गीत ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत खास है, बहुत ही खूबसूरत है. इसमें वो गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं जो हमेशा से आपकी पसंद रहे हैं और हम वो गीत ही प्ले करने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करते हैं जो आपको हमेशा से पसंद आए हैं, पसंद रहे हैं और आगे भी पसंद रहने वाले हैं. कोशिश हमारी बस यही रहती है और उसमें आप हमें अपना पूरा साथ भी देते हैं. दोस्तों मोहब्बत की अगर बात करें तो मोहब्बत समय के साथ और भी ज़्यादा मीठी होती जाती है ना. बहुत अच्छा लगता है जब मोहब्बत की बात होती है. दोस्तों मोहब्बत शांत नदी की सरीखी, जहाँ हर मोड़ पर विश्वास की मिठास घुली रहती है. मोहब्बत जीवन साथी का साथ निभाना है, हंसी में, आंसू में, हर पल में. ये वो बंधन है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है. और सुबह की इस ताजी हवा में मोहब्बत की खुशबू पूरी तरह से हम बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें आपका ये जो साथ है ना, इस खुशबू को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसके एहसास को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है. बस ये एहसास यूं ही बरकरार रहे, हम यही दुआ करते हैं. ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए. आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए FM रेडियो.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और एक शेष जानकारी आपके लिए, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। आप हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए इस प्यारी सी सुबह में, 7:26 का ये प्यारा सा समय। और आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं दोस्तों, कि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इस प्यारी सी सुबह को एंजॉय भी कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन एक चीज़ हम सभी के साथ बहुत कॉमन सी होती है कि हम जब सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद ऑफिस से निकलने की तैयारी करते हैं और कोई भी काम करने के लिए अगर निकलते हैं, तो उससे पहले एक ये होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया जाए। क्योंकि खाए पिए बगैर अगर बाहर निकलते हैं तो अक्सर ये होता है कि भैया फिर कोई नहीं पूछता, है ना। होता अक्सर यही है कि जब हम खा पी के अगर निकलते हैं तब तो बहुत सारे लोग आइए आइए आइए खाइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन अगर जिस दिन हम अपने घर से कुछ खा के ना निकलें, तो अक्सर हमारे साथ तो कई बार हो चुका है, तो आपके साथ अब हुआ है कि नहीं ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन होता अक्सर यही है कि जब आप खा पी के नहीं निकलते अपने घर से, तो बस ये होता है कि फिर तो सब भैया पहले ही से खाए पिए बैठे रहते हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है। लेकिन इस बात के साथ एक बात हम ये भी जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग सुबह के नाश्ते में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, बहुत टेस्टी चीज़ें खाना पसंद

करते हैं, और मैक्सिमम लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ चाय और उसके साथ कुछ स्नैक्स पसंद करते हैं, यानी कि बिल्कुल हल्का फुल्का, ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट लें तो वो थोड़ा हेल्दी भी हो और साथ में वो थोड़ा ज़्यादा भी आप खाएं, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से बरकरार रहे और आप दिन भर अब उस एनर्जी के साथ काम कर सकें, यानी कि दोपहर तक तो काम कर ही सकें। दोपहर में जब आप लंच लेंगे तो उस वक्त दोबारा एनर्जी आपके पास आ जाएगी, लेकिन इतनी देर की एनर्जी के लिए बहुत सारे लोग तो हमने देखा है कि बाहर जब निकलते हैं तो दुकानों पे, मतलब हलवाई की दुकान पे बढ़िया समोसे कोई खा रहा होता है, कोई जलेबियाँ खा रहा होता है दही के साथ, तो वो एक नाश्ता होता है। दूसरा एक नाश्ता ये होता है कि भाई सुबह सुबह आलू भरे पराठे खा लिए जाएँ दही के साथ, तो वो भी एक हैवी नाश्ता हो जाता है ना, नाश्ता होता है। तो आप किस तरह का नाश्ता पसंद करते हैं, या फिर आपने अभी किस तरह का नाश्ता किया, आप हमें बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है akashvani@gmail.com। लेकिन हाँ, ये है कि आप जो भी करें, जिस तरह का भी नाश्ता करें, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हेल्दी हो। बहुत सारे लोग अगर हेल्दी नाश्ते की बात करें तो उसमें स्प्राउट्स लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, उसके साथ दूध लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि उसमें सुबह सुबह बन मक्खन और अंडे खाते हैं, दूध के साथ केले खाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हेल्दी जो ऑप्शन है वो हमें ज़रूर चूज़ करना चाहिए, ताकि हम जो भी अपने शरीर में लें, इनटेक करें, वो हमारे पूरे दिन की एनर्जी में पूरी तरह से हमारा साथ निभाए। और जब तक अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता या भोजन नहीं होगा, तब तक शायद किसी और कार्य को करने में मन ही नहीं लगेगा। ये मेरा मानना है। अब आप बिना नाश्ते के भी आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो भैया नहीं होता है, बिना खाए घर से निकलना इम्पॉसिबल है। और नाश्ता वो भी कायदे वाला होना चाहिए, कि मतलब जो हम खाएं तो वो एनर्जी भी हमें दे, ये नहीं कि जल्दबाजी में खा लिया और बस हो गया। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह का नाश्ता प्रेफर करते हैं, सुबह सुबह हेल्दी वाला या फिर जलेबी और समोसे वाला, आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल 7:30 का समय हुआ है और ये प्यारा सा गीत बिल्कुल आपके लिए तैयार है, आप इसे एंजॉय कीजिए हमारे साथ, इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए। मैं रतन हूँ आपके साथ, आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर।

क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। बहुत प्यारी सी आवाज लता जी की, और उनका साथ निभा रहे थे किशोर कुमार साहब। लिरिक्स थे आनंद बख्शी साहब के और म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का। और वाकई में दोस्तों, ये जो गाना है इसके लिरिक्स बहुत खूबसूरत, और इस गीत को आपने सुना फ्रॉम द मूवी रॉकी। 7:36 का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत। आप हैं हमारे साथ, यानी कि अपने दोस्त रतन के साथ, जो कहता है आपके दिल की बात। और बहुत सारी बातें आपने अपने दिल की हम तक पहुंचा भी दी हैं, उन बातों को भी हम अब तक अब ज़रूर ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारे पास जो आज की पहली मेल आई है वो किन की आई है पता है आपको? तेज बहादुर साहब की। और ये हम कहते हैं, रतन सर जी सुप्रभात, राम राम, कैसे हैं आप? तो हम बहुत अच्छे हैं, और आशा हम यही करते हैं तेज बहादुर जी कि आप भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत सुंदर भक्तिमय गीत सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया, और सुबह सुबह ऐसे सुंदर सुंदर गीत सुनकर हमारे दिन की शुरुआत होती है। मैं आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मधुर आवाज़ में और आपकी

मीठी मीठी प्यारी मधुर आवाज में तो पता ही नहीं क्या जादू है सर जी, आपके द्वारा कहे एक एक शब्द सुनकर अलग ही आनंद आता है दिल को। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये हमें गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी, ऐसा इन्होंने कहा है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तेज बहादुर साहब, और आप हमारे साथ मॉर्निंग से ही जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मनीष यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेल के माध्यम से। माय डियर रतन सर, गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार यादव, सदरापुर, सिधौली, सीतापुर। कुछ पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। इंसान को धन की नहीं, सम्मान और अपनापन की ज़रूरत होती है। कभी कभी एक अच्छा व्यवहार और प्रेम से बोले गए शब्द किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी मुस्कान भी आपको पसंद आती है आवाज़ के साथ साथ। हर दिन की तरह आज भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग्स लाजवाब। थैंक यू। पूरी मेल हमने आपकी पढ़ी है मनीष जी, कोई शिकायत मत कीजिएगा। सुल्तान रजा साहब ने भी हमें मेल कर दिया है। सर रतन सर कैसे हैं आप, मेरा मेल शामिल कर लीजिएगा। आज मैं चंदौसी आया हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम भी एंजॉय कर रहा हूँ। कुतुबखाना सब्जी मंडी रायबरेली से सुल्तान रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, इकबाल रजा और मम्मी पापा। साथ में इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान भी दिया है, चलिए वो भी हम आप तक बांट ही देते हैं। इन्होंने कहा है कि लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना। वो बात क्या है? झाड़ू लगाओगे तो आगे जाओगे और पोछा लगाओगे तो पीछे। ज्ञान बहुत है, बस कभी घमंड नहीं किया, ऐसा इनका कहना है। अच्छी बात है, घमंड करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब अपना ज्ञान ऐसे ही बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार साहब की भी मेल हम तक पहुंची है। सुप्रभात सर, कैसे हैं? रायपुर उदाला मिठौली रखीमपुर खीरी से हमें आप मेल कर रहे हैं। अशोक कुमार जी, सदाबहार गीत प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है और इनको हमारी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, हमें आपकी मेल भेजने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा लगता है। सुधांशु साहब की भी मेल हम तक पहुँची है। राधे राधे सुधांशु जी, ऐसा हमें कह रहे हैं, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट मोहाना, थाना टोंजा, बख्शी का तालाब, ज़िला लखनऊ से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। कह रहे हैं पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम सदाबहार गाने, जो सदाबहार में गाने बज रहे हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। आपने पुष्पांजलि कार्यक्रम में भजन बहुत अच्छे बजा और आज हमारे नाना जी की दूसरी पुण्यतिथि है। आपकी नाना जी की आत्मा को शांति मिले, हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं और हम अपने नाना जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नाना जी हमसे कहा करते थे कि सुधांशु तुम कभी भेदभाव और जातिवाद मत मानना, सब एक हैं। मिस यू नाना जी। तो बिल्कुल सही बात आपके नाना जी आपको बता गए हैं कि भेदभाव हमें कभी नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हो और चाहे जो कुछ भी किया जाए। उमा शंकर शर्मा जी की भी मेल हम तक पहुंची है और कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग रतन जी, एक बात बताना है कि आप इतने सुंदर सुंदर भजन और गाने कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक से बढ़कर एक लाजवाब भजनों से सराबोर कर दिया आपने, स्पेशली श्याम बाबा का भजन। ओके, क्या बात है कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं और सारे भजन तो आपको पसंद आते ही, और वो उनमें से कौन सा भजन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी आपने लिखा, श्याम बाबा जी का भजन आपको पसंद आया। चलिए बहुत अच्छा लगा हमें, हम आगे भी इसी तरह की कोशिश करते रहेंगे ताकि आपको प्रोग्राम और भी ज़्यादा अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामना आपको भी। ये मेल हमें मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा से लिखी उमा शंकर शर्मा साहब ने, बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बातों को सुनकर। विनीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए और उनका भी स्वागत करते हैं। अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, सदाबहार गीत प्रस्तुत करने वाले रतन सर जी को शुभ मॉर्निंग शुभ प्रभात का सादर प्रणाम करता हूँ। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम। विनीत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बिल्कुल, मैंने स्वीकार कर लिया है सर जी। सुबह का नमस्कार, आज पुष्पांजलि आपने कुछ हटके किया, भजन अच्छे लगे और सदाबहार गीत भी सुपरहिट चल रहा है। 5:55 से सुन रहा हूँ आपको, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। अरे, हमारा साथ निभाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लगातार हमारे

साथ जुड़े रहते हैं और हमारा हमको पूरी तरह से हौसला हमारा बढ़ाते हैं कि हाँ हमें भी ये फील होता है पूरी तरह से कि हाँ अगर हम यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और लगातार वो हमसे जुड़कर हमें सुन रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। निधि चौरसिया जी की भी मेल हम तक पहुंची है लेकिन मेल करने वाली हैं शालिनी चौरसिया फ्रॉम बालागंज लखनऊ से। आज बहुत दिनों के बाद पुष्पांजलि सुना बहुत अच्छा लगा सदाबहार के सॉन्ग माइंड ब्लोइंग। ओके थैंक यू सो मच शालिनी जी और आप इसी प्यार के साथ हमारे साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू सो मच कि आप लगातार हमें मेल भी करती हैं और इस तरह की मेल पढ़ने से और सुनने से हमारा भी हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि रोशनी रावत जी की भी मेल हम तक पहुंची है। जय श्री महाकाल सर जी आप कैसे हैं और अंजू मैम जी को जय माता दी बोल दीजिएगा। सर जी मेरा नाम रोशनी रावत है तो मैं अंजू जी को बिल्कुल आपकी तरफ से बोल दूंगा और उनकी तरफ से भी आपको जय माता दी। गाँव बम्हना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से ये हमें मेल कर रही हैं। चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं पुष्पांजलि सदाबहार गीत इन्हें अच्छे लगे सुबह से शानदार प्रस्तुति सुनकर मन प्रसन्न हो गया। रोशनी रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और भी बहुत ढेर सारी मेल हैं लेकिन लगातार इतनी सारी मेल्स सुनकर अब आप भी कह रहे होंगे कि यार भैया आप थोड़ा गाना वाना भी सुना दो सुबह सुबह क्या यार तुम लगातार बात करते चले जा रहे हो हमें सुना नहीं रहे हो गाने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके मेल्स भी बहुत महत्व रखती हैं हमारे लिए इसीलिए उनको भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन अभी समय हो चुका है इस प्यारे से गीत का इसे एंजॉय कीजिए आपके अपने प्यारे से सदाबहार गीत पर।

वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम सदाबहार गीत। 7:49 का समय, और समय इसलिए हम आपको लगातार बताते हैं कि आप हमारे साथ लगातार समय के साथ आगे बढ़ते रहें। और जब आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये बात याद रखिए, आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं होंगे। बिल्कुल, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहेंगे। उसका सबसे अच्छा रीज़न यही है कि पॉजिटिविटी के साथ अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बताइए हमने तो बहुत थोड़ा सा प्रयास किया लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हो गई, सॉल्व हो गई, हल हो गई, कैसे हो गई पता नहीं लेकिन हो रही हैं। तो ये होता है पॉजिटिविटी का असर, और इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें और दूसरों के साथ जब भी मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें, क्योंकि मुस्कुराने से ना आपके अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो तो आपकी हेल्थ को और भी ज़्यादा मजबूत करते ही हैं, आपके चेहरे पे एक निखार लाते हैं, साथ में सामने वाले के चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। और हम जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को लगता है कि हाँ हम कुछ भी करेंगे और किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत कठिन काम है, करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो वाकई में आपको भी जो अंदर से फीलिंग होगी ना वो बहुत नेचुरल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिए बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि हमारी बातों से, हमारी हर गीत से आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आए, और शायद मैं इस अपने कार्य में पूरी तरह से सफल भी रहता हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कान भी आती है। देखिए स्माइल आ गई ना आपके चेहरे पर। तो बस ये स्माइल हमेशा यूं ही बरकरार रखिए और हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए। और भी मेल्स आई हैं, चलिए उनको भी ले लेते हैं। हमारे पास मेल आई है ब्रजेश सिंह साहब की, प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट रतन सर जी। अच्छा, हम आपके फेवरेट हैं, हमें पता चला, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून मिला कि हम भी किसी के फेवरेट हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अपने फेवरेट आरजे के साथ सुनकर दिन और भी अच्छा हो जाता है। अरे वाह, पुष्पांजलि सुनकर मन एकदम भक्तिभाव में खो जाता है, बहुत अच्छी बात है। इटावा कैसरगंज बहराइच से ब्रजेश सिंह जी ने हमें मेल की हैं, और राधे श्याम जी की भी मेल हम तक पहुंची है। राधे श्याम साग के कासगंज से हमें मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग रतन सर जी और समस्त श्रोताओं को भी नमस्कार, प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन इन्हें अच्छा लग रहा है, ओके लाजवाब है। मैं OTS मूंग, अच्छा OTS नहीं ओट्स लिखा है इन्होंने, ओट्स मूंग बेसन का चीला नाश्ते में फीकी चाय के साथ खाता हूँ, नाश्ते से पहले शुगर की टैबलेट लेता हूँ, नाइस प्रेजेंटेशन थैंक्स। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को पूरे कंट्रोल करके नाश्ता करते हैं, शुगर की टैबलेट भी एवरीडे लेते हैं, बिल्कुल नियमित से हर चीज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा इस एक्टिविटी को जारी रखिएगा। वारिस अली साहब की मेल आई है और नमस्कार के साथ इन्होंने लिखा है, आनंद लूट ले बंदों प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाएगा साथ जिंदगी का। एक बात कहें वारिस अली जी, आप जो दो लाइनें लिखते हैं कभी कभी बहुत खूबसूरत लिख जाते हैं, और वाकई में अगर ये आपकी अपनी है तो बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं, और इस अपनी इस

जो कला है इसको जरूर आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। पुष्पांजलि, आपने बहुत अच्छा किया, भजन सुनकर मन श्रद्धा से भर गया, थैंक यू सो मच। आप सदाबहार गीत भी इन्हें पसंद आ रहा है और मेरा पसंदीदा गीत है, जैसा कि इन्होंने लिखा कि क्या यही प्यार है रहा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, मैं बिना नहाए धोए चाय तक नहीं पीता हूँ, जब GML स्टार्ट होगा तब आज मैं दलिया लूँगा। क्या बात है ये बात बहुत अच्छी की कि बिना नहाए धोए कुछ नहीं लेते हैं, मतलब पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद ही आप नाश्ते की टेबल पर जाते हैं और नाश्ता करते हैं। संजय नगर अशबाग लखनऊ से ब्रजेश जी की मेल हम तक पहुँची है, राम मोहन गुप्ता साहब ने पंक्तियों के साथ अपनी मेल हम तक पहुँचाई है, टॉनिक भरे गीत ऐसा इन्होंने शीर्षक दिया है। साथियों संग भ्रमण कर योग पार्क में, सुन रहे FM मस्ती भरे अनुराग में, सुबह के नाश्ते हित हेल्दी फूड की बातें जो दें एनर्जी, आप बड़े सुंदर तरह बताते, प्रातः भ्रमण के बाद अंकुरित मूंग व फल यथासंभव लेता हूँ, कुछ एक हेल्दी फूड संग, क्या बात, सबसे बड़ी बात है टॉनिक भरे मधुर गीत सुनकर रहता हूँ मस्त, लेते ये दिल जीत, थैंक यू सो मच राम मोहन जी। आप अपने आपको अमर भी कहते हैं, वाकई में आप अमर हैं, लखीमपुर खीरी से आपने हमें ये मेल की है और बहुत अच्छा अंदाज हमेशा की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया। 7:54 का समय हो चुका है फ्रेंड्स और बहुत सारी मेल्स लगातार आपकी हम तक पहुंची हुई हैं। अगली मेल किनकी है, मैं सौरभ प्रजापति उत्तर प्रदेश ज़िला अमेठी ग्राम गौतमपुर, ओके सर जी सुप्रभात, तो लो हम भी आपसे पूछ लेते हैं, आप खाना खा के आए हैं या जाकर खाएंगे, ये मजाक है सुबह सुबह खाना नहीं खाते हम हमारे घर में कढ़ी चावल बन गई है, रोटी बहन बना रही है, आइए फिर खाने के लिए। सर जी आपने पूछा है हमसे, ओके ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ज़रूर हम आएंगे। सर जी हम तो बिना नहाए तो खाते हैं चाहे 10 बजे या 12 बजे, अच्छा बिना नहाए नहीं खाते हैं चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, हम नाश्ता नहीं करते, हम सिर्फ खाना खाने पर टूटते हैं, लेकिन खाने से पहले हम गाय के लिए थोड़ा अपनी थाली से निकाल कर अलग करते हैं, ओके, और उसको कटोरी में रख देते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं, क्या बात है। कैशन बानी सर जी, और मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा कैशन बानी सर जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आप भी बहुत अच्छे होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नाश्ता आप नहीं लेते हैं, आप सीधे खाना खाते हैं चाहे 12 बजे चाहे 10 बजे, आप सीधे खाने पे टूटते हैं और अपनी थाली से गाय के लिए पहली कौर ज़रूर निकालते हैं, बहुत अच्छी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। पृथ्वी सॉरी प्रवीण खत्री जी की भी मेल हम तक पहुंची है, रतन जी सुप्रभात, आकाशवाणी लखनऊ परिवार का मेरा सादर प्रणाम, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। रतन जी आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, अच्छा सुरीली है, ओके, कौन कौन से सुर मैं लगाता हूँ अभी आपने रॉकी फिल्म का गाना सुनाया, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रवीण खत्री ये एड डिज़ाइनर हैं और होशंगाबाद से हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पवन कुमार साहब की मेल आई है और सिंगापुर सिधौली सीतापुर से कह रहे हैं, और प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, पुष्पांजलि में भजन इन्हें बहुत पसंद आए, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र सिंह की भी मेल हम तक आई है, संबंध ही एक ऐसा वृक्ष है जो भावनाओं के सामने झुक जाता है, स्नेह के जरिए अंकुरित होता है और शब्दों द्वारा टूट जाता है। सुप्रभात सुरेंद्र सिंह अधिवक्ता, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। पंचायत तेलवारी रामनगर बाराबंकी से इन्होंने हमें मेल किया है, तो बहुत सारी मेल लगातार हम पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी मेल्स, राजेश कुमार साहब की, मोहम्मद शादाब खान की, राम सेवक की, योगेंद्र कुमार साहब की, शैलेश कुमार की, रामराज की, विनीत कुमार जी की मेल हम तक पहुँची हैं, लेकिन अब जाते जाते एक प्यारा सा गीत हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम यानी कि 8:15 पर आप तक पहुंचेगा गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिस पर मैं तो आपके साथ रहूंगा, एक प्यारी सी दोस्त भी आपको ज्वाइन करेंगे और ठीक 8 बजे आप तक पहुंचेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घ

0: तात्कालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन

0: एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी

0: अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वैष्णव हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा जो आपको बनाए ऊर्जावान
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान जन्मदिन जयंती या मुद्दे पर आपकी बात
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

0: मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें हैं अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए हैं कुछ गलत फहमियां भी जरूरी।
1: क्या बात, क्या बात, क्या बात। और वाकई में दोस्तों, कुछ गलत फहमियों से अगर जीवन अच्छा चल रहा है तो उन्हें पाल लेना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम कभी ना कभी इंडिया के बाहर जाएंगे और हवाई जहाज में बैठेंगे और ये ख्वाब पाल लेना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।
0: नहीं नहीं, लेकिन ये ख्वाब आपका पूरा हो, हम ऐसी दुआ करेंगे। ठीक है, वैसे इंडिया में सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत
1: नहीं है। बिल्कुल सही बात है।
0: चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का 100.7 एफएम रेनबो पर, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। 8:17 का वक्त, मैं हूं अंजू शुक्ला और हमारे साथ है प्यारी सी मीठी सी आवाज के साथ आपका अपना दोस्त
1: रतन। जी हाँ दोस्तों, और सुबह से मैं आपका साथ निभा रहा हूँ और अब हम दोनों आपका साथ निभाएंगे और आप पूरे जोश के साथ हमारा साथ जरूर दीजिएगा।
0: यकीनन आप हमारे साथ रहेंगे तो ये सफर खूबसूरत होगा। आपसे 10 बजे तक स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्र।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। और दोस्तों, आपके दो दोस्त इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, अंजू और रतन आपके साथ। हर सुबह ये याद दिलाती है कि जीवन हमें एक और अवसर दे रहा है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ नया सीखने का और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का।
2: जी हाँ, बिल्कुल। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा भी आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, और वो इसलिए क्योंकि आपको काम

0: का ब्रेक दिलवाने वाले हैं जी हाँ, आज का मॉर्निंग मंत्र आपसे कहना चाहता है कि काम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जिंदगी केवल काम का नाम नहीं है। कभी कभी अपनों के साथ बिताया गया एक घंटा भी पूरी सप्ताह की, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की थकान मिटा देता है।
1: क्या बात है, वाकई में ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। और आप ने अगर कभी फील किया हो अपने के साथ बैठकर, तो वाकई में आपकी जो जितनी भी थकान है ना, वो पल भर में मिट जाती है और आपको पूरा एनर्जी से भर देती है।
0: बिल्कुल, तो बस अपना अपने जो काम वाली जो हेक्टिक लाइफ है ना, उसे एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है जिस पर हम बात करेंगे आगे। तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। अभी तो हमने बस सफर शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ है आना बाकी आपके लिए।

0: भाई हवाओं का इशारा समझ में आया कि नहीं आया, मतलब पहले बताइए रतन।
1: जी हाँ बिल्कुल समझ में आया, और हवाओं के इशारे के साथ ही हमें भी आगे बढ़ना है, हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और
0: हवाएं इशारा ये कर रही थी और गाना भी इशारा ये कर रहा था कि मॉर्निंग मंत्रा हमने बताया ना कि छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है, अपने अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, काम तो चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, है ना।
1: जी हाँ दोस्तों, काम का क्या है, वो तो चलता रहेगा आगे पीछे, अपनों के साथ टाइम जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको बिताना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और ये गाना भी यही कह रहा था कि थोड़ा रुकिए, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है और जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए कि ये पल हमारा आखिरी हो, ऐसे ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, लेकिन मतलब जो जज्बा है वो बनाकर रखना चाहिए।
1: अच्छा, जब यहाँ पे आते हैं तो लगता है जिंदगी वाकई में बहुत खुलकर जी रहे हैं।
0: नहीं नहीं, हम तो हमेशा खुलकर जीते हैं, आप यहीं पे जीते होंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ और हो जाता है क्या?
1: नहीं नहीं, जो एक्साइटमेंट होता ना यहाँ का बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने लिसनर के साथ मिलने का, उनके साथ अपनी बातें बांटने का, शेयर करने का जो एक्साइटमेंट होता है वो आई थिंक हमें कहीं और नहीं मिल पाता।
0: बिल्कुल।

0: बातें कहीं और कर ही नहीं पाते ऐसे.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और आज जो स्पेशल डे है वो तो आपको और ज्यादा एंटरटेन करने वाला है. पता है क्यों?
0: जी क्यों?
1: क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस.
0: क्या बात है वाकई में.
1: पिकनिक का नाम आते ही मतलब एक्साइटमेंट अपने आप ही डबल हो जाता है.
0: वो बचपन वाला जो एक्साइटमेंट है ना वो अभी भी पूरे बॉडी में रौन जाता है. अरे यार पिकनिक जाना है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और इंटरनेशनल पिकनिक डे हो तो फिर ये तो बनता ही. और पिकनिक की जब बातें होती हैं तो पिकनिक वाला मूड तो हमने सुबह से बना ही दिया आप लोगों
0: का. बना दिया है.
1: और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय अनौपचारिक दिवस है. मतलब अनऑफिशियल डे है लेकिन ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है. और इसका सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि परिवार और दोस्तों के साथ प्रकृति के बीच में, जी हाँ, नेचर के बीच में समय बिताने के लिए हम इंस्पायर्ड हों.
0: बिल्कुल सही बात आपने कही. और दोस्तों जब इस दिन लोग पार्कों में, बागों में, समुद्र तटों पर या पहाड़ों पर जाकर खुली हवा में भोजन करते हैं या प्रकृति की खूबसूरती आनंद लेते हैं तो ये व्यस्त जीवन शैली से एक सुखद विराम है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. बच्चों और बड़ों सभी के लिए पिकनिक एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है.
1: बिल्कुल. तो चलिए आज का मुद्दा हम इसी से जोड़ते हैं.
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा.
1: जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस है तो बस मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलिए, पेड़ों की छांव में बैठिए, परिवार के साथ हंसिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए क्योंकि यादें किसी ऐप में नहीं अपनों के साथ बिताए पलों में ही होती हैं.
0: बिल्कुल सही बात.
1: तो और ये आज का जो स्पेशल डे है ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है.
0: बहुत सारी बातें करना चाहता है, बहुत सारी यादों को फिर से रिन्यू करना चाहता है.
1: बिल्कुल. तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस पर बस इतना सा आपसे सवाल या हम कह सकते हैं मुद्दे पर आपकी राय कि आपकी सबसे यादगार पिकनिक कौन सी रही है, कभी पिकनिक पे गए भी हैं या नहीं, और अगर आज पिकनिक पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ पिकनिक पर जाना चाहेंगे, और पिकनिक जैसी जो फीलिंग होती है, जो ब्रेक होता है एक तरह से फैमिली के साथ बाहर टाइम स्पेंड करना और खासतौर पर नेचर के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में टाइम स्पेंड करना, वो आपको कितना इंस्पायर करता है, कितना जरूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए.
0: तो हमें बताइए अपनी राय. हमें बताइए अपनी राय. आपको अपनी राय हमें पहुंचानी है हमारी मेल आईडी के माध्यम से fmakashwani@gmail.com. इस मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और इंटरनेशनल पिकनिक डे पर आप क्या फील कर रहे हैं हमें बताइए.

0: बिल्कुल जुनून बरकरार रखिए, जिंदगी को खुलकर एंजॉय कीजिए, और इसीलिए आज का जो डे है इंटरनेशनल पिकनिक डे, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता था तो चलिए हम बता देते हैं कि इंटरनेशनल पिकनिक डे है, और ये सिर्फ इस वजह से भी मनाया जाता है कि लोगों को प्रकृति के नज़दीक जाने की प्रेरणा दी जा सके, है ना।
1: पिकनिक का मतलब ही यही है कि आप अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसे थोड़ा सा ब्रेक लें, और ब्रेक लेने के बाद आप ऐसे माहौल में जाएं जहां आपको दिल का सुकून मिले, दिल को चैन मिले, और वो जगह कुछ ऐसी ही होती हैं जो प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक होती हैं।
0: बिल्कुल, और फायदे बहुत सारे होते रहते हैं, पता है। सबसे पहले तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है, मानसिक तनाव, है ना। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फायदा है वो ये कि परिवार और दोस्तों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है आपको एक दूसरे के साथ, है ना। और दूसरी तीसरी चीज ये कि प्रकृति के बीच रहने से मन प्रसन्न होता है, इसमें तो कोई दो राय
1: है नहीं, है ना।
0: और इसके अलावा बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होता है, या जो भी एक्टिविटीज रेगुलर वे में करते हैं बच्चे नियमित तौर पर, उससे थोड़ा सा एक ब्रेक मिलता है, नयापन आता है, और नई ऊर्जा और क्रिएटिविटी मिलती है।
1: और वाकई में दोस्तों, जब आप अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं या फिर अपने बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम, जैसा कि अभी अंजू ने बताया कि स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, और इसी बहाने यानी पिकनिक के बहाने ही वो शायद बाहर जाते हैं, और बाहर के एक बार जो बाहर का जो माहौल है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, देखते हैं, परखते हैं कि क्या है, क्या अंतर है, किस तरह से वो खास हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस की बात हो गई। इसके अलावा हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आज और भी बहुत सारे खास दिन हैं, वो क्या कहते हैं आपसे और क्या उद्देश्य है उनका, उनको मनाने का। जैसे कि सबसे पहले सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। जिसे 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था, और पहली बार ये 18 जून को 2017 में मनाया गया था। और इसके जो उद्देश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो स्थानीय किसानों का समर्थन, मौसमी और स्थानीय भोजन को बढ़ावा देना, भोजन की बर्बादी कम करना, पारंपरिक खानपान और जैव विविधता का संरक्षण।
1: और दोस्तों एक बात, जैसे कि आपने ये बताया कि ये इसका उद्देश्य क्या है, गैस्ट्रोनॉमी का जो अर्थ है वो केवल स्वादिष्ट भोजन से नहीं बल्कि इस बात से भी जुड़ा है कि भोजन कहाँ से आता है, कैसे उगाया जाता है और किस प्रकार से वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, ये याद दिलाता है कि हमारी थाली केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण, संस्कृति और किसानों से जुड़ी एक पूरी कहानी।

0: है अन्न जब बीज धरती के अंदर जाता है और फिर वो फसल बनकर ऊपर आता है, किसानों की मेहनत रंग लाती है और उसके बाद फिर वो कैसे कैसे कहां कहां से होकर आपकी थाली में पहुंचता है।
1: तो जब कोई भी चीज आप खाने बैठे हैं उससे पहले जब आपकी थाली सजी हो तो ये जरूर सोचिएगा कि आखिरकार इस थाली में जो अन्न रखा हुआ है वो किस तरह से और किस प्रोसेस के बाद और कितनी मेहनत के बाद, कितनी मिन्नतों के बाद हमारी थाली में पहुंचा है।
0: बिल्कुल, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर किया करिए भोजन करने से पहले कि ये अन्न उगाने वाला जो अन्नदाता है वो हमेशा बना रहे, उसकी मेहनत साकार होती रहे और आपको अन्न मिलता रहे, और भोजन बनाने वाले का भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा।
1: जरूर करना चाहिए, अगर उसका नहीं शुक्रिया अदा करेंगे तो फिर तो अन्न रखा रह जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं।
0: नहीं, और मिलेगा अगर तो नमक ज्यादा होगा,
1: नमक ज्यादा
0: होगा,
1: मिर्चा ज्यादा होगा।
0: तो चलिए बस इसी खुशनुमा अंदाज में हमारे साथ जुड़े रहिए, 100.7 एफएम रेनबो को एंजॉय करते रहिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम चल रहा है, मैं अंजू और रतन है आपके साथ, और भी बहुत सारी बातें हमारे साथ, लेकिन उसके पहले एक बढ़िया वाला गाना।

0: अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हाइट कितनी है, ऊंची है, ऊंची है कि कम है. नाप लिया करिए, है ना, मतलब सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, मालूम ही नहीं होता एग्जैक्ट. अच्छा, 5.5 फुट के होंगे, 6 फुट तो हो ही गए होंगे, है ना. कुछ लोग 5 फुट के होते हैं और कहते नहीं हम 5.5 फुट के.
1: 5.5 के.
0: खैर चलिए, जोक्स अपार्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप तक पहुंचानी है. सबसे पहले तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लें ना, तो इस समय तो बिल्कुल फेस्टिवल वाला माहौल है.
1: बिल्कुल पूरी तरह से माहौल छाया हुआ है. और फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो चारों तरफ, यानी कि पूरा विश्व, ये जो नजरें हैं वो इधर ही हैं.
0: फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो बिल्कुल पीक पर है, ये फेस्टिवल का माहौल है. और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो फुटबॉल प्रेमी अपने पास रखते हैं जरूर, कौन सा मैच देखना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं खेलना है, क्या देखना है. और जो लेजेंड्स हैं उनके बेटे, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस समय मैदान में है. बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी जो प्लेयर्स हैं उनके जो अगली पीढ़ी है, उनके सुपुत्र हैं, वो खेल रहे हैं. तो बहुत सारे फुटबॉल प्रेमियों की नज़र बिल्कुल मैदान पर रहती है, टीवी की स्क्रीन पर रहती है, मोबाइल स्क्रीन पर रहती है, वो अपडेट लेते रहते हैं. और अगर अपडेट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, खासतौर पर भारत का जो फीवर है स्पोर्ट्स का, वो खासतौर पर सेंटर उसका अट्रैक्शन जो है
1: क्रिकेट है.
0: हाँ, क्रिकेट है. और जब इकाना स्टेडियम में मैच हो तो भैया लखनऊ वालों का भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वही है. तो कल तो बड़ा धमाकेदार मैच रहा, और कल एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को जबरदस्त धमाकेदार शिकस्त दी है भारतीय टीम ने, और उसके लिए हम लोग जश्न मना ही रहे. साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ, वो ये कि भाई क्रिकेट का जो त्योहार है वो चल रहा है, और वो कौन सा, विमेंस T20 वर्ल्ड कप. और इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. हमें अपनी जो गर्ल्स ब्रिगेड है, जो महिला टीम है, उसको भी तो सपोर्ट करना है.
1: वो भी बहुत अच्छा खेलती हैं, और जो पुरुष टीम है उससे कहीं अच्छा वो खेलने लगी हैं, और वाकई में पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए. हम तो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं.
0: बिल्कुल, हम भी करते हैं, और एक से बढ़कर एक अचीवमेंट
1: बहुत अच्छा लगता है.
0: महिला क्रिकेट टीम भी हमारी लेकर आ रही है, चाहे U19 क्रिकेट टीम की बात कर लें, या हमारी जो मेन्स टीम है, जो मुख्य टीम है, उसकी खिलाड़ी, भैया क्या मैच था कल. स्मृति मंधाना ने क्या शानदार 74 रन बनाए, और शेफाली वर्मा ने भी बहुत शानदार पारी खेली. चाहे हम बैटिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, जबरदस्त खेल रही हैं लड़कियां. तो भैया सपोर्ट कीजिए अपनी बेटियों को भी, और स्टोरी पे, स्टेटस पे शेयर कीजिए, और इस जीत को, इस सेलिब्रेशन को का हिस्सा बनिए.
1: जश्न को बिल्कुल इसी तरह सेलिब्रेट करते रहिए, क्योंकि गर्ल्स पावर बिल्कुल पूरी तरह से हाई है, और ये लगातार इसी तरह आगे बढ़ता रहे. बस हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं.
0: और बेटियां अगर आपके घर में हैं, वो खेलना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, तो उनको जरूर सपोर्ट करिए.
1: बिल्कुल, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है.
0: इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है जरूरी, स्पेशली लखनऊ वालों के लिए.
1: तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और यूपी से हैं, तो यूपी में जेई भर्ती के लिए जो पद थे, करीब 2285 पद थे, अब ये बढ़ाकर 2516 कर दिए गए हैं. कुल मिलाकर 231 पद बढ़ा दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय परीक्षा के ये पद हैं. और दोस्तों, इसकी जो फॉर्म जमा करने की तारीख है, आवेदन शुल्क है, वो भी संशोधित कर दिया गया है. आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 जून है. शुल्क समायोजन और संशोधन की अंतिम तिथि 2 जुलाई कर दी गई है.
0: तो मतलब चांसेस बढ़ गए हैं आपके. जब वैकेंसीज बढ़ गई हैं, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, और देखिए सिलेक्शन हो जाएगा.
1: और वहीं अगर बिजली से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है, तो मलिहाबाद में आज एक बिजली शिविर लगने वाला है. तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये शिविर आज लेसा द्वारा लगाया जा रहा है, मलिहाबाद ओल्ड उपकेंद्र में. और ये जो शिविर है, ये सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा. इसमें आप नए कनेक्शन, गलत बिल, लोड बढ़ाना, स्थाई विच्छेदन, मीटर संबंधी जितनी भी समस्याएं, इनका समाधान आप इस शिविर में प्राप्त कर सकते हैं. और वहीं आज इतनी गर्मी के माहौल में कुछ इलाके ऐसे लखनऊ के हैं जहां पर बिजली की भी कटौती होने वाली है.
0: मतलब बैड न्यूज़ दे रहे हो.
1: जी, बैड न्यूज. अब क्योंकि इतनी कंजम्पशन हो रहा है बिजली का, तो वाकई में बहुत ज्यादा

0: भी बढ़ जाता है, इस वजह से समस्या होती है और उनको सुधारने की भी जरूरत होती है। तो इसी सुधार के कारण ऐसा किया जा रहा है। इंदिरा नगर सेक्टर 14 ओल्ड उपकेंद्र गुरुवार को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, यानी कि अभी अगर इस समय वहां पे बिजली जा चुकी होगी, आंशिक बिजली बंद रहेगी। और उसके बाद GTI उपकेंद्र में सुबह 7:15 से 8:15 बजे तक बिजली बंद रहने वाली है। और रिसालदार पार्क, रोजगार भवन, टैक्सी स्टैंड, ग्रीन मार्केट, APSEN रोड, ये सब जो जितने भी क्षेत्र हैं ये पूरी तरह से प्रभावित रहने वाले हैं। और पानी के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप ऐसे क्षेत्रों में हैं तो अपनी पूरी तरह से सावधानी बरतें और पूरी व्यवस्था बनाकर रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जब लोड बढ़ता है तो दिक्कतें तो आती हैं, कभी भी कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर पानी वानी तो भर के रखना चाहिए, स्टोर करके रखिए, मोटर चला लीजिए और वेस्ट बिल्कुल मत होने दीजिएगा, ना बिजली और ना पानी। और भैया गाना तो बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 8:49 का वक्त, सुंदरी गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: सी स्टैंड, ग्रीन मार्केट, एपी सेन रोड, ये सब जो जितने भी क्षेत्र हैं ये पूरी तरह से प्रभावित रहने वाले हैं और पानी के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप ऐसे क्षेत्रों में हैं तो अपनी पूरी तरह से सावधानी बरतें और पूरी व्यवस्था बनाकर रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जब लोड बढ़ता है तो दिक्कतें तो आती हैं, कभी भी कोई भी फॉल्ट हो सकता है, तो कुल मिलाकर पानी वानी तो भर के रखना चाहिए, स्टोर करके रखिए, मोटर चला लीजिए और वेस्ट बिल्कुल मत होने दीजिएगा, ना बिजली और ना पानी। हाँ, और भैया गाना तो बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 8:49 का वक्त, सुन रहे गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: हम उन चीज़ों को वापस ला सकते हैं, और हमेशा नहीं, रेगुलर तौर पर तो पॉसिबल ही नहीं है अब तो, खैर इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है लोगों की, लेकिन कभी कभी बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और ख़ास तौर पर बाहर जाकर आप घर से बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना कर लेकर जाइए और पिकनिक पर जाइए, आस पड़ोस के लोगों को भी इकट्ठा कर लीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है।
1: जब पिकनिक पर जाते हैं ना, कोई चीज़ खाने वाली ले जाते हैं, है ना, जैसे घर से बना के, और सब अलग अलग जितने भी मेम्बर्स होते हैं सब अपनी अपनी मतलब तय कर लेते हैं, भैया हम ये लेके आएंगे लेके आएंगे, तो वहाँ पे जब एक साथ चीजें खुलती हैं तो उनका जो टेस्ट होता है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: वही वही आइटम आप घर पर खाइए, वो मजा नहीं आता,
1: वो मजा नहीं आएगा, वो आनंद नहीं।
0: तो चलिए कुछ मेल्स हैं रतन, जल्दी से शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर न्यूज ब्रेक का टाइम आ जाएगा। और देखिए इस प्रोग्राम में इससे पहले तो बहुत सारे मेल्स आ ही रहे थे, आपने शामिल किए पिछले प्रोग्राम में। राजेश कुमार जी ने भी मेल किया है, न्यूज सुनाने के लिए आज रेडियो जल्दी ऑन कर लिया, रतन सर की प्यारी सी आवाज को प्यार भरा नमस्कार। और ये मोदीपुरम मेरठ से हमें मेल कर रहे हैं। इसके अलावा कोमल तिवारी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा, गानों की तारीफ की और गाय को चारा देकर आई हैं, साथ ही साथ अपना आपका प्रोग्राम भी एंजॉय कर रही थी। मदन गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं?
1: मदन गुप्ता जी कहाँ गए
0: कहते हैं कि भाई साहब,
1: मदन गुप्ता जी कहते हैं भाई साहब नमस्कार, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। हाँ, पहले हम लोग कुछ भी खा लेते थे लेकिन शरीर में लगता नहीं था, दही जलेबी बंद मकान चिल्ला बंद
0: मक्खन
1: है ओके, चिल्ला पकौड़ी कई तरह के हलवे खाते थे, लेकिन आजकल फेसबुक पर लोग जानकारी देकर देते हैं, फल चीज में इतनी कैलोरी होती है यदि आप खाएंगे तो इतनी किलोमीटर चलना पड़ेगा, इसी डर के कारण आप
0: हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, इसलिए भी बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है जानकारी भी बढ़ गई है,
1: पोहा और चीला खाकर काम चला लेते हैं।
0: जी पिकनिक के मुद्दे पर आपने कुछ नहीं लिखा है, खैर कोई बात नहीं, मदन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जी का भी मेल आया है और इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करने के लिए, कहते हैं तेज धूप जब हमें डराती, पेड़ की छाया तब मन भाती, सूरज का गुस्सा सहकर भी शीतल हवा में पहुंचाती, सूख रहे नदी तालाब झुलस रहे सबके ख्वाब, पर देखो सच्चा साथी छाँव लुटाता बेहिसाब। बिल्कुल पेड़ों की तो अहमियत दिन पर दिन मालूम पड़ रही है लोगों को। आज पिकनिक के मुद्दे पर आपने भी कुछ नहीं लिखा है, नेक्स्ट मेल किसका है?
1: आर्यन मिश्रा साहब का है, रतन सर अंजू मैम को मेरा सादर प्रणाम, फिलहाल मैं नोएडा में रहता हूँ लेकिन जब आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे अपने गांव की वो कच्ची दीवार पर रखे रेडियो की याद आ जाती है, जहाँ पर मैं बचपन में अपने चाचा के साथ सुबह से शाम तक आपके प्रोग्राम सुनता था। थैंक्स ओके, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस की सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। पिकनिक सिर्फ घूमने का नाम नहीं बल्कि अपने अपनों के साथ हंसी खुशी और यादों को संजोने का एक खूबसूरत अवसर है, आइए प्रकृति के करीब जाएं, रिश्तों को समय दें और जीवन के हर पल का आनंद लें, खुले आसमान की छांव हो, अपनों का साथ हो, पिकनिक डे पर हर चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशियों की बात हो, सभी श्रोताओं को इंटरनेशनल पिकनिक डे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मुझे लगता है कि म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहिए और वापस आते हैं हम अगले घंटे में, यानी न्यूज ब्रेक के उस पार, और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, बहुत सारे ईमेल्स हैं, सब कुछ शामिल होगा अगले घंटे, स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा पिकनिक विकनिक में जाओ अगर और म्यूजिक ना हो साथ में तो मजा नहीं आता, लेकिन अगर म्यूजिक नहीं है तो कोई बात नहीं, अंताक्षरी खेल लेना,
1: बहुत अच्छा लगता है, ना? है। आप पुरानी बातें याद दिला रही हैं।
0: देखिए पुरानी चीजें कभी पुरानी नहीं होती हैं, वो जब आपकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए भी आ जाए ना तो बिल्कुल नयापन ला देती हैं।
1: अब टाइम की थोड़ी ऐसी हो जाती है कि जो है वो पूरा तरह से माहौल बन ही नहीं पाता, और जब पहले होता था कि पिकनिक पे जाना तो जो एक्साइटमेंट होता था वो एक्साइटमेंट वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता था, और आज भी अगर पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा हो जाता है। और
0: अरे भाई लाइट की बात अभी रतन आपने की, लाइट चली जाती थी तो छत पर बैठ कर घंटों अंताक्षरी खेला करते थे और लूडो वगैरह खेला करते थे, टॉर्च की या चिमनी की रोशनी में, इन्वर्टर जैसी कोई चीज होती नहीं थी।
1: हमें तो तब बहुत अच्छा लगता था अंजू, जब पता है पूर्णिमा की रात होती थी, चांद पूरी तरह से होता था, और गर्मियों के दिन होते थे, लाइट चली जाती थी, छत पे बैठ के पंखा झल रहे हैं हाथ वाला, और चांद की लाइट में आराम से बैठे हुए, तो वो जो सुकून,
0: वो जो सुकून बिल्कुल। लेकिन अभी भी

नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए आज के अखबारों की सुर्खियां। फ्रांस के एवियन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक को लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ट्रंप बोले भारत पर हमला हुआ तो करेंगे मदद। अमर उजाला ने लिखा है, ट्रंप से बोले मोदी, भारतीय नाविकों की सुरक्षा जरूरी, स्वतंत्र नौवहन के लिए साथ करें काम। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के करीब। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ट्रंप ने कहा हमला हुआ तो भारत की मदद करेगा यूएस। लखनऊ के लोकभवन में कल पुलिस के नवनियुक्त 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरण और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुशासित और सजग रहने की सलाह की खबर भी आज के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, ड्यूटी पर रील ना बनाएं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, सीएम बोले ड्यूटी पर रील बनाना अनुशासनहीनता। स्वतंत्र भारत ने लिखा है, नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खिले। वहीं अमृत विचार ने लिखा है, योगी बोले यूपी पुलिस अब मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की समीक्षा भी आज के अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, योगी बोले जनप्रतिनिधियों से ही करवाएं शिलान्यास। अमर उजाला ने लिखा है, प्राथमिकता तय कर सड़कों पुलों का प्रस्ताव भेजें। हिंदुस्तान ने लिखा है, सीएम ने कहा लखनऊ मंडल के विकास प्रस्तावों पर अमल करें। दैनिक जागरण ने लिखा है, लखनऊ मंडल के विकास के लिए तैयार होंगी 41,229 करोड़ की महायोजना। 21 जून को प्रदेश के 59 जिलों में होने वाली नीट परीक्षा की सुव्यवस्थित और पारदर्शिता को के साथ संपन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों की खबर भी आज के अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मुख्य सचिव ने कहा नीट परीक्षा के लिए बरतें अतिरिक्त सुरक्षा व सतर्कता। हिंदुस्तान ने लिखा है, गोयल बोले नीट की परीक्षा में सतर्कता बरतें डीएमएसपी। अमृत विचार ने लिखा है, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, नीट परीक्षा में बरती जाए पूरी सतर्कता। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में कल खेले गए एक दिवसीय मैच में भारत की अफगानिस्तान पर 170 रनों की शानदार जीत भी सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने लिखा है, गिल ईशान का शतक, भारत का सीरीज पर कब्जा। अमर उजाला ने लिखा है, शुभमन के शतक से भारत ने जीती श्रृंखला। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत ने किया वनडे सीरीज पर कब्जा। नवभारत टाइम्स लिखता है, शुभमन ईशान ने छुड़ाए पसीने। वहीं अमृत विचार की हेडलाइन है, गिल और किशन के शतक से भारत को मिली अजेय बढ़त। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियों का यह बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग।
2: अरे भैया, गुड मॉर्निंग हो गया है।
3: गुड मॉर्निंग,
2: अभी बहुत सारे लोगों की मॉर्निंग हुई नहीं है।
3: जी बिल्कुल सही कह रही है।
2: जगा दो उन लोगों को जरा।
3: बिल्कुल भैया, जग जाइए, जाग जाइए। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सूरज देखिए बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक अपना बिस्तर नहीं छोड़ा है तो प्लीज छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारे काम है आज के डे में, वो आपको करने हैं।
2: जी, छुट्टी का दिन नहीं है।
3: सुबह से हम जगा रहे हैं आपको भक्तिमय संगीत से, पहले आपको जगाने की कोशिश की, उसके बाद प्यार भरे नगमों के साथ जगाने की कोशिश की, और अब बहुत सारे जानकारियों के साथ और बहुत सारी बातों के साथ भी आपको जगाने की कोशिश ही कर रहे हैं।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन अभी
2: बिल्कुल।
3: भी आप मान नहीं रहे, उठ नहीं रहे।
2: देखिए, हमने आज आपका डे जो है पिकनिक डे बना दिया है, बना दिया है मतलब, लेकिन वो है नहीं, अभी ये सिर्फ बातों में है। वीकेंड पर आप पिकनिक प्लान कर सकते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, शाम को चले जाइएगा जब थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक हो जाए, है ना। क्योंकि जब आप प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं, मकसद होता है कि भैया सब सब कुछ ठीक ठाक रहे, एंजॉय करें, ऐसा ना हो कि बीमार होकर वापस।
3: अब ये नहीं सुन के बस हमने बता दिया, आप तुरंत आपने प्लान बनाया, ऐसा चलो अभी चलते हैं घूमने,
2: आज पिकनिक होगा। वैसे घर पे भी बना सकते हैं ऐसा, अगर मौसम आपको अलाउ नहीं कर रहा है बाहर निकलना,
3: एक दूसरे
2: तो आप घर में,
3: हाँ, एक दूसरे घर जा सकते हैं और एक दूसरों को अपने घर बुला सकते हैं।
2: घर में छोटा सा गार्डन होगा, बालकनी होगी, कहीं पर भी मतलब छत पर कुछ अलग करिए, जो रूटीन लाइफ है ना उससे थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना। तो चलिए बढ़िया सा गाना सुनाते हैं, वापस आते हैं आपके ईमेल्स और भी बहुत कुछ हमारे पास जो आप तक पहुंचाना है। बाकी अब से लेकर 10 बजे तक ये सफर रहेगा जारी।
3: जी
2: कुछ अलग कर लीजिए आज, उनकी सेवा कर लीजिए आज।

0: जी कहीं आना है या जाना है या बाजार ही जाना है तो भैया थोड़ा सा ठहरिए और रेनबो पर ट्रैफिक अपडेट सुनकर निकलिए।
1: जी हाँ, क्या तो आगे बढ़ेंगे तो आपका सफर और भी ज्यादा सुकून भरा होगा और बिल्कुल सरल होगा, आराम से आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर, चलिए करते हैं उनका स्वागत। सर स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
0: गुड मॉर्निंग सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। जैसा कि पीक आवर्स का समय रहता है तो पीक आवर्स के समय में लखनऊ के जो प्रमुख मार्ग हैं, लखनऊ अयोध्या मार्ग, लखनऊ रायबरेली मार्ग, लखनऊ सीतापुर मार्ग और लखनऊ कानपुर मार्ग, इसमें क्रमशः अगर देखा जाए तो कमता चौराहा और उतरेठिया तेलीबाग, दूसरी तरफ लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें तो हमारा जो अवध चौराहा है और स्कूटर इंडिया के पास में, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर अधिक रहता है। तो ऐसे में जब आप पीक आवर्स में घर से निकल रहे हो तो कृपया इन मार्गों को अवॉइड करें अथवा जो है समय से घर से निकले। और यदि कोई जो है आपको असुविधा कहीं होती है तो हमें जरूर संपर्क करें, क्योंकि हम लगातार आपकी सुविधा के लिए, आपको सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 94-54-40-51-55, जहां हम आपकी सहायता के लिए सारी बातें सुनते हैं और उसको त्वरित निदान करते हैं। साथियों आपके, मैम आपके माध्यम से अनुरोध है साथियों से कि जो है जैसे आप रोड पर चलते हैं तो बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु के कारकों में है मैम, तो सबसे ज्यादा जो है बाइक चालकों की और उनसे जो सवारी करते हैं उनकी जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है।
0: तो
2: उसका, हाँ उसका मुख्य कारण होता है कि हेलमेट ना लगाना
0: जी।
2: और तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जब भी बाइक से चले तो चालक और जो पीछे बैठने वाली सवारी है दोनों लोग जो है हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये आपके जीवन की रक्षा के लिए है। इसका अगर उपयोग करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आप सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: बस यही अनुरोध है आपसे कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच सर। तो श्रोताओं हमारे साथ थे TSI विकास सिंह सर अपने अपडेट के साथ, और जो हिदायतें देते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए वो आपके भले के लिए तो है ना, तो जरूर फॉलो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: भाई दीदार बादलों का होगा या नहीं होगा या सूरज देवता ही मेहरबान होते रहेंगे हमारे ऊपर, ये सारी जानकारी भी हमारे लिए है बहुत जरूरी। इसीलिए हर रोज हम सीधा मौसम विभाग से लेकर आते हैं आपके लिए मौसम की अपडेट।
1: जी हाँ दोस्तों, और सटीक अपडेट देने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं मोहम्मद दानिश सर, मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट हैं और आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए करते हैं उनका वेलकम। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर आपका।
0: गुड मॉर्निंग सर।
2: जी गुड मॉर्निंग।
0: कैसा रहने वाला है मौसम सर, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी मौसम की बात करें तो मौसम अभी गर्म रहेगा, जैसा कि चल रहा है तापमान, एक आध दो डिग्री और अभी कल परसों में बढ़ेगा
1: और बढ़ेगा सर।
2: तो कुल मिला के उसके बाद थोड़ा हल्का सा बादलों की आवाजाही की संभावना है, लेकिन दो दिन तक गर्मी का असर हमको दिखता रहेगा।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद सर मतलब आवाजाही बादलों की रहेगी और
2: हल्की हल्की आवाजाही बादलों,
1: बारिश की सर कोई स्थिति बनेगी?
2: अभी कोई ज्यादा संभावना नहीं है, बीच में जैसे छिटपुट वर्षा कहीं हो गया छोटा सा स्पेल में आने वाले दिनों में, लेकिन कुल मिला के अभी थोड़ा गर्मी का एक तरीके से सितम जारी रहेगा अगले 3-4 दिन तक।
1: जी तो चलिए, बहुत सटीक जानकारी आपने दे दी और वाकई में हमारे जो लिसनर्स हैं वो सुनकर पूरी तरह से सतर्क भी होंगे और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।
2: ओके धन्यवाद।
0: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, और मौसम की अपडेट उन्होंने दी। गर्मी के लिए तैयार रहिए, पानी पीते रहिए, घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ पीने का पानी ज़रूर रखिए, और जो ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की जैसे नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, अच्छा ताज़ा सादा खाना, घर का बना हुआ खाना ज़रूर खाइए।
1: और दिमाग को जितना ठंडा रखेंगे ना उतनी लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है
0: जी, बिल्कुल। गर्मी बाहर है लेकिन दिमाग के अंदर मत
1: जी, दिमाग के अंदर उसे बताने दीजिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे पुनः मिलते हैं गीत के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका अपना प्यारा सा शो जिस पर जुड़े हैं आपके दो दोस्त अंजू और रतन।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: 9:20 का वक्त हो गया है, आपके बहुत सारे ईमेल्स हैं। आज पिकनिक डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जा रहा है, कि पिकनिक आपका कौन सा यादगार रहा, या अगर आपको मौका मिले तो किसके साथ पिकनिक पर जाना चाहेंगे। आपके ईमेल्स लगातार आ रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और खास दिन है, उसके बारे में बताना भी जरूरी है।
1: 18 जून का जो दिन है अपने आप में बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सभी, और उन्हीं में से एक डे है ऑटिस्टिक प्राइड डे। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को ये भी, इस डे को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। यह दिवस ऑटिज्म से जुड़े लोगों को सम्मान, समान अवसर और समाज में उनकी विशिष्ट प्रतिभा को पहचान देने का एक बहुत बड़ा संदेश देता है, और इसका उद्देश्य यह है कि ऑटिज्म कोई कमी नहीं बल्कि न्यूरो डाइवर्सिटी का एक स्वरूप है। तो वाकई में दोस्तों ये एक पहचान ऐसी है उन लोगों की जो इस तरह से, इस जो ये जो ऑटिज्म है इससे पीड़ित हैं, या फिर उनको एक नई पहचान देने की कोशिश की जाती है। और वाकई में ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। अगर उनको किसी चीज़ में उनको कोई टैलेंट अगर बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो बहुत अच्छा वो करते हैं उसमें।
0: बिल्कुल, तो चलिए आप सबको इस दिन की शुभकामनाएं, सपोर्ट किया करिए हर तरह के लोगों को। ये दुनिया ना सबके लिए है और सबके लिए बहुत स्पेशल है। हर इंसान, हर इंडिविजुअल अपने आप में बहुत खास है, तो सबको एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। फिलहाल जब हम अपनी भाग दौड़ भरी और तनाव भरी जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो एक ब्रेक यानी पिकनिक की भी ज़रूरत पड़ती है।
1: जी बिल्कुल, और लगातार हमारे पास मेल्स भी आ रही हैं, और उन मेल्स में बहुत सारी आज के टॉपिक पर, आपके मुद्दे पर लोग बता भी रहे हैं। सिमरन सोरांजलि जी की मेल हम तक पहुंची है। हेलो डियर मैम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? तो हम लोग कैसे हैं अंजू?
0: बिल्कुल जबरदस्त है। और हमें लगता है कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो और अच्छे हो जाते हैं, है ना?
1: पिकनिक पर जाने का कोई मजा है वो किसी और चीज में कहाँ है, क्या बात है। मैं पहली बार पिकनिक पर गई थी तब मैं 6th क्लास में थी, वो दिन आज भी मुझे याद है। एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, बहुत खुश थी मैं। जब साथ समय बिताते हैं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं और आपसी तालमेल बढ़ता है। किसी से मनमुटाव हो तो वो भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, और मूड भी फ्रेश हो जाता है। इसलिए हर किसी को अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा समय निकालना जरूर चाहिए, इससे तनाव भी कम होता है।
0: बिल्कुल नीलू शर्मा जी, आई होप आपकी अब तबीयत अच्छी होगी, और अगला प्रोग्राम सुनिएगा, गाने बहुत अच्छे जबरदस्त बजने वाले हैं आप लोगों की पसंद के। फिलहाल इस प्रोग्राम में भी कोशिश रहती कि हम लोग मिक्स्ड प्लेलिस्ट आप तक लाएं। हर तरह के श्रोता हैं हमारे बीच जो हमें सुनते हैं। रमेश चौहान जी ने भी मॉर्निंग भेजा है, और ये हमें सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से सुन रहे हैं। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष, बेबी बॉय हिमाक्ष, क्या नाम है हिमाक्ष, बहुत ही प्यारा नाम है। और दिलावर खान साहब क्या लिखते हैं पता है, इन्होंने नमस्कार भेजा है। अजमेर और पुष्कर गए थे ये एक बार पिकनिक के तौर पर, बहुत अच्छा लगा था। इतनी दूर आप पिकनिक के लिए जाते हैं या ट्रिप के लिए जाते हैं? और ये हमें सुन रहे हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
1: राजेश कुमार विद्यार्थी जी की भी मेल आई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, कहां से भेजा ये भी नहीं लिखा इन्होंने।

0: आज के मुद्दे पर भी अपने विचार हम तक नहीं पहुंचे। थैंक यू सो मच। आकाश कुमार साहब की मेल हम तक पहुंची है और ये मेल आंचल वर्मा जी ने की है उनकी मेल आईडी से, हरदोई से। सुप्रभात प्यारी रौनक मैम जी सर जी। ओके प्यारी रौनक ये हाँ, आपके लिए यूज हुआ है।
1: हाँ, हमारे बड़े सारे नाम हो गए।
0: तुम दूर रहो या पास, बस अपनी सलामती बताया करो। जब भी नजरे ढूंढे तुम्हें, तुम ऑनलाइन आ जाया करो। मेरी मम्मी की तरफ से बहुत सारा प्यार
1: जी। हमारी तरफ से भी उनको प्रणाम और प्यार, और बस ऐसे प्यार देते रहा करिए। हम लोग भी मतलब हमारे लिए ये जरूरी होता है, हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और ज्यादा
0: पूरी तरह से हो जाते हैं।
1: अच्छा, पिंकी बारी है अमीनाबाद जी से। अमीनाबाद से पिंकी बारी जी लिख रही है, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अंजू मैम आज फिर से आ गई। अच्छा, तो बस ऐसे ही खुश रहा करिए। अच्छा, कल कहती कल घर से बाहर थी तो सुन नहीं पाई, बट आज लकीली फिर सुन पा रही हूँ मैम को। और आगे लिखती हैं कि अपने दोनों मेगा स्टार आरजेस को एक साथ सुन पा रही हूँ, इसलिए खुश हूँ और शो बहुत अच्छा लग रहा है। मुद्दे पर ये कहना चाहती हूँ कि हमें तो सबसे बेस्ट पिकनिक अपने स्कूल का पिकनिक लगा था। भैया स्कूल पे तो जब साल भर में एक बार पिकनिक जाते हैं ना पूरी क्लास के साथ,
0: वो तो कोई नहीं भूल सकता। हम भी नहीं भूल रहे।
1: और ये जब फ्रेंड्स के साथ गई थी और इन्होंने कहा कि जैसे पता चला था कि पिकनिक जाना है, एक एक दिन एक्साइटमेंट में गुजर जाता था, क्या क्या ले जाना है उस सब की तैयारी में लग जाना, और वेरी इंटरेस्टिंग होता था और बहुत ज्यादा याद आता है वो पल। अभी भी बहुत बार पिकनिक जा चुकी हूँ फैमिली के साथ। इनकी बात कंप्लीट कर लेते पहले, और कहती हैं कि हैप्पी भी होती हूँ जब पिकनिक जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग नहीं हो पाती जो स्कूल टाइम में थी, वो दौर कुछ और था
0: वाकई में। और मैं एक बात ये कह रहा था कि जैसे कि जब हम लोग पिकनिक जाते थे है ना, पूरा ग्रुप, जब बच्चे मतलब स्कूल के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, तो हम लोग पूरा ग्रुप बच्चों का होता था, पूरी एक बस भर के जाती थी उसमें, और सारे टीचर्स भी हमारे उसमें कई होते थे, वो हम लोगों पे नजरें रखे रहते थे कि कहीं बच्चे इधर उधर ना भाग जाएं, और हम लोग इंतजार ये करते थे कि ये टीचर्स अपना कहीं ग्रुप बना के बैठे हैं और हम लोग कहीं फ्री हो तो हम लोग थोड़ा और आसपास घूम के आए, देख के आए कि क्या हो रहा है। तो ये जो बातें होती थी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी।
1: बिल्कुल। तो चलिए एक बढ़िया सा गाना सुना देते हैं, पिकनिक वाला मोड ऑन हो चुका है, तो एंजॉय करिए आप इस सॉन्ग को। वापस आते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हमारे पास आपके लिए। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
3: जी 9:31 का वक्त हो गया है, 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है, आपने प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ।
4: जी हाँ दोस्तों, और इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े हैं दो दोस्त, अंजू रतन आपके साथ। और आज 18 जून का दिन है दोस्तों, और 18 जून को हम कई ऐसे दिवस मना रहे हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेरित भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी दिलाते हैं।
3: जी
4: गोवा क्रांति दिवस, ये भी एक महत्वपूर्ण ऐसा दिन है जो कि आज के दिन को और भी ज़्यादा महत्व देता है। गोवा क्रांति दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1946 में गोवा की पुर्तगाली शासन से मुक्ति की शुरुआत का प्रतीक है, और इसी दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के मडगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनके इस कदम से गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा मिली। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे गोवा में फैल गया और लोगों ने पुर्तगालियों के अत्याचारों के खिलाफ संगठित रूप से विरोध करना शुरू किया। 18 जून का दिन गोवा की आज़ादी की नींव रखने वाला दिन माना जाता है। हालांकि गोवा को पूर्ण स्वतंत्रता 19 दिसंबर 1961 को मिली। दोस्तों ये दिन गोवा के लोगों के संघर्ष, साहस और बलिदान की याद दिलाता है और युवा पीढ़ी को आजादी की कीमत समझने का एक अवसर देता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। दोस्तों कुछ नाम इतिहास के पन्नों में नहीं, राष्ट्र की आत्मा में लिखे जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है झांसी की रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। आज 18 जून का दिन भारत के इतिहास में अदम्य साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। दोस्तों सन 1858 में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। वह 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रभावशाली सेना नायकों में थी। अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया वो भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन गया। ब्रिटिश सेनापति ने भी उनके साहस की प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ सेना

अनायक कहा था। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर पंक्तियां तो हम सब के दिलों में आज भी वही जोश भर देती हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उनके बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। उनका जीवन दोस्तों हमें ये सिखाता है कि देश प्रेम, आत्मसम्मान और साहस कभी पराजित नहीं होते। आइए भारत माता की इस वीर पुत्री को नमन करते हुए हम सब उनके चरणों में उनके इस बलिदान को बस यही माने कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो स्वाभिमान है, वो कभी झुकने ना पाए। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
4: नाश्ता वाश्ता हुआ कि नहीं हुआ भैया? और अगर नाश्ते की टेबल पर आप है ना, नाश्ते की जो प्लेट है वो लग गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कैलोरीज कितनी है और न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उसकी, है ना।
5: वैसे
4: ये बहुत आजकल अवेयरनेस लोगों में हो गई है कि सेहत का ध्यान रखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आ रहा है, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम बहुत जरूरी है और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।
5: अच्छा, अभी एक मेल भी आया था जो कह रहे थे कि जो है वो सोशल मीडिया पे तरह तरह की टिप्स देते रहते हैं कि आपने अगर ये खा लिया तो आपको इतना दूर चलना पड़ेगा, इतनी कैलोरी घटानी पड़ेगी, इसलिए चिल्ला और पोहा खा खा के बस अब जीवन चला।
4: कैलोरीज इनटेक करना बहुत आसान है, लेकिन कैलोरीज को बर्न

0: करना बहुत मुश्किल बहुत होता है, बहुत टफ हो टास्क होता है।
1: तो इसलिए बंद करने से पहले ये सोच लीजिए कि आप क्या खा रहे हैं और उसके बाद आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
0: वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू की जब बात आती है ना, तो पिकनिक में खास तौर पर सर्दियों में जब पिकनिक पे जाते हैं तो विटामिन डी बढ़िया भरपूर मिल जाता है।
1: हाँ, विटामिन डी, क्योंकि जब धूप में आते हैं तो विटामिन डी वाकई में हमारे शरीर
0: और इस मौसम में अगर हम निकले विटामिन डी लेने के लिए।
1: लेकिन विटामिन डी से एक बात हमें अंजू याद आ रही है।
0: नहीं, पूरी बात सुनो, अगर इस मौसम में मतलब जो गर्मी में चिलचिलाती धूप में विटामिन डी के लालच में हम निकल गए अगर, तो हम पहचान में नहीं आएंगे, करिया होके वापस आएंगे।
1: तो देखिए, अगर विटामिन डी आपको लेनी है तो जरूरी नहीं कि आप पूरे भरपूर धूप में ही निकलें। जो सुबह का मौसम होता है जब सूर्यदेव पूरी तरह से सुबह सुबह निकल रहे होते हैं, उस समय ये रिसर्च भी एक है कि विटामिन डी उस समय सूर्य की किरणों में बहुत ज्यादा होती है और आपकी बॉडी जब उसके संपर्क में आती है तो काफी ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में विटामिन डी बनती है। अब आप कहें कि विटामिन डी लेनी है तो हम जब सूर्य बिल्कुल सर पे हमारे तब हम जाके लें, तब तो फिर वाकई में जैसा कि आपने कहा करिया बन के निकलेंगे, तो वही होना है। लेकिन ऐसे ही एक बात मुझे याद आ रही है, एक रिसर्च है जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में, ये रिसर्च रिपोर्ट में निकला है कि हमारे देश में जब इतना मौसम भरपूर धूप वाला रहता है, लगभग साल भर गर्मियों में तो धूप रहती है और सर्दियों में भी धूप बहुत अच्छी होती है और धूप खाने के लिए लोग छतों पर भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हुआ यह है कि करीब 90% लोगों के शरीर में विटामिन डी की भारी कमी पाई गई है।
0: बिल्कुल, तो ये डेफिशिएंसी विटामिन डी और B12 की रहती है
1: और ये उम्र, लिंग और इलाकों के हिसाब से ऐसा रिसर्च में निकाला गया है। और विटामिन डी वाकई में शरीर में बहुत सारी, जो अगर विटामिन डी की कमी होती तो उससे बहुत सारी और भी कमियां होती हैं, हड्डियों की सेहत पे असर पड़ता है, मांसपेशियों की जो मजबूती उस पर भी असर पड़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक जो आपका मूड है उसको भी जो ठीक करने में विटामिन डी बहुत ज्यादा कारगर है। तो ये अगर कमी होगी तो ये सब चीजें आपकी डिसबैलेंस हो जाएंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो विटामिन डी आपके शरीर में कम हो रही, इसका भी रिसर्च में एक कारण बताया गया है।
0: क्या है?
1: और कारण ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों समय बिताते हैं आजकल के लोग, ऑफिस की सीटिंग जॉब होती है, वर्क फ्रॉम होम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है इस समय, हर जगह, हाँ हर जगह एयर कंडीशन माहौल है, तो ऐसे में इंसान क्या है, धूप से दूर हो गए हैं पूरी तरह से।
0: बिल्कुल,
1: और लोग क्या, इस कारण से होता क्या है, जब घंटों बाहर निकलते नहीं है और सूरज की किरणों से विटामिन डी जो बनाने की जो शरीर में क्षमता है वो भी धीरे कम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो बस कारण यही है कि अगर आप अपने शरीर में पूरी तरह से हर चीज बैलेंस चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा ओपन एरिया में छोड़ें।
0: बिल्कुल, कारण तो समझ में आ ही गया, निवारण यही है कि प्रकृति के सानिध्य में जितना ज्यादा से ज्यादा आप रहेंगे आपको हर चीज मिलेगी, सब कुछ बैलेंस
1: रहेगा। पता है अंजू, होता यह है कि जब भी अगर आजकल के माहौल में लोग बाहर निकलते हैं कि हमको थोड़ी सी विटामिन डी मिल जाए तो लोग करते क्या, सनस्क्रीन लगा लेते हैं, छाता ले लेते हैं और फुल स्लीव्स की जो है शर्ट्स वगैरह पहन लेते हैं
0: और मॉल में चले जाते हैं,
1: मॉल में चले जाते हैं। तो बस होता यह है कि विटामिन डी की जो बेचारी कमी होती है वो कहती है हम शरीर आपका कहता हम पूरी कर लें, उसको भी आप पूरी नहीं होने देते हैं।
0: देखिए, इसीलिए जो आज का दिन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब हम इंटरनेशनल पिकनिक डे की बात करें तो ये जो सारी नियम कायदे बनाए गए थे, ब्रेक लेना, पिकनिक पे जाना, स्कूलों में भी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जाता है, तो सब कुछ एक सेट है, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से प्लान किया गया है कि आपके लिए सब कुछ जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज के साथ ब्रेक जरूरी है, भागदौड़ भरी और तनाव भरी जो जिंदगी है उससे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, प्रकृति के सानिध्य में नेचर के साथ रहना और एक खुलकर जिंदगी को थोड़ी देर के लिए सारे तनावों को एक किनारे रखकर एंजॉय करना। और जब हम ऐसा करते थे तो ये जो कमियां है ना, डेफिशिएंसीज इतनी सारी, ये विटामिन कम है, वो मिनरल कम है, ऐसा होता भी नहीं था और फिट रहते थे, बीमारियां भी कम होती थी
1: और बीमारियां तो कम होती थी और साथ में शरीर की कमियां भी दूर होती थी और साथ में जो रिश्ते हैं उनके अंदर जो कमियां होती थी वो भी पूरी हो जाती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब कुछ हमें पुराने चीजें, बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें जो वापस लाना चाहिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इसीलिए हम अपने लिसनर्स को पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए यादगार पिकनिक कौन सा था और अगर पिकनिक पर जाने का मौका मिला तो किसके साथ जाना चाहते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं या और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं आज के इस टॉपिक पर, तो जरूर हमें मेल कीजिए fmakashwani@gmail.com पर। आपके ईमेल्स हम पढ़ेंगे, शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक म्यूजिकल ट्रैक आपके लिए, धमाकेदार गाना है, एंजॉय कीजिए इसे, नया पुराना सब कुछ मिक्स है इसमें। मतलब दिल में बचपना और जो जवानी है ना, उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए ये जज्बा हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा,
1: रखना चाहिए। बिल्कुल।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. जिनका आज है जन्मदिन, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स.
1: और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हम भूल नहीं सकते भैया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: डबल मुबारकबाद
1: आपके जीवन में, आप दोनों के जीवन में बार बार आते रहें और आप हमारे साथ इसी तरह अपने दिन को सेलिब्रेट करते रहें.
0: तो बहुत सारी बधाइयां. अगर किसी भी मायने में आज है आपका स्पेशल डे, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एफएम रेनबो की टीम की ओर से. जल्दी से बता दें कि किस किस के साथ आप अपना बर्थडे शेयर करें.
1: जी हाँ दोस्तों, पहला नाम है आज की लिस्ट में शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी, जिन्हें प्रेम पूर्वक दादा धर्माधिकारी कहा जाता है. एक महान गांधीवादी चिंतक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. इनका जन्म दोस्तों आज के दिन 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ था. दोस्तों महात्मा गांधी के विचारों से पूरी तरह प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए. दादा धर्माधिकारी ने न सिर्फ ब्रिटेन शासन के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि दलित महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी आजीवन संघर्ष किया.
0: तो उन्हें हम याद करते हैं आज उनकी जयंती पर. और इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो एक बहुत ही प्यारा सा नाम है अरविंद स्वामी का, याद है ना उनकी आंखें.

0: मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती
1: बिल्कुल
0: थी,
1: भोले वाले से
0: बिल्कुल। और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाने वाले अरविंद स्वामी ने अभिनय की शुरुआत निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म थलपति से की थी। इसके बाद तो रोजा बॉम्बे जैसी फिल्मों में उन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, और हिंदी फिल्मों में वो कम नजर आए। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनके बारे में कि वो केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनका सहज अंदाज और प्रभावशाली संवाद अदायगी और उनकी जो एक सीरियस सी पर्सनैलिटी है वो उन्हें बिल्कुल अलग रखती है भीड़ से। तो उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं,
1: हैप्पी बर्थडे और कहते हैं, और साथ में उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। और आज आप इस बड़े एक्टर, इस महान एक्टर के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
0: तो उन्हीं पर फिल्माया गया मनीषा कोइराला के साथ फिल्म बॉम्बे का ये ट्रैक।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़े
3: का अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: नमस्कार, 52 मिनट का वक्त हो गया है। गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर बिल्कुल खत्म होने को है, लेकिन चलने से पहले आपके ईमेल्स पढ़ेंगे। और लेकिन उससे पहले हम याद करना चाहते हैं एक महान संगीतकार, सरोद वादन के महान उस्ताद अली अकबर खान को। आज उनकी पुण्यतिथि है, 18 जून 2009 को उनका देहांत हुआ था आज ही के दिन, तो उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।
6: और दोस्तों, लगातार आपकी मेल्स हमारे पास आ रही हैं। 9:53 का समय हो चुका है और अगली जो मेल हमारे पास आई है वो है रोहित सोनी साहब की। और रोहित सोनी साहब लालबाग दुबग्गा रिंग रोड लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे वाह, अंजू बहनी की सुगंध मिट्टी का प्रोग्राम का धासू किया था आपने और आज भी कम नहीं है आप लोग, तो स्टूडियो में आते ही गर्दा उड़ा देते हैं। आई एम सो हैप्पी बहनी, मैं पिकनिक में अपनी वाइफ रोली सोनी के साथ जाना पसंद करूंगा।
5: क्या बात है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, जरूर पिकनिक पे जाइएगा और उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। महेंद्र दीपन जी, आपको भी नमस्कार। लिखते हैं कि राजस्थान नागौर जिले से, गांव का नाम है रूण। गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के अवसर पर इन्होंने जो विचार भेजे हैं वो ये कि मेरे लिए पिकनिक केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि ये वो पल है जब हम अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर अपनों के साथ जुड़ते हैं। बच्चों के साथ बिताया गया समय ही मेरी खुशनुमा यादें हैं। जब हम प्रकृति के सानिध्य में बैठकर अपनों के साथ बातें करते हैं तो सुकून वो और किसी चीज में नहीं है। और मेरा मानना है कि प्रकृति को सुरक्षित रखना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमेशा इसी कोशिश में ये रहते हैं और मेरा परिवार इस दिशा में अपना योगदान दे।
6: राजेश यदुवंशी हतरोहना अमेठी से मेल कर रहे हैं, इन्होंने हम दोनों को गुड मॉर्निंग भेजा है। आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और शैलेश कुमार साहब की मेल हमारे पास आई, नीलू शर्मा की तरफ से ये मेल लिख रही, मैम को टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं, 94 रनों से जीत हासिल हुई है, पुरुष टीम इंडिया को भी हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू दी, 2013 में हम अपने पापा के साथ गए थे, मुझे अच्छा लगा था और अब मैं पिकनिक पे अपनी दोस्त पीहू के साथ जाना चाहूंगी। मेरा अनुरोध है घूमने चाहे जहां जाएं गंदगी ना फैलाएं।

0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, और ये इन बातों का तो ख्याल रखना चाहिए कि जब हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं, क्योंकि डस्टबिन हर जगह होता है, और अगर डस्टबिन नहीं है तो एक पैकेट में अपने साथ वो कचरा लेकर आइए, और कहीं पर भी जब आप जाएं तो उस जगह को गंदा ना करें। पिकनिक केवल फोटो और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नहीं होता है, वास्तविक उद्देश्य उसका खत्म हो जाता है अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं। तो पिकनिक एंजॉय कीजिए, प्रकृति को भी साफ सुथरा रखिए, है ना।
1: बिपिन साहब की मेल हमारे पास आई है, बिपिन राठौर मैगलगंज खीरी से कह रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सुप्रभात। तो आपको भी सुप्रभात। और वारिस अली खान साहब ने भी हमें मेल की है, अपनी जिंदगी के कलाकार खुद बनिए और वही रंग भरिए जो आपको सुकून दें। अंजू जी, आपने आते ही मेरे घर के बच्चों को बिस्तर पर ही डांस करने का मौका दे दिया। स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे देर से उठते हैं, लेकिन आज जल्दी उठ गए। मुद्दे पर कह रहे हैं कि मेरा तो पिकनिक मनाने के स्थान ज्यादातर जू रहा है। मैं सपरिवार अभी हाल ही में पिकनिक स्पॉट भी गया था, और मैं अक्सर देवस्थल जाता हूँ, देवा हो या फिर चंद्रिका देवी, मैं हर जगह जाकर माथा टेक देता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी।
1: लखनऊ से इनकी मेल।
0: और मोनू जी कहते हैं कि पिकनिक तनाव भरी दिनचर्या से राहत पाने, प्रकृति के बीच परिवार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का शानदार तरीका होता है। खुले वातावरण में स्वादिष्ट भोजन, खेलकूद, आपसी संबंधों को मजबूत करने का अनूठा आनंद मिलता है। बचपन में यही सोचता था कि बड़े होने पर खूब पिकनिक और घूमने जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारियां ऊपर वाले ने इतनी दे दी कि विचार करता हूँ मगर जा नहीं पाता, चलता है कि हमारे बिना तमाम कार्य रुक जाते हैं। वैसे 2 घंटे शाम को क्रिकेट खेल लेते हैं, इससे तनाव दूर होता है, मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है।
1: जी हाँ, प्रवीण साहब की मेल हमारे पास आई है, यादगार पिकनिक बचपन का है, मैं, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, हम सभी शहर से थोड़ी दूर संतोषी माता मंदिर गए थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, पर वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं अभी भी। प्रवीण साहब कहाँ से मिल की है? ये तो नहीं बताया आपने।
0: चलिए कोई बात नहीं। राजेश पासवान जी का तेह मिश्रिक डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से मेल आया है, और इन्होंने कहा है कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, जितना आप ज्यादा घूम लेते हैं ना, आप उतना ही अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। इंटरनेशनल पिकनिक डे की सभी लिसनर्स को शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच आपको भी।
1: जावेद पटेल साहब कह रहे हैं कि हम एक बार अजमेर को घूमने गए थे तो वहाँ घी वाली पूरी खाई थी, उसका टेस्ट लाजवाब था। मैं आपकी ऑनलाइन ऐप सुनता हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम है आपके स्टेशन के, मूड एकदम फ्रेश, सुन के मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। जावेद, ये हमें इन्होंने तहसील मंगल वेड़ा से लिखा है, महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच।
0: और सुधांशु जी का भी मेल आया, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से, जनेश्वर मिश्र पार्क गए थे, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, बार बार जाने का मन करता है। वाकई में बहुत सारे ऐसे पार्क और पिकनिक स्पॉट्स बनाए जाते हैं आपके शहर में आसपास, जहां पर आपको जाना चाहिए, बनाए ही इसीलिए जाते हैं ना वो।
1: अंजू दी, हाँ, अगला मेल है हमारे पास आचल सेठ खालिसपुर से। अंजू दी नमस्ते, रतन भैया जी कुमार सानू से कम नहीं, वैसे गाते अच्छा है भैया जी।
0: देखिए इसीलिए हम इनको गवा देते हैं। मैनुद्दीन अंसारी जी भी मेल कर रहे हैं। अच्छा, आचल और ने और भी कुछ लिखा है?
1: नहीं, बस इतना ही लिखा।
0: अच्छा, इन्होंने, मैनुद्दीन अंसारी जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा, हम लोग बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे नाम है इनके, उमरा और हुस्बा अंसारी वगैरह सब है आपके साथ, लखीमपुर खीरी से। और इन्होंने भी लिखा है कि हम सभी फ्रेंड्स पिकनिक गए थे अपने आम के बाग में। क्या बात है, अगर ऐसी जगह आसपास हो तो कहीं और दूर जाने की जरूरत ही नहीं है ना
1: जी। दुर्गा
0: चटनी वटनी बना के ले जाइए और कच्ची कैरी खाइए, कितना मजा आता है।
1: दुर्गा कृष्णा जी सादर चरण स्पर्श कर रहे हैं आपको अंजू दीदी,
0: बहुत बहुत आशीर्वाद आपको जी। क्या लिखते हैं यार?
1: रतन भाई के साथ सभी को प्यार भरा राधे कृष्ण, आपको भी राधे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। आज के दौर में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, हफ्ते या महीने में कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाना चाहिए, इससे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सारे फायदे मिलते हैं। हम तो आज प्रतापगढ़ जा रहे हैं घूमने,
0: क्या बात है,
1: बेस्ट ऑफ लक।
0: और रोशनी रावत का भी मेल पढ़ते हैं चलते चलते, और ये चंडीगढ़ से सुन रही है, मुद्दे पर ये कहती हैं कि घूमना फिरना मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर मुझे मौका मिलता है कहीं जाने का तो मेरी आत्मा खुशी से झूम झूम कर नाचने लगती
1: क्या
0: है। आत्मा नाचती है, शरीर का क्या होगा फिर। मुझे धार्मिक स्थल पर परिवार के साथ जाना पसंद है, बाकी जगहों पर दोस्तों के साथ जाती हूँ, कहीं भी मैं मना कर दूं ऐसा कभी हो नहीं सकता, घूमने के नाम पर मेरी लाश भी उठ जाती है। कैसी कैसी बातें आप लोग लिख देती हैं। खैर, इन्होंने लिखा कि साल में 2-3 ट्रिप पक्के होते हैं,
1: बहुत अच्छी बात है, घुमक्कड़ी करना भी चाहिए। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ना घुमक्कड़ी, तो उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती
0: है। ट्रैवल डायरीज जो होती है, यात्रा वृतांत, अगर आप जाएंगे नहीं यात्राओं पर तो लिखेंगे कैसे,
1: लिखेंगे कैसे, तो बहुत जरूरी है।
0: जगदीश जी, सोनू परवाना जी, शकील अहमद, मैनुद्दीन, विनीत कुमार, आप सबके मेल्स आए हैं, अगर किसी का मेल छूट गया हो, अशोक वर्मा जी का, तो हम माफी चाहते हैं, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा,
1: बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा, मैं तो पिकनिक पे निकल रहा हूँ भैया बहुत अच्छी तरह से,
0: और
1: आपको भी इन्वाइट करूंगा कि प्रोग्राम करके आप भी हमें ज्वाइन करिएगा,
0: हम तो बस तैयार रहते हैं।
1: अगले कुछ घंटे आपके साथ अंजू रहने वाली हैं, आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया है। वहीं लिथियम, निकेल और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाने की भी घोषणा की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास और कानपुर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में किसानों से संवाद एवं उत्कृष्ट अन्नदाताओं के सम्मान करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज कलम और क्रांति की धारा उन्नाव विकास की नई ऊंचाइयों तथा क्रांति भूमि कानपुर अन्नदाता के सम्मान तथा समृद्धि के नए संकल्पों की साक्षी बनेगी। विकास और कृषि संबंधी की समृद्धि की ये संयुक्त यात्रा विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने फिल्टर चैम्बरों का निर्माण कराया है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांवों में फिल्टर चैंबर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैंबर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा नदी का जीर्णोद्धार कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से दोनों नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए महिला टीम ने नीदरलैंड को 209 रन का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड 114 रन पर ही सिमट गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
7: सात रंग का इंद्रधनुष है,
8: सात सुरों की सरगम है,
9: सात जन्म है, सात समंदर,
7: साथ हमारा हरदम है।

जी आरजे अंजू शुक्ला। थाम लीजिए क्योंकि गाने बेहद मजेदार और धमाकेदार बजने वाले हैं अब से लेकर 11 बजे तक। प्रोग्राम है सुपर हिट सॉन्ग्स। मेरा नाम है अंजू शुक्ला। प्रेम कली तो नहीं है लेकिन प्रेम गली में ले जाने की तैयारी पूरी मैंने कर रखी है। तो ट्यून इन रखिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और धमाकेदार डांस करना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का तालियों के साथ। 10:05 प्रोग्राम है सुपर हिट सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की स्टेडियम।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज

0: इस जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
4: धड़कन लखनऊ की।

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

107 FM रेनबो ट्यून किया है आपने, मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला। 10:32 का वक्त हो गया है, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स। उम्मीद करती हूँ गाने पसंद आ रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

भाई देखिए 10:53 का वक्त हो गया है, यानी प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स का ये गाना होगा आखिरी गाना। तो भाई उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा सुपर हिट सॉन्ग्स का ये सफ़र। गाने हमने सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए बजाए थे। वैसे बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आ गए जिन्होंने गानों की तारीफ़ की, प्रोग्राम की तारीफ़ की। राजेश कुमार जी ने भी कहा है, वाकई में कहानी सुनकर दिल भाग भाग हो जा रहा है। चलिए धन्यवाद, बहुत झमाझम गाने बज रहे हैं 100.7 FM रेनबो की फ्रिक्वेंसी पर। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने काम में बिजी था, साथ में रेडियो एप्लीकेशन पर सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी गाने झमाझम, थैंक यू। शैलेश कुमार यानी नीलू शर्मा ने भी लिखा, गाने अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मेरी तबीयत अब पहले से बेटर है, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही फिट रहिए। और इनकी दोस्त मनु दी पीहू बड़ी प्रशंसा कर रही है, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच उन सबको हमारी तरफ से। और गुलाब दास जी का भी हमारे पास मेल आया है, छत्तीसगढ़ से ही हमारे साथ जुड़े हुए गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मोनू जी ने भी तारीफ कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोमल तिवारी जी ने भी प्रशंसा लिखकर भेजी है प्रोग्राम की, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब ये आता है मस्त मस्त सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म मोहरा, आज के इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक। नेक्स्ट प्रोग्राम है पूरी तरह से आप सबका, जी हाँ, फोन नंबर्स तो हमारे याद ही हैं आपको, है ना, 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852 3888 5445 या फिर 2238 52। आप हमें मिलाइए या मेल कीजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। कोई प्यारा सा मैसेज और आपकी प्यारी प्यारी सी बातें, गाने होंगे हमारी पसंद के, यानी संदेश आपके, गीत हमारे, नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, मैं रहूंगी आपके साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि रॉबर्ट थर्मन के कार्यों ने विश्वभर में बौद्ध दर्शन और विचारों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि श्री थर्मन ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और संवाद को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क शहर में रॉबर्ट थर्मन से हुई अपनी मुलाकात को भी याद किया। फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया है। वहीं लिथियम, निकल और दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में 570 करोड़ से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास और कानपुर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में किसानों से संवाद एवं उत्कृष्ट अन्नदाताओं के सम्मान में भाग लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज कलम और क्रांति की धारा उन्नाव विकास की नई ऊंचाइयों तथा क्रांति भूमि कानपुर अन्नदाता के सम्मान तथा समृद्धि के नए संकल्पों की साक्षी बनेगी। विकास और कृषि समृद्धि की ये संयुक्त यात्रा विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव की संवेदनशीलता से आंत के कैंसर से जूझ रहे एक युवक के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड कुछ घंटों में बन गया। जन सुनवाई में मरीज की मां ने बेटे रवि के इलाज के लिए गुहार लगाई। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत लखनऊ मुख्यालय से बात कर कुछ ही घंटों में उसका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। अब मरीज का पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त हो सकेगा। मुहर्रम की पहली तारीख पर कल लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा से पारंपरिक शाही जरी का जुलूस गम और अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ देर रात छोटे इमामबाड़ा पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद जुलूस में शामिल हुए। लोगों ने जगह जगह जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध रहे। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सौ दशमलव सात FM रेनबो पर मैं अंजू शुक्ला एक बार फिर सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। भाई 11 बजकर हो गए हैं मिनट 4, आज है गुरुवार और आप ने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो। इस वक्त जिस प्रोग्राम का टाइम है वो है संदेश आपके गीत हमारे। जी हाँ, आपको डायल करना है 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852 और इन दो नंबर्स में से कोई भी नंबर डायल करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना कोई प्यारा सा मैसेज सभी सुनने वालों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर फोन लाइंस बिजी मिले तो भैया बिना देर किए जल्दी से अपना फोन उठाइए, मेल बॉक्स में जाइए और मेल आईडी हमारी ऑफिशियल टाइप कीजिए, FMAKASHVANILUCKNOW और लखनऊ @gmail.com ये हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है। इस पर आप अपना ईमेल भेज दीजिए एक प्यारे से मैसेज के साथ, नाम पता लिखना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत कर देते हैं प्यारी सी आवाज के साथ। फोन पर है वो, हेलो जी, नमस्कार। पहली कॉल लग गई आपकी प्रोग्राम में।

0: कैसा महसूस कर रही हैं? भाई
1: महसूस यही है कि गाड़ी
0: पहले ये
1: चलाने
0: बताइए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। सबसे पहली कॉल आपकी लगी है, आपका सबसे पहला फोन लग गया आज के प्रोग्राम में, तो कैसा फील हो रहा है?
1: अच्छा फील हो रहा है।
0: अब अपना नाम पता बता दीजिए।
1: जी मैम, हम प्रीति बोल रहे हैं बिजनौर से, सरोजनी नगर।
0: बिजनौर सरोजनी नगर से प्रीति हमारे साथ हैं, क्या बात है। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं प्रीति।
1: जी मैम, ये कहना चाहते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगाएं, और रास्ते पर मतलब जो है अपने साइड पर ही चलें, और गाड़ी जो है मोटरसाइकिल स्लो चलाएं, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ जगह पर ज्यादा तेज वाहन ना चलाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ओवर स्पीडिंग से बचें, सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच प्रीति, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो लोग इस समय सड़क पर हैं ध्यान दें, ठीक है, प्रोग्राम सुनने के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच प्रीति, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी दूसरी लाइन पर अगर कोई है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
2: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ।
0: पीयूष सीतापुर से, क्या करते हैं पीयूष?
2: मैं पढ़ाई करता हूँ,
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 9th में।
0: तो ये हुआ कंप्लीट आंसर कि मैं 9th में पढ़ रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो ताउम्र लोग करते हैं ना। तो पीयूष क्या कहना चाहते हैं हमारे सभी लिसनर्स से आज?
2: मैं ये कहना चाहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं कि रोड पे कचरा नहीं फैलाएं, और गाड़ी से चलते वक्त, बाइक से चलते वक्त रोड पे नहीं थूकें, 3 से 4 लीटर पानी पी।
0: अच्छा, दो तीन बातें आपने कह दी हैं, पानी पीना बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, साफ सफाई रखें। थैंक यू सो मच पीयूष बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई देखिए, सबसे पहले प्रीति और फिर पीयूष, दोनों की बातें आप तक पहुंच गई। अब पहुंच रहा है एक बढ़िया सा गाना, मैं जो आपके साथ हूँ। फ़ोन ट्राई कीजिए, ईमेल्स कीजिए, आइए हमारे साथ जुड़िए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सुनते रहिए FM Rainbow।

0: इस जमाने को क्या बुरा लगता है क्या नहीं बुरा लगता है, लेकिन ये कंप्यूटर जी जब अचानक से चुप हो जाते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। यार कोई बात नहीं, 11:10 का वक्त हो गया, हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्ते, नाम बताएं अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? अलीगंज, हमारे लखनऊ में भी है, आपको पता है?
1: खीरी में भी एक अलीगंज है।
0: जी, बहुत सारे ऐसी जगहों के नाम होते हैं ना जो जगह जगह मिल जाते हैं ना, जैसे गुसाईगंज हर जगह होता है, चौक हर जगह होता है ना।
1: और मैम हम दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं।
0: जी जी, ऐसा मत कहा करिए, आप दिव्यांग हैं, आप को ऊपर वाले ने बहुत सारी और अच्छी शक्तियां दी हैं जो शायद हम लोगों के पास नहीं है। बताएं क्या करते हैं और क्या कहना चाहते हैं हमारे बाकी श्रोताओं से?
1: FM सुनना हमको 2008 से FM सुनने बड़े सही हैं।
0: बड़ा लंबा वक्त हो गया जी,
1: FM ही हमारा गुरु है जान लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, बड़ा अच्छी अच्छी बातें मिलती है सुनने को,
0: और मनोरंजन भी होता रहता है।
1: बहुत बहुत बेस्ट आता है कार्यक्रम में।
0: जी, क्या मैसेज है आपका हमारे बाकी श्रोताओं के साथ जो शेयर करना चाहिए?
1: यही है कि हमारे इस समय क्षेत्र में बड़ी गर्मी पड़ रही है हर जगह, तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और जब भी निकले तो हाथ में जो है बोतल पानी ही होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और ज्यादा धूप में ना निकले, और क्या बोलने।
0: जी बिल्कुल, जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, ये थे संत राम जी लखीमपुर खीरी से, उसके पहले प्रीति जी का फोन लगा, पीयूष का फोन लगा, आप भी फोन ट्राई कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है, पहले तो लखनऊ का एसटीडी कोड डायल कीजिएगा 0522, और उसके बाद हमारे फोन नंबर है 2238845 या फिर 2238852, और ईमेल आईडी भी हमारी नोट कर लीजिए जो हमारे नए लिसनर्स हैं, FMAKASHVANILUCKNOW, दैट इज FM@lucknow.com, ये हमारी मेल आईडी है, आप इस पर भी अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं। लगातार ईमेल्स आ रहे हैं, चलिए कुछ ईमेल्स पढ़ लेते हैं। रामराज जी का मेल आ गया है हमारे पास, श्री गणेशाय नमः, संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया हैं और पप्पू जी हैं, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सब ने एक मिलकर एक मेल भेजा है, और कहते हैं कि सबसे पहले नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। कहते हैं कि संदेश ये है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, एकता में ही शक्ति है। धन्यवाद, बहुत प्यारी सी बात आपने कही, मिलजुल कर रहना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही जिंदगी आसान बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद रामराज जी और सभी को। मोहम्मद आसिफ जी भी आ गए हैं, क्या बात है, आपकी ये भी अटेंडेंस लग गई है। हैदराबाद तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं, और संदेश ये है कि शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट कसरत करनी चाहिए सभी लोगों को। आप योग, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, इससे आपका हार्ट और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपका भी, थैंक यू आसिफ जी। टाइगर खान, ये ईमेल आईडी मतलब हैंडल पे लिखा हुआ है। अच्छा, आपका मेल नाम है, माय नेम इज सबरीन, गुड मॉर्निंग मैम, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू डियर। इन्होंने हमें मेल किया है विलेज बेलई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, और मेल कर रही हूँ और कहती हैं संदेश ये के तौर पर कि इतना बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि बोलकर चुप हो जाएं कि लोग दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, अगर आप काम की बातें कहते हैं ना तो लोग आपके बोलने का इंतज़ार करते हैं, और अगर आप बेवजह की बातें और कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो आपके चुप होने का इंतज़ार करते हैं लोग। फिलहाल हम तो बोलते रहेंगे क्योंकि हमारा काम ही बोलना है ना, बोलने के ही तो यहाँ पे, बोलने के लिए ही तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी बातें आपके ज़रिए ही ऑन एयर करने के लिए आते हैं, और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करने आते हैं, वो ये कि आपका एंटरटेनमेंट, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट करने आते हैं। तो और बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय दिस एंड स्टे ट्यून्ड।

0: भाई लत लगाइए लेकिन अच्छी चीज़ों की, है ना। काम करने का जुनून, लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए, और जब आप मेहनत करने की लत लगा लेते हैं ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन साथ ही साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का। फिलहाल आपकी इस कवायद में FM रेनबो आपके साथ हमेशा बना रहता है और आपको इंस्पायर करता रहता है। और ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें हमारे लिसनर्स जुड़कर एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिलहाल हमारे साथ फ़ोन पर कौन है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैं नगराम, कस्बा नगराम से, लखनऊ
0: जी। नगराम से यानी लखनऊ से आपका फ़ोन है, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं
1: जी? मेरा नाम नज़र हसन है, मैं दर्दोजी का काम का।
0: नज़र हसन जी नगराम से, मुझे लगता है कि हमारे बहुत कम श्रोताओं का फ़ोन ओन लगता है ना?
1: जी, मेरा फर्स्ट टाइम कॉल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं और कितने वक्त से आप FM रेनबो से जुड़े हुए हैं ये बताइए पहले।
1: मैं जब ये चालू हुआ मैं बहुत छोटा था, जब से सुन रहा हूँ।
0: अब हम आपकी उम्र तो नहीं पूछेंगे लेकिन FM रेनबो लगभग 26 साल का पूरा होने वाला है ना?
1: हाँ, तो वो चालू हो चुका था, उसके बाद जब होश संभाला।
0: जी जी, क्या बात है। तो घर में कोई सुनता रहा होगा तभी तो, है ना?
1: नहीं, हमारे घर पे रेडियो एक जमाने से
0: है जी, और एक जमाना जो है रेडियो ने देखा है,
1: आज भी रेडियो है।
0: बिल्कुल, चलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं नज़र हसन जी? वैसे आपका नाम बड़ा यूनिक है, नज़र न लगे उस नाम को, और आपको भी मैसेज बताइए क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए।

0: सर
1: ये मेरा मैसेज ये जो लोग नालियों में खाना डालते हैं या बहाते हैं ये ना करिए, इसलिए आदमी कमाता किसी खाने के लिए। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमने अक्सर देखा कि नालियों के किनारे खाना डाल देते
0: हैं। बिल्कुल, बेदर्दी से डस्टबिन में चला जाता है खाना और वो अन्न का दाना हमारी थाली में तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगती है शायद इसका अंदाजा भी नहीं रहता।
1: बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नसीब भी नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। तो थैंक यू सो मच इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज के लिए। आई होप लोगों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है और रखेंगे भी लोग आपकी बात सुनकर। थैंक यू सो मच नज़र जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। तो भाई ये थे नज़र हसन जी नगराम लखनऊ से, और हमारे साथ और भी बहुत सारे लिस्टर्स जो जुड़ना चाहते हैं लगातार, उन्हें हम याद दिला दें कि 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852 ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। आप ट्राई करते रहिए, क्या पता आपकी कॉल लग जाए। और ईमेल, अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है तो मेल हमें कर दीजिए, अपना मैसेज ज़रूर भेजिए मेल के माध्यम से। और जैसे कि हमारे पास मेल आए हैं fmakashwanilakhnau@gmail.com पर संतोष चौरसिया जी का, और संतोष चौरसिया जी गुरुग्राम हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम बहुत लाजवाब लग रहा है, थैंक यू सो मच। मेरा संदेश है कि सभी लोग सुबह खाली पेट एक ग्लास पानी पिएं, थोड़ा काला नमक डालकर, और ओके। और इन्होंने नाम लिखा है पूजा भारद्वाज जी का, तो उन्हें भी हमारा नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े सारे लोग पीते हैं, गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए सुबह, और कहते हैं कि आपको फिट रखने में हेल्प करता है। बहुत लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग मेथी जीरा अजवाइन पानी पीते हैं, बहुत सारे और तरह तरह के पानी का सेवन किया जाता है सुबह सुबह फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और ज़रूरी भी है। तो थैंक यू सो मच संतोष और रसिया जी। कृष्णकांत सिंह जी भी आ गए हैं और इन्होंने नमस्कार भेजा है, आपका दिन भी बहुत बहुत शुभ हो। कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल लिखते हैं कि मॉर्निंग से ही आपके द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम को सुन रहा हूं, बहुत अच्छी प्रस्तुति लग रही है, थैंक यू सो मच। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में कुदरत ने गर्मी से बचने के लिए तमाम प्रकार के फल और सब्जियां दी हैं जिनके प्रयोग से आप इस जलती गर्मी में राहत महसूस करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। शीतल जल खूब पिए जिससे शरीर डिहाइड्रेटेड रहे, हाइड्रेटेड रहे लिखना चाहिए था। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत जी। मोनू जी आपने क्या लिखा है, अच्छा ये मोनू सेठ, गुनगुन सेठ, परी सेठ, खालिसपुर, ऊंच गांव, भेल, अमेठी, बुजुर्गों का सम्मान, खुशियां, घर का सच्चा सौभाग्य। घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव और संस्कारों की जीवंत मिसाल हैं, उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, कर्तव्य है हम सबका। ये बुजुर्गों को उपेक्षित महसूस न होने दें बल्कि उन्हें ऐसा माहौल दें जिसमें वो खुश रहें, उनका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच पूरी सेठ फैमिली को। अमेठी से आपका मेल आया, थैंक यू। राजेश पासवान जी कहते हैं कि मैं इस समय अपने अपनों के अलावा बर्ड्स, हाँ इस समय अपने अपनों के अलावा बर्ड्स के लिए भी पानी ज़रूर रखिए और सबका ख्याल रखिए। देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है ना कि पानी का संरक्षण भी करना है हमें, पानी जीवन है, आपको पता ही ना, जल जीवन है। और अपने साथ साथ आप पशु पक्षियों को भी पानी पिलाते रहिए, गर्मी तो उनके लिए भी है ना, उनका कौन है उनका ख्याल रखने वाला। तो दाना पानी ज़रूर रखिए, हमारी रूटीन में, मेरी तो दिनचर्या का पहला हिस्सा है कि अपने घर की छत पर जहाँ कहीं भी 3-4 जगह पर पानी दाना चिड़ियों के लिए रख कर आते हैं। और मेरे घर में इतनी सारी चिड़ियाँ हैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारी लगती है उनकी आवाज़ जब सुबह सुबह वो हमें जगाती हैं, और मतलब एक सुकून भरा माहौल हो जाता है ना आपके आसपास का। तो प्रकृति और पशु पक्षी, इन सब से प्रेम कीजिए और अपने जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाते रहिए। सतरंगी चैनल 100.7 के साथ जुड़े रहिए। ब्रजेश जी, राज जायसवाल जी, आप सबके भी मेल मिल गए हैं, पढ़ते हैं, शामिल करते हैं इस ट्रैक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
5: जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत, हमारे इस वक्त आरजे अंजू शुक्ला, मैं हूं आपके साथ और 11:29 का वक्त हो गया। हमारे साथ फोन पर कोई और आवाज आ गई है। हेलो हेलो,
6: यस मैम
5: जी, कहां से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका, कहां चली गई थी भाई? हेलो जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ जी, बात कीजिए। आप रेडियो पर हमें मत सुनिए, आप फोन पर हमसे बात कीजिए, ठीक है? हेलो,
6: यस मैम, हेलो।
5: पहली बार कॉल लगी लग रहा है ना?
6: यस मैम।
5: क्या नाम है आपका?
6: मेरी आवाज मुझे ही रिपीट हो रही है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई।
5: आपका, आपके आसपास मोबाइल पर फोन चल रहा है, रेडियो चल रहा है?
6: मैम मैं एक फोन में सुन रही थी, मैंने दूसरे फोन से किया है।
5: हाँ तो जो जिस फोन पर आप सुन रही थी ना, उसको दूर कर दीजिए, अब सिर्फ हमसे बात कीजिए, थोड़ा दूर चली जाइए। बिल्कुल, अब सही है, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है?
6: यस मैम।
5: अब बताइए, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले और कहाँ से बात कर रही हैं?
6: मैम मेरा नाम मधु विश्वकर्मा है, मैं सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ।
5: ओके, और आप हमें कब से सुन रही हैं, एफएम रेनबो से कब से जुड़ी हुई हैं?
6: मैम मैं तो 1-2 साल हुए, ज्यादा नहीं बस।
5: और पहली बार फोन लगा आपका?
6: यस मैम।
5: बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज बहुत सारे ऐसे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं जिनका पहली बार फोन लग रहा है।

0: है और अच्छा लगता है जब नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं। मधु अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं?
1: मैं इस समय स्टडी करती हूँ।
0: किस चीज की?
1: मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर में।
0: ओके, और इस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी तो कैसा लग रहा है, कैसी बीत रही छुट्टियां?
1: मैम छुट्टियां तो हैं बट एग्जाम्स होते रहते हैं, गर्मियों में तो फिलहाल कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
0: चलिए,
1: बस ये धूप धूप में उतना जाना नहीं रहता, एग्जाम जब होते हैं तभी जाना पड़ता है।
0: तो चलिए छुट्टियां एंजॉय कीजिए, घर में आराम से रेडियो के साथ अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। क्या कहना चाहती हैं हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं उनसे मैसेज के तौर पे?
1: मैम मैं ये कहना चाहूंगी नेचर का बहुत ज्यादा ध्यान दें और अपनी हेल्थ का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह कट रहे हैं तो जिसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ रही है।
0: तो पेड़ काटना नहीं चाहिए ना, पेड़ लगाना भी चाहिए साथ साथ।
1: बहुत ज्यादा जो मतलब खत्म हो रहे हैं एनिमल,
0: उनका भी ख्याल रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मधु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एक अच्छे भविष्य के लिए। और देखिए जब नए नए लिसनर्स मिलते हैं, जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है ना, एफएम रेनबो कहां से कहां तक सुना जा रहा है ये भी हमें पता चलता है, और ईमेल के माध्यम से भी लगातार आप हमसे जुड़े रहते हैं वो भी हमें मालूम पड़ता रहता है। विजय सिंह दीपू जी का मेल आया है, क्या लिखते हैं? संदेश के तौर पर कहते हैं, कल हम नानपारा जा रहे थे, रास्ते में चेकिंग चल रही थी, हमने देखा जो लोग बिना हेलमेट के थे वो वापस हो जा रहे थे, वहां पर जा नहीं रहे थे उस रास्ते से, और जिन्होंने इन्होंने हेलमेट पहन रखा था तो इनको नहीं रोका गया। प्लीज ऐसा ना करें, बिना हेलमेट के ना चले। देखिए हेलमेट आप किसी तरह के चालान के डर से अगर पहन रहे हैं तो फिर वो क्या ही कहूँ ऐसे लोगों से, आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आगे ये लिखते हैं कि सुबह से कार्यक्रम लगातार सुन रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं था मेल करने के लिए, सुबह से खेत के लिए अच्छा खाद यूरिया के लिए भागदौड़ में थे। और देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ी परेशानी तो होती है ना, आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए कितनी लंबी लाइन होती है, और हर जगह जहाँ पर सुविधाएँ होती हैं वहाँ थोड़ी बहुत दुविधा तो होती है। ब्रजेश जी बस ये है कि अपना ख्याल रखिए और सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब काम हो जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। राज जायसवाल जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है और लिखते हैं कि प्लीज शत्रुओं गोजो को, अच्छा ये पद इन्होंने कोई गाना मुझे लगता है लिखकर भेजा है, और आप लोग जब टाइप करें ना तो एक बार चेक कर लिया करें कि आपने लिखा क्या है और क्या हम तक पहुंच रहा है, ताकि हम लोगों को भी परेशानी ना हो और हम बिना किसी विघ्न बाधा के आपका ईमेल ठीक ठाक ढंग से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच राज जायसवाल जी। आपको बताना चाहेंगे कि ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, 2 से 3 बजे का जो प्रोग्राम होगा हॉटमेल, आप उसमें ज़रूर मैसेज करिएगा। वकील अहमद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपने प्रोग्राम की आवाज़ की तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वकील अहमद मसूरी कट का हथुरी जिला सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं, साथ में साहिबा शाजिया अंसारी और सभी लोग हैं, और इन्होंने लिखा है कि गाड़ी धीमे चलाएं, चार पहिए वाले ने हमारे यहाँ गुरु थप्पा गांव मोड़ पर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उम्मीद करते हैं कि वो ठीक होंगे और हम उनके जल्दी रिकवरी की दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। और इन्होंने बहुत प्यारा मैसेज लिखा, लिखते हैं कहानी बनकर दिल में बस जाते हैं, निशानी बनकर जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर, है अब क्या ही बताएं, रख लीजिए पानी मत बहाइएगा, जब हम किसी की याद में रो देते हैं ना तो वो फिर क्या ही कहा जाए। खैर जो लोग दिल में बस जाते हैं तो वो आजीवन दिल में रहते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, प्रोग्राम मस्त चल रहा है, और ये बात लिखकर भेजिए कोमल तिवारी जी ने, गर्मी के दिन चल रहे हैं समय पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सेवन करें, ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन ना लें, नुकसान कर सकता है। अच्छा, और कोमल तिवारी ने कैसरगंज बहराइच से हमें फ़ोन किया है, मतलब मैसेज किया है, और देखिए बस इतना कहूँगे ना कि सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो आसानी से हजम हो सके, और फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करते रहिए, है ना? एक जगह बैठे बैठे जो खाते पीते रहते हैं ना उनके लिए हम क्या ही कहें, बस ऑर्डर पे ऑर्डर, फरमाइशों पे फरमाइशें। एक मेल और पढ़ते हैं फिर गाना सुनवाएंगे, और ये मेल है महेंद्र दीपन जी का, नमस्कार आपको भी, राजस्थान के नागौर ज़िले के रूड़ गाँव से हैं और प्रोग्राम के नियमित श्रोता हैं एफएम रेनबो के। लिखते हैं कि आज मैं आपके इस शानदार मंच के माध्यम से एक ज़रूरी बात साझा करना चाहता हूँ, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर कोई व्यक्ति आपको समय दे रहा है, आपकी बातों को महत्व दे रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो व्यक्ति खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है। आज के समय में हर किसी के पास बहुत काम है, लेकिन वो आपको इसलिए समय देता है क्योंकि आप उससे जुड़े रिश्तों की कद्र करता है वो, और नहीं चाहता कि आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे। जो आपको महत्व देते हैं उनकी कद्र करना सीखिए, रिश्ता एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से निभाने पर ही

मजबूत होता है। बात बिल्कुल आपने सही कही है और ऐसा होना भी चाहिए। बड़े सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि मैसेजेस पे मैसेजेस पड़े रहते हैं, कभी कोई रिप्लाई नहीं, कभी कोई रिस्पांस नहीं। लेकिन जो लोग रिस्पांस दे देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री बैठे हैं। और भाई क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। अब इतनी फालतू की बातों के लिए तो नहीं समय मिलता है। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो ज़रूर मैसेज करिए, जवाब मिलेगा, है ना। चलिए एक बढ़िया सा गाना, वापस आते हैं। Stay tuned.

0: होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ फोन पर कौन है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो
2: जी, नमस्कार जॉली जी, कैसे हैं?
3: बढ़िया है साहब।
2: क्या हो रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं हमारे लिसनर्स से?
3: गर्मी बहुत है।
2: हम्म,
3: तो मैं अभी अभी श्रीनगर से घूम के आया हूँ।
2: अच्छा, कश्मीर वाला, लखीमपुर खीरी वाला?
3: ये हमारे आलम बाग श्रीनगर में है।
2: अच्छा, लखनऊ में भी कोई श्रीनगर है? हमें आज पता चला। हम कहाँ थे अभी तक?
3: नहीं,
2: अच्छा, आपके मोहल्ले में
3: गब्बर सिंह का रामगढ़ भी है।
2: अरे वाह,
3: और
2: गजब। तो पूरी दुनिया की सैर करने की क्या ही जरूरत है, आलमबाग पहुंच जाए, है ना, पूरी दुनिया घूम लेंगे।
3: और मैं रहता हूँ।
2: अरे वाह, मस्त जगह पर रहते हैं आप, हैं तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि जब हम, कई बार होता है ना ऐसा कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के आसपास की ही हमें जो स्थान है, दर्शनीय स्थल है, उनके बारे में भी नहीं पता होता है, जगहों के नाम के बारे में भी नहीं पता होता है। वैसे लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, तो अच्छा लगा आज हमारी भी जानकारी में इजाफा हो गया। और इसके
3: जानकारी और मैं दे दूं आपको।
2: हाँ बताएं।
3: 16 जून 2002 को हमारा गुड मॉर्निंग प्रोग्राम शुरुआत हुई थी।
2: क्या बात है।
3: और हम इसके बाद में वहाँ आकर कभी कभी बोला करते थे साहब।
2: वो तो हमें पता है, है ना। 16 जून 2002 को गुड मॉर्निंग शुरू हुआ था और 24 जून 2002 को हमने पहली बार प्रोग्राम किया था, पता है आपको। तो 24 साल होने वाले हैं उस घटना को। जी बताएं
3: कि आजकल जो हम लोग दशहरी पपी आम वगैरह गले मोहल्लों में या दुकान से खरीदते हैं, तो वो केमिकल में थोड़ा सा डीप किए हुए होते हैं।
2: बिल्कुल, केमिकल से पकाए हुए होते हैं।
3: हाँ, तो जरा सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि वो दूसरे दिन बिल्कुल ब्लैक से हो जाते हैं, तो हानिकारक होते हैं खाने में।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर अब हर फल के साथ ऐसा हो रहा है और आम की फसल के साथ तो खास तौर पर। देखिए, असली आम अगर खाना है ना तो बाग में चले जाओ। आम, अब बाग किसका है ये डिपेंड करता है। वैसे बड़े सारे लोग जो है दूसरों के बाग में पहुंच जाते हैं आम खाने के लिए, लेकिन ये है कि डायरेक्ट अगर हम किसानों से लेते हैं और जो मंडियां हैं जहां पर किसान लेकर आते हैं बिना केमिकल वाला नेचुरली पका हुआ आम, अगर वो मिल जाता है तो बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग, है ना।
3: एक पियोन था, वो मलियाबाद का रहने वाला था।
2: अरे वाह, तब तो आपने खूब फायदा उठाया होगा। जी जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जब
3: आपको बांटता था वो।
2: जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम वैसे बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाग में अच्छी फसल हुई होती है, वो लोग बहुत सारे लोगों को भेंट स्वरूप आम बेचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को दुआ दीजिए, हमें भी कोई मिल जाए ऐसा।
3: मैं एक जानकारी और, मैंने अभी कुछ दिन पहले कच्चे पक्के बड़े आम लिए थे और उसको मैंने पका लिया, खुद ही रखे रखे।
2: अरे वाह,
3: तो उसका स्वाद तो बिल्कुल नेचुरल साजा हो गया।
2: बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि केमिकल से दूर रहें और नेचुरल चीजों के ज्यादा नजदीक रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जॉली जी बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: Okay.
2: और भाई, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास लगभग 15 मिनट का है, लेकिन हमारे पास जो ईमेल्स आए हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। रोशनी रावत क्या लिखती हैं? गुड मॉर्निंग, आप कैसी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। कहती हैं कि प्रोग्राम बहुत लाजवाब, बिंदास, कमाल लगा, आपकी तारीफ क्या लिखूं, मेरे पास शब्द कम हो गए। अरे नहीं भाई, 10 बजे वाले प्रोग्राम की तारीफ की है इन्होंने और कहती हैं सुनकर अंतरात्मा प्रसन्न हो उठी है। क्या बात है, अंतरात्मा किसी की नाचने लगती है कभी कभी, प्रसन्न हो जाती। खैर, कहती हैं कि आज कॉल नहीं करूंगी क्योंकि आपको कल आपसे बात हो गई थी। जी हाँ रोशनी जी, आपसे कल बात हुई थी। आप तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव की रहने वाली हैं, गांव का नाम है बमना और चंडीगढ़ से प्रोग्राम इस समय सुन रही हैं। संदेश के तौर पर कहना चाहती हैं कि कहीं भी जाएं अपने साथ एक पानी की बॉटल जरूर लेकर जाएं। मुझे लगता है कि एक पर्याप्त भी नहीं होती है ना, जहां कहीं भी पीने के पानी का आपको इंतजाम मिल जाए वहां से आप उस बॉटल को रिफिल जरूर कर लें और पानी पीते रहें। मुनेश कुमार जी का भी मेल आ गया है और आपने क्या लिखा है, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, क्या बात है। और इनका मेल आया है गांव

भानपुर हरहुआ जिला लखीमपुर खीरी से कहते हैं कि जब फोन कॉल लग जाए तो ज्यादा देर तक बात ना करें। अच्छा, पॉइंट वाइज इन्होंने बातें लिखी है, और अगर ज्यादा कहना हो तो एक हफ्ते बाद फिर से फोन मिलाए। नेक्स्ट बात इन्होंने जो लिखी है वो कहते हैं कि ईमेल हमेशा नाम से ही भेजें, दूसरों के नाम ना लिखें, नाम से ना लिखें। अगर लिखना है तो एक व्यक्ति का नाम लिखें या फिर लिखें सभी श्रोताओं को। बिल्कुल सही बात आपने कही है, आपने आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। बाकी आप खुश रहें, आबाद रहें, चाहे दिल्ली रहे या अमीनाबाद रहे। पक्का श्रोता है ये, आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज। अच्छा, कुछ लोग कच्चे वाले श्रोता भी होते हैं ना, इधर उधर स्विच ओवर हो जाते हैं। खैर, सोनू जी आपका भी मेल हमें मिल गया है, कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि आप सबका भला हो। संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। और हमारे बुजुर्ग कहते थे, दोस्ती में मिठास उतनी ही रखो कि स्वाद हमेशा बना रहे। बिल्कुल, और आपका मेल हमें खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से, बड़ा ही प्यारा मेल, थैंक यू सो मच। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी, यानी ये है पिंकू सोनी जी, टिकैत नगर बाराबंकी से आपका मेल आ गया है, और कहना चाहते हैं कि जो लोग अपनी छत से कूड़ा रोड पर फेंक देते हैं, ये कैसे लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, है ना, किसने बनाया है ऐसे लोगों को, और ये बहुत गलत करते हैं। खैर, टिकैत नगर बाराबंकी से आपका मेल आया है। कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी और सभी लिसनर्स के आपने नाम लिखे हैं, मतलब सभी लिसनर्स लिख दिया है, थैंक यू सो मच। एक मेल और पढ़ते हैं फिर गाना बजाएंगे। गीता जी का मेल है ये, जल संरक्षण से बहुत सारे लाभ है अपने दैनिक जीवन में। जो भी जल आप खर्च करते हैं, 10% जल भी अगर बचाते हैं ना, तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है। और एक बात और आपने लिखी थी, कल के माटी की सुगंध प्रोग्राम झलझलुआ रहा। अरे दैया, कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के लाते हैं, हैं, मतलब झमझमाउआ, झलझलुआ, हनहनउआ, कितने सारी, मतलब एक अलग तरह की डिक्शनरी प्रिंट होनी चाहिए, है ना, एफएम रेनबो के नाम से स्पेशल वर्ड्स की। फिलहाल ए ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह, एंजॉय दिस एंड स्टे ट्यून्ड।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों, श्रमिकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और नवाचार क्षेत्र को कई नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। श्री शाह ने कहा कि उनकी वीरतापूर्ण गाथा देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में 570 करोड़ से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव को विकास की दिशा में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब तेजी के साथ यहां उद्योग लगेंगे और नौजवानों को यहीं रोजगार मिलेगा। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने फिल्टर चैम्बरों का निर्माण कराया है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांवों में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा नदी का जीर्णोद्धार कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से दोनों नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। बलरामपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में आज विश्व योग दिवस पर योग सप्ताह अंतर्गत सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को प्रतिदिन योग कर 21 जून को सामूहिक योग अभ्यास में भाग लेने की अपील की गई। इसके साथ लोगों को अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन योग को अपनाने एवं निरोग रहने की कला के प्रति जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: प्रोग्राम शत्रुपा का। क्या कुछ है खास, सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन एक छोटे से पॉजिटिव नोट के बाद। पॉजिटिव नोट ये है कि भाई कई बार हमारे लाइफ्स में बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, खासकर से अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की। जी हाँ, आपके वर्क प्लेस की। बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन में ऐसे आ जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि ये एक दो दिन में नहीं होता है, कुछ हफ्ते लगते हैं, कहीं पे महीनों लग जाते हैं, कहीं पे सालों भी लग जाते हैं, लेकिन वो सब बातें इतनी घर कर जाती हैं आपके जहन में कि आपका फिर मन नहीं लगता है आपके वर्क प्लेस पर। सबके साथ होता है ये, मुझे पता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ सिंपल सा एक लॉजिक है जो अपना लेना चाहिए, और वो लॉजिक ये है कि जो लोग पोल्यूट कर रहे हैं आपको, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, और अगर उनके बगैर आपका काम ना चलता हो, मतलब उनसे कनेक्शन आपको बनाना ही पड़े, तो उनकी बात बस मतलब की सुनिए, बिना मतलब की उनसे कोई बात मत करिए, ना उनकी बात बिना मतलब वाली कोई सुनिए, यही एक मूल मंत्र है। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का हम बेहतरीन से ट्रैक के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, और उसके बाद बेहतरीन सा ट्रैक आप सबका इंतज़ार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार आदाब 100.7 FM रेनबो पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपकी होस्ट फातिमा, वक्त हो गया आपको फटाफट वक्त बताने का। 12:04 का वक्त और ये वक्त है

0: 12 बजकर 10 मिनट का वक्त और हम भी अपने दिल का हाल आपको बता देते हैं। भाई हाल कुछ यूं है कि आज है थर्सडे का दिन और थर्सडे को हम बात करते हैं आपसे घर के इंटीरियर्स और बागवानी से जुड़ी, लेकिन 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे हर साल। मैंने सोचा आज इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। भाई आपके इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए अगर आप घर के अंदर योगा अभ्यास करते हैं, आप एक अनुभवी योगी हो या ना हो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। लेकिन हाँ, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके घर के अंदर आपको किस तरीके का माहौल चाहिए। और कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरे घर के पास मेरे नेबर्स ही हैं जो अपने छोटे से गार्डन में भी प्रैक्टिस, योगा का जो प्रैक्टिस है वो करना पसंद करते हैं। तो किस तरीके का आपका आसपास का माहौल, आपका वातावरण होना चाहिए, इस पर सोचा मैंने थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ सा डिस्कशन कर लेते हैं। और मुझे पता है ये आपके साथ एक कनेक्ट ज़रूर बना पाएगा और कहीं ना कहीं आप भी बहुत रिलैक्स फील करेंगे सारी बातें सुन करके। तो भाई इस टॉपिक पर जो चर्चा है वो जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉयिंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:17 मिनट का वक्त हो गया और बेहतरीन ट्रैक आपने फिल्म सिटी लाइट से एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर. अच्छा एक इसी बात पे एक मतलब ऐसे ही बस क्योंकि टॉपिक पर डिस्कशन करना था तो एक फ्रेज़ याद आ गया कि हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी. जी हाँ, एक बेहतरीन जहन उसी इंसान के शरीर में होता है जो जिसकी बॉडी एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन होती है. और ये जो कहावत है ना ये बिल्कुल सत्य भी है. अगर आप थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना एप्ट है. आज की डेट में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग अपने आप को फिज़िकली फिट रखने के लिए तमाम तरीके के एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हैं. कुछ लोगों ने योग को भी एज अ फुल फ्लेज डेली रूटीन में अपने शामिल कर लिया है. काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं योग को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे आपको दिखाई देने लगते हैं और बहुत ही कम टाइम में. कई बार ऐसा होता है अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो उसके जो आपको जो उसके फ़ायदे हैं वो कुछ दिन के बाद नज़र आएंगे. लेकिन योगा आप जिस दिन से स्टार्ट करते हैं ना उसी दिन से आप एकदम एनर्जेटिक और बिल्कुल पॉजिटिव फील करने लगते हैं. आपके जहन में एक संतुलन डेवलप हो जाता है. तो खैर योगा की तो बहुत सारी हमने तारीफ़ें कर ली लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप चाहे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो योगा प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप अभी योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं तो घर पर योग के लिए एक डेडिकेटेड स्थान होने में काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं. ये अगर आपके पास एक डेडिकेटेड प्लेस होती है ना तो ये सुनिश्चित हो सकता है कि आप अपने अभ्यास में आप अपनी प्रैक्टिस से ज़्यादा

गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको मतलब कई लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उनके मन में एक परसेप्शन है कि भाई बहुत बड़ा सा एक योग स्टूडियो होना चाहिए या बड़ा सा एक डेडिकेटेड रूम होना चाहिए, लेकिन आपको हम एक बात बताएं ना, घर में ही एक आरामदायक योग स्पेस बनाना बहुत आसान है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, अपने योग स्पेस की योजना आप कैसे बना सकते हैं और कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल सिंपल आपके घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ। देखिए भाई, हर किसी के पास योग स्टूडियो हो या पूरा एक डेडिकेटेड कमरा हो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल ठीक भी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में एक शांत कमरा चुनें। कोशिश करिए कि रसोई और बैठक, जी हाँ, जो आपका किचन है और लिविंग एरिया, उससे थोड़ा सा दूर हो और उससे उसी जगह को, उस डेडिकेटेड जगह को अपना योग सेंटर बना लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा ऐसा तो कमरे में ही कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ आप आराम से योगा कर सकें। अगर आपके पास योगा के लिए पूरा कमरा है भी तो भी उसे आप मल्टीपर्पज़ बना सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई दिन भर में होते हैं 24 घंटे और एक इंसान नॉर्मली योग प्रैक्टिस करता है एक घंटा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाता है। कुछ लोग करते हैं तो कुछ और घंटे आप जोड़ लीजिए इसमें बस, लेकिन फिर भी तकरीबन 20 से 22 घंटे आपका वो कमरा वेकेंट रहेगा। तो आप उस कमरे को मल्टीपर्पज़ बना सकते हैं, किसी और, जब आप योग ना कर रहे हो तो किसी और काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। घर में एक आरामदायक योग स्पेस बनाने का तरीका बुनियादी बातों से शुरू होता है। सबसे पहले आपको ये पक्का करना होगा कि आपका कमरा सही उपकरणों से सुसज्जित है और आपके पास ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं। और आपको बताया, अब आप जब मैंने जैसे ही कहा होगा ना कि भाई सही उपकरणों से सुसज्जित करें, तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि बहुत सारा खर्चा आएगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, बहुत सारे पेंस लगेंगे मार्केट से जाके सामान लाने में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, योग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका जो स्टार्टिंग है, इसकी जो शुरुआत है, इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। एक शांत जगह, कम से कम सामान और सही मन, यही वो कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी फ़ायदा होता है आपको, योग प्रैक्टिस में। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं लेकिन वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे, लेकिन एक छोटे से बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:34 का वक्त, और अगर आप खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। और ख़ुद को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए कई सारे माध्यम अवेलेबल हैं, उसमें से एक माध्यम है योग भी। तो योगा करने के लिए कई बार हम योग सेंटर्स पे ख़ुद को इनरोल कराते हैं, फिर क्या होता है टाइम की कमी के चलते हम उन सेंटर्स पे पहुंच नहीं पाते, फिर 4-5 दिन तो बड़ा रिगरसली और रिलीजियसली जाते हैं लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बेहतर होता है कि हम अपने घर के कम्फर्ट में अपने टाइम को मैनेज करते हुए, कई लोग घर में भी कर लेते हैं, घर के अंदर भी करते हैं और घर के बाहर जो गार्डन एरिया होता है उसको भी यूटिलाइज करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि घर के अंदर आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, प्लस आप किन बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ योग प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हैं। तो इस मतलब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक अच्छी मैट चुनना बहुत ज़रूरी होता है। आपके प्रैक्टिस का आधार है एक अच्छी मैट, और रियलिटी में आपके बॉडी के अलावा यही एकमात्र ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक मोटी टिकाऊ मैट चुनें जिसमें फिसलन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मोटी टिकाऊ मैट चुनें जिसमें फिसलन रोधी उत्कृष्ट पकड़ हो। जी हाँ, एक मजबूत होनी चाहिए। इस तरीके की मैट्स बहुत इजीली, योगा मैट्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसमें स्लिप नहीं करती हैं वो आसानी से। उसके बाद पट्टा एक बेहतरीन इक्विपमेंट है जो लचीलेपन में सहायता करता है और अधिक खिंचाव प्रदान करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। योग अभ्यास के लिए कई लोग ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं कि भाई ब्लॉक्स ज़रूरी एक इक्विपमेंट है, इनसे आसन अधिक स्थिर और संतुलित महसूस होते हैं। सही मुद्रा को समझने और प्राप्त करने में भी ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो किताबें, ढेर सारी किताबें एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लें, वो भी काम आ जाती हैं। इसके अलावा तकिया, जी हाँ तकिया, ये जो एक तकिया है ना, इसके अंगिनत फायदे हैं। तकिया आसन को आरामदायक बना सकता है, हृदय को खोल सकता है, पीठ के निचले हिस्से को सहारा दे सकता है और शरीर को खोलने तथा गहरी मुद्रा प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो ये तो कुछ इक्विपमेंट्स हो गए जो आपको इजीली घर में ही अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपके घर के अंदर जैसे मैंने भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा शांत एरिया हो जहाँ पे लोग आते जाते ना हो, या फिर अगर दिन भर आना जाना लोगों का लगा रहता है तो कोई ऐसा टाइम स्लॉट चुनिए जब रिलैक्स्ड रहें आप, 1-1.5 घंटा बिल्कुल माइंड से रिलैक्स्ड रहें, अपना फ़ोन बिल्कुल साइड में रख दिए। देखिए फ़ोन या डिजिटली आप जितना ज़रूरत हो उतना ही खुद को कनेक्टेड रखिए डिजिटल वर्ल्ड से, बाकी टाइम बिल्कुल खुद को रिलैक्स रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड करता है, साथ ही साथ आपके जो रेगुलर रूटीन वर्क है उससे डिविएट करता है। तो ये तो कुछ घर के जो इंटीरियर्स हैं उनकी हमने बात कर ली। अगर अब हम बात करना चाहते हैं कि भाई घर के बाहर आपके बगीचे में किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, कैसे आप पेड़ पौधे लगाए हों या किस तरीके की घास हो, कैसी जगह हो, इसके बारे में भी हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक का, तो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद वो सारी बातें आपसे ज़रूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ये सूदिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर 12:49 का वक्त हो गया है। और आपको बता दूं कि भाई घर के बाहर बगीचे में योग करने का जो एनवायरनमेंट है ना, वो थोड़ा सा शांत हवादार और प्राकृतिक होना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम और ध्यान के लिए आपका जो वातावरण है ना, वो प्रदूषण मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सूर्योदय से पहले का जो वक्त होता है वो सबसे अच्छा रहता है। बगीचे में योग स्थान का वातावरण बनाते वक्त कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जगह एकांत और शांति से भरी हुई हो। साथ ही साथ वातावरण में शोरगुल, जैसे गाड़ियों की आवाज़ें या बहुत शोर शराबा है, वो कम होना चाहिए। एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक शांत कोना चुन लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि समतल यानी फ्लैट और साफ ज़मीन चुनना सुनिश्चित करें। क्योंकि देखिए, अगर आप बैठने के लिए बिल्कुल फ्लैट ज़मीन चुनेंगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अनकंफर्टेबल हुए, आप योग मैट बिछा सकते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ का अश्योरेंस ले लीजिए कि ज़मीन पर किसी तरीके के कंकड़ पत्थर या फिर कीड़े मकोड़े ना हो। पेड़ों की छाँव सबसे एप्ट होती है, लेकिन अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके घर में बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके गार्डन में कुछ लताएं हैं और उससे आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है कि थोड़ा सा शेडेड एरिया है, थोड़ी छांव रहती है, तो उसके नीचे बैठ करके आप इत्मीनान से योग करिए। बिल्कुल आइडियल जगह होती है वो। बगीचे के ऐसे हिस्से का आप सिलेक्शन करिए जहाँ आसपास के लोगों, स्पेशली आपके जो पड़ोसी हैं, उनकी आवाजाही थोड़ी सी कम हो, जिसे आप बिना किसी झिझक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये है कि जो नेचुरल स्मेल होती है ना, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक अलग सी खुशबू होती है। अगर आपके आसपास पौधे लगे होंगे, उन पौधों में अगर आप लैवेंडर और चमेली जैसे खुशबूदार पौधे लगा लें, और वो जो हरी घास होती है उसकी जो महक होती है बहुत ही खुशनुमा बनाए रखती है आपके पूरे उस एक घंटे के टेन्योर को। इसके अलावा बैम्बू के पत्तों की सरसराहट एक प्राकृतिक संगीत का अनुभव देती है। तो ये सब देखिए कुछ बेसिक्स हैं, जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं ना, उनके यहाँ ये सब चीज़ें मुझे मिलती हैं, मैं देखती हूँ इस चीज़ को। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके तो एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगाएं। और आजकल तो वाटर फाउंटेन बनाना इतना ईजी हो गया है, डिजिटली आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट को बुलाएं, और आप इस चीज़ को घर बैठे बड़े आराम से बना सकते हैं। घर पे मौजूद जो पुरानी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, आप रिड्यूस रिसाइकिल वाला जो प्रोसेस है वो अपना करके एक छोटा सा वाटर फाउंटेन बना लीजिए, और उसमें उससे जो बहते हुए पानी की धीरे धीरे आवाज़ आएगी ना, वो मन को बहुत ही गहरा सुकून देती है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी सारे आस्पेक्ट हैं जो हमने कवर कर लिए हैं, और आपके घर के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स दोनों का इस्तेमाल करके, दोनों जगह के एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतरीन सेटअप तैयार कर सकते हैं योग करने के लिए। और जितना बेहतरीन आपका सेटअप होगा, उतना ज़्यादा आपका मन लगेगा, और जितना ज़्यादा मन लगेगा उतना ज़्यादा आप सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो पाएंगे। तो फिलहाल बस इसी नोट पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे इस प्रोग्राम को, इस वादे के साथ कि एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम काल खंड रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इन 12 वर्षों में एक और श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ। वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई के चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुओं को लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चेन्नई हवाई अड्डे से मेड इन इंडिया मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान भेजे गए हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है और स्थानीय उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव को विकास की दिशा में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब तेजी के साथ यहां उद्योग लगेंगे और नौजवानों को यहीं रोजगार मिलेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों की रख रखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग्य और जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रख रखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे, क्षतिग्रस्त चाकू या किसी अन्य प्रकार से अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता की सुरक्षा को खतरा है। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमियस्वामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हीरा मित्सू ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला यूरुग्वे से कल सुबह 4:15 होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बिजनेस को

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

1:04 मिनट का वक्त हो गया है और आगाज हो गया है प्रोग्राम होटो पे तेरी बात का. क्या कुछ है खास आज इस प्रोग्राम में, सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर. बेशक हमारा भी दिल यही चाह रहा है कि फटाफट बस मेघा जो है ना बरसने लगे.

50% की छूट दी जाएगी। मुहर्रम के पहले दिन कल लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से रवायती शाही जरी का जुलूस गम और अकीदत से निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता हुआ रात गए छोटा इमामबाड़ा पहुंचा। जुलूस में आज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के भी वसी इंतजाम किए गए थे। बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर हुकूमत हिंद की वजारत आयुष के ज़र अहतमाम गंगोत्री से गंगा सागर योगा यात्रा के एक हिस्से के तौर पर कल वाराणसी में एक योगा और अवामी राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो 21 जून को मनाया जाएगा। रियासती हुकूमत में आयुष के वजीर ममलकत डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वाराणसी के हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ये मुहिम 13 जून को गंगोत्री से शुरू हुई थी और 20 जून को गंगा सागर में अख्ताम पजीर होगी। वाराणसी इस सफ़र का एक पड़ाव था। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रनों से शिकस्त दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन की सेंचुरियों की बदौलत अफगानिस्तान को जीत के लिए 403 रन का हदफ दिया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर और 3 गेंदों में 232 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

1:16 मिनट का वक्त और आज दिन है 18 जून। 18 जून के दिन बहुत कुछ ख़ास हुआ, बहुत सारे लोग दुनिया में आए और बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, जिसकी इन्फॉर्मेशन तकरीबन आपको हमारे जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है गुड मॉर्निंग लखनऊ उसमें मिल जाती है। तो ऐसी ही एक शख्सियत हैं रानी लक्ष्मीबाई जी। 18 जून 1858 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और अगर उनके जीवन और व्यक्तित्व की हम बात करें तो उसमें ऐसे कई गुण हैं जिन्हें अपना कर हम अपनी ज़िंदगी में सफलता और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साहस, निर्भीकता, इच्छा शक्ति, असाधारण नेतृत्व क्षमता, जी हाँ, उनकी लीडरशिप स्किल्स नहायत ही बेहतरीन। इसके अलावा अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी जो निष्ठा थी काबिले तारीफ, और एक क्वालिटी थी उनके अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग की, जी, संकट के वक्त त्वरित निर्णय लेने की। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा तमाम क्वालिटीज़ थी, ये तो मैंने अभी मतलब ज़ुबान पे आई तो आपके साथ शेयर कर ली। तो आज मैंने सोचा कि प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में मैं उन्हीं की एक क्वालिटी लेकर के आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं, आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। तो उनकी एक क्वालिटी थी स्ट्रेस की स्थिति में क्विक डिसीजंस लेने की। तो बस मैं ये जानना चाहती हूं कि स्ट्रेस की कंडीशन में आप शांत मन से कैसे सही रणनीति बनाने का प्रयास करते हैं और उसे अटेन भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो स्ट्रेस की कंडीशन में शांत मन से सही रणनीति बनाने का कौशल कैसे विकसित कर सकता है एक इंसान। देखिए, हम सब के अंदर ये कौशल होता है, कभी ना कभी ऐसे लाइफ में हमारे दौर आता है जब हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो इनिशियल जब ऐसा कभी होता है तो हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए लर्निंग्स होती हैं। तो ग्रेजुअली क्या होता है, कुछ वक्त के बाद हम क्विक डिसीजन मेकर बन जाते हैं। जब हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं ना, तो उनसे जो सीख मिलती है उससे हम चीज़ों को अपने जहन में एक्यूमुलेटेड रखते हैं, और जब कभी ऐसा वक्त दोबारा पड़ता है तो हमारे अंदर वो जो क्वालिटी है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी होती है और हम क्विक डिसीजन मेकर के तौर पे निकल के आते हैं बाहर। तो एक नॉर्मल इंसान कैसे विकसित कर सकता है ये क्वालिटी अपने अंदर, आपने भी कभी ना कभी की होगी, हमारे साथ साझा करिए अपने ही एक्सपीरियंसेस। बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिस पर हम आज आपसे इनपुट्स चाह रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है FM आकाश

वाणी लखनऊ @gmail.com. और जितने भी लिसनर्स ने अभी अभी ट्यून इन किया उन सबको एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, दबाव यानी स्ट्रेस की सिचुएशन में शांत मन से सही रणनीति बनाने का कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे साथ अपने व्यूज साझा करिए. जब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी ईमेल्स का, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, आप तक पहुँचाऊँगी एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक. रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की.

ऑलराइट प्रोग्राम होटल पे तेरी बात एंजॉय कर रहे हैं आज आप अपनी होस्ट फातिमा के साथ और इस प्रोग्राम में हमारे पास मेल्स आने का जो सिलसिला है ना वो स्टार्ट हो गया है. गुड आफ्टरनून शिव पूजन लाल जी, इन्होंने हमें मेल किया है सनी गावा लखीमपुर खीरी से और इन्होंने लिखा आज का टॉपिक

बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कंडीशंस में मैं अकेले में शांत मन से एकांकी चिंतन करके सही डिसीजन लेता हूँ और कंफर्म करने के लिए बुजुर्गों की सलाह ले लेता हूँ। ऑलराइट, ग्रेट गोइंग, बहुत ही अच्छा आपने एस्पेक्ट हमारे साथ शेयर किया। इसके अलावा हमारे पास रायबरेली से मेल आया है रामराज जी का। इन्होंने लिखा है, सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। लेकिन रामराज जी, आज इस प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई स्ट्रेस की स्थिति में शांत मन से सही रणनीति बनाने का कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है, आपने कैसे विकसित किया, हमारे साथ साझा करिए अपने ये व्यूज, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास एक और आ गया है। इन्होंने लिखा है, ओके, विकास के मेल एड्रेस से हमारे पास मेल आया और इन्होंने एक पोस्टर बना के भेजा है और उसमें आम है जी। हम सब के फेवरेट आम, आम है बहुत खास। हेलो मैम, नमस्कार, मैं विकास, गांव सलीत, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम बाग में सुन रहा हूँ। मैम आपके लिए दशहरी आम। अरे क्या मतलब, आपने क्या भेज दिया, कहाँ हम कितना सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और कहाँ आपने मेरे पसंदीदा आम भेज दिए। चलिए कोई नहीं, विकास आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइए कि दबाव की कंडीशन में शांत मन से सही रणनीति बनाने का कौशल एक आम इंसान कैसे डेवलप कर सकता है, इसके बारे में अपने राय, अपनी जो राय है वो हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। ऑलराइट, इसी बीच हमारे पास एक मेल आ गया है मसूद का लखनऊ से। इन्होंने लिखा है, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए माइंडफुलनेस और कॉन्शियस पॉज का अभ्यास करना काफ़ी फायदेमंद होता है। ओके, माइंडफुलनेस का मतलब है कि भाई आप वर्तमान में रहिए और कॉन्शियस पॉज का मतलब है सचेत ठहराओ, मतलब आपने जो बात सुनी, आपको जिस टॉपिक पर, जिस बात पर डिसीजन लेना है उसको बिल्कुल अलर्ट मोड में होकर के आपने सुना, उसके बाद एक पॉज लिया। और इसके लिए इन्होंने लिखा है कि मैंने जब इस टेक्निक को अपनाया था तो मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप तनाव में हो तो पहले कुछ सेकेंड्स तक सांस लें, ओके, डीप ब्रीथ, फिर उसके बाद कुछ सेकेंड्स तक सांस को रोकें, फिर जितने सेकेंड्स के लिए आपने सांस रोकी है उतने ही सेकेंड्स में तकरीबन धीरे धीरे सांस को छोड़िए, ये आपके तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत करता है। बड़ी ठोस हिंदी लिख दी है भाई। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही है ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि डीप ब्रीदिंग एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है इस कंडीशन में, तो डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से कई सारे फायदे होते हैं। और राइट, मेल्स और हम चेक कर लेते हैं। सतीश अनेजा जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। इन्होंने लिखा है, मैं अपनी दिनचर्या का सिस्टम ही ऐसा बना के रखता हूँ कि मैंने स्ट्रेस करीब अच्छा कि मेरे करीब स्ट्रेस नहीं फटक पाता। ओके, दुनियावी बातों में मानसिक दबाव कई बार बन जाता है, परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो जाइए और कहिए कि ये सांसें आपने दी, ये खुशियां भी आपने दी, रोटी का निवाला भी आपने दिया, फिर ये स्ट्रेस भी तो आपका दिया, इससे निजात भी तो आप दिलाएंगे। यकीनन आपकी ये बात आपको राहत देगी और स्ट्रेस से निजात मिलेगी। मुस्कुराइए, वही आपका असली गहना है। चंडीगढ़ सिटी से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अच्छा, मैंने चीज़ नोटिस की है कि इस तरीके के टॉपिक्स पे सतीश अनेजा जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत ही बहुत अच्छा लगता है लिसनर्स के एंड से जब ऐसी बातें हम तक पहुंचती हैं ना, कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट पता चलता है। कि आजकल लोग कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअली और रिलीजियसली अगर आप कनेक्ट होते हैं तो बड़ा फ़ायदा मिलता है, बहुत सुकून, इत्मीनान, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं आप। तो बस इसी नोट पर मैं चाह रही हूँ कि एक बार टॉपिक दोबारा से दोहरा दूँ, और टॉपिक हमारा है, दबाव की कंडीशन में शांत मन से सही रणनीति बनाने के लिए आप कौन से कौशल का, मतलब इस कौशल को डेवलप करने के लिए आप कौन क्या तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, हमारे साथ साझा करिए ये बात। और वक्त हो गया एक और बेहतरीन सा ट्रैक हम आप तक पहुंचा दें। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। अच्छा, ये बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों कर लिया है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, सो

0: इसे एंजॉय करिए, उसके बाद वो ट्रैक।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

All right, इधर प्रोग्राम्स में मेल्स आने का जो सिलसिला है वो जारी है. राम जी का मैसेज आया है, प्लीज रिपीट द टॉपिक. टॉपिक ये है कि भाई स्ट्रेस की स्थिति में शांत मन से सही रणनीति बनाने का कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं. तो इसी बीच हमारे पास आयशा का मेल बाराबंकी से आ गया है. उन्होंने लिखा है, भावनाओं में बहने के बजाय परिस्थिति का आकलन करती हूँ मैं सबसे पहले आकलन करने के बाद मैं खुद से पूछती हूँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है. ऑल राइट, ग्रेट, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है. और इन्होंने जो लिखा है मैं उसे एक बार रिपीट कर दे रही हूँ. भावनाओं में बहने के बजाय मैं परिस्थिति का आकलन करना पहले ज़्यादा बेहतर समझती हूँ. मैं खुद से पूछती हूँ कि इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए मेरे पास क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है. ग्रेट, आप जब तक इतना पूछेंगे ना खुद से, तब तक भर में आपके पास आइडियाज़ और जो सॉल्यूशंस है ना उनकी भरमार लग जाएगी. क्योंकि सबसे पहली बात तो आपका

वो जो 100 करोड़ गुस्सा है वो कहीं और जा चुका होगा, अब आप नियंत्रित दिमाग से एक मच्योर माइंड से डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है, ये मेल हमारे पास आया है लखीमपुर खीरी से। किसने भेजा है? ओके, रन्नो ने मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है, सभी कार्यों को एक साथ करने से मैं बचती हूँ, कार्यों की एक सूची बनाती हूँ और उन्हें उनके महत्व के हिसाब से करती हूँ। ओके, ऑलराइट, तो ये कहना चाह रही है कि मल्टीटास्किंग से हमें बचना चाहिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है, वकील अहमद ने हमें मेल किया है। कहाँ से मेल किया है इन्होंने हमें? ये तो नहीं लिखा है। वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और आपने लिखा है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत ही होते हैं, इसलिए फैसला जब आप शांत मन से सोच समझ के लेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आता है उसका। ग्रेट गोइंग। और आपने लिखा है, मैं आम के बाग में बैठा हुआ हूँ। आप आम क्या बाग में बैठे क्यों हैं भाई? आम के बाग में कोई बैठता नहीं, आम खाता है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप बहुत सारे आम खा चुके हो, तो प्लीज़ माइंडफुल हो करके आम खाइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, आम का सीज़न ऑन है, तरह तरह के आम, हर क्षेत्र के आम अवेलेबल है मार्केट में, तो सोच समझ कर आम लीजिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, तो बस उसका फ़ायदा उठाइएगा ज़रूर। ऑलराइट, अहमद नवाब का हमारे पास मेल आ गया है। ये हमारे लखनऊ से नहीं, इन्होंने हमें संडीला से मेल किया है। इन्होंने आगे लिखा है, अगर मुझे स्ट्रेस होता है पहले तो तुरंत एक मिनट में छू मंतर नहीं हो सकता, टाइम लगता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे बहुत किसी बात का स्ट्रेस हो गया था, वो बात मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रही थी, सोच सोच कर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी मैंने एक बात गौर की, जैसे ही वक्त बढ़ता गया धीरे धीरे स्ट्रेस मेरा कम होता गया और अब मुझे वो बात याद आती है जिससे मुझे स्ट्रेस हुआ था, तो मुझे अब उसी बात से बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। मैं अपना स्ट्रेस अब ऐसे ही कम करती हूँ, थोड़ा वक्त रेनबो एफएम और अपना पसंदीदा काम करती हूँ जिसमें आपका मन लगता है वो काम करना चाहिए। मुझे तो मेहंदी लगाने में मेहंदी लगाना काफ़ी पसंद है, तो मैं वही करने लगती हूँ। ओके, स्ट्रेस ढोने पे इनका मानना ये है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, फौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, ग्रेट। बेनेट कुमार का मेल आया है हमारे पास। इन्होंने लिखा है, रामगढ़ चीनी मिल ज़िला सीतापुर से, और आगे लिखा है, काम कोई हो मन लगाकर शिद्दत से करो, वो ज़रूर हल होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त भाई हमारे बहुत परेशान हैं, ओके, उन सब के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा सा इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बेनेट भेजिए तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे। फ़िलहाल अपने लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ साझा करिए वो कौशल कि किस तरीके से विकसित किया जा सकता है दबाव की स्थिति में शांत मन से सही रणनीति बनाने का, जो कौशल है ये कैसे डेवलप किया जा सकता है। आप सब करते होंगे, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे करते हैं ये हमारे साथ साझा करिए। फ़िलहाल वक्त हो गया है एक और बेहतरीन से ट्रैक का, तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

0: समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

1:50 का वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है. 1:51 हो गया. देखिए 50 मिनट बोलते बोलते कुछ सेकेंड्स गुजर गए और 51 पर हम आ गए. फिलहाल आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे, जिस पर हमने आपसे राय मांगी थी, वो ये था कि भाई स्ट्रेस के कंडीशन में शांत मन से गए सही रणनीति बनाने का कौशल कैसे विकसित किया आपने, या कैसे एक आम इंसान जिसके अंदर ये कौशल नहीं है विकसित कर सकता है. इसके बारे में कई सारे इनपुट्स हमारे पास आए, एक और इनपुट हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें किया है लखनऊ से. किसने मैसेज किया है? शबीना ने. उन्होंने लिखा है, बड़ी प्रॉब्लम हो या छोटी, अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें हिस्सों में बांटिए और एक वक्त में एक ही गोल पर ध्यान दीजिए. ऑलराइट, कहीं ना कहीं इन्होंने भी, शबीना ने भी वही बात की है कि मल्टीटास्किंग को हम प्रायोरिटाइज बिल्कुल नहीं करेंगे. एक टाइम पर एक ही गोल सेट करिए और उस गोल को प्रॉपरली अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए कदम बढ़ाइए. ऑलराइट, नरेंद्र सुथर जी का मेल हमारे पास आया है. कहाँ से आया है? राजस्थान से. ऑलराइट, जिंदगी की भाग दौड़ में मानसिक दबाव बन ही जाता है, लेकिन खुद को हमेशा मजबूत रखिए और अपने दोस्त अच्छे रखिए जो कभी मायूस होने नहीं देते. उनसे हर बात शेयर कीजिए जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि दोस्त तो वो हकीम होते हैं जो अपने अल्फाजों से ही इलाज कर दिया करते हैं. क्या बात है. जैसे मेरे मित्र सतीश अनेजा जी हैं चंडीगढ़ से, वो सब तरह से हमें टेंशन फ्री रखते हैं. ग्रेट. सतीश अनेजा जी का भी हमने कुछ देर पहले मेल पढ़ा था. पता चल गया मुझे कि आपकी जो संगत है ना, एप्ट है. ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है. किसका किसका किसका? लखीमपुर खीरी से मुनेश कुमार राज जी का मेल आया है. इन्होंने लिखा है, भावनाओं को दबाओ मत कभी, इन्हें जी लो, ये ही वो जीवन है, क्योंकि पत्थर तो दीवार बनते हैं, दिल तो बस एहसासों का, एहसासों को उगाता है. ओके ओके ओके ओके ओके, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ये आपकी दिल की डायरी है. भावनाएं हैं नदियां जैसी, कभी शांत कभी तूफानी, खुशी मिले तो लहर बन जाए, गम आए तो बरसे पानी, कभी दिल में दीप जला देती, कभी अंधेरे में खो जाए, बिन बोले सब कुछ कह देती, आंखों से आंसू बन बह जाए, रिश्तों की डोर यही बुनती, यादों का रंग यही घोलती, जो समझ ले इनके इशारे, जिंदगी वो हंसकर जी लेते हैं. डायरी से आपने निकाल के बड़ी अच्छी सी चीज़ दी है हमें, तो हम इसे ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रिलैक्स्ड माइंड से

सोच समझ करके फैसला लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, जिस पर हर जितने भी हमारे लिसनर हैं सब ने इस चीज़ पर फोकस किया, इस बात पे फोकस किया है कि थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए, तभी आप स्ट्रेस्ड होने के बावजूद भी सही रणनीति बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ऑलराइट, तो इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को। एक बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों किया है हम सब के लिए, तो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है और अर्ली मॉर्निंग लंच कर चुके हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं आप, भाई हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं हम लेकिन उसका मतलब ये थोड़े नहीं, कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए, राइट? तो भाई अगर अर्ली मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया था तो अब ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, बॉडी स्ट्रेच करिए, जाइए हाथ धोकर के आइए, प्रॉपर एक जगह पे शांतिपूर्ण माइंड से बैठिए और अपना लंच करिए, फिर 5-10 मिनट रिलैक्स करिए, उसके बाद वापस अपने काम पे लग जाइए, तभी आप ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते से तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, जनकल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण के पूर्ण होने पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने RBS कॉलेज मेट्रो रेल स्टेशन का निरीक्षण कर निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले रेलवे स्टेशनों पर गंदगी का अंबार रहता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया तो समाज की सहभागिता बढ़ी और जब समाज किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। मेरठ में आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने छावनी क्षेत्र स्थित गांधी बाग में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल देश के विकास और जन कल्याण के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। इन 12 सालों में जहां देश आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, वहीं देश में सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के 465 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। यह जानकारी आज बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई निर्धारित मानकों और मान्यता संबंधी शर्तों का अनुपालन न करने के साथ लगातार 2 वर्षों तक विद्यालयों में एक भी विद्यार्थी नामांकित न पाए जाने के आधार पर की गई है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 का प्रथम चरण निर्धारित तिथि 20 जून के पूर्व पूरा हो गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है और इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर यहां अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

हम आपको हर हर पुर मटकली जिला बरेली से मेल कर रहे हैं। फरियाद हुसैन, शकील, मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की और लास्ट में शुक्रिया लिखा है, थैंक यू। सिद्धार्थ गुंडाने जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है, आपने हमें राहुल नगर अमरावती से मेल किया है, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। अर्चना ताई, हिरामण, प्रणय, प्रतिभा, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। हम कोशिश पूरी करेंगे आपके पसंद का ट्रैक प्ले हो आज। सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास आ गया है, इन्होंने लिखा है पुरखलूस, सलाम फातिमा मैम, ऑल राइट, आपको भी यादा आए, ऑल राइट, प्रोग्राम की इन्होंने तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, चंडीगढ़ सिटी से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और बिमला अनेजा जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। उत्तम कुमार भागत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया झारखंड से। श्वेता भगत, किसु, अर्णव, सत्यम, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। रमेश कुमार जी ने हमें मेल किया है, कहाँ से, इन्होंने हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल किया है, और रमेश कुमार जी ने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, और साथ में लिखा है कि मेरा मेल उम्मीद है ज़रूर शामिल होगा। देखिए शामिल हो गया आपका मेल। शाहजी बोटके जी ने मेल किया है हमें, भैरवी फिल्म, ऑल राइट, ये सॉन्ग इन्होंने सुनने की रिक्वेस्ट की है, ओके ओके ओके। हिंगोली महाराष्ट्र से मेल किया है आपने हमें, श्रीमती नंदा, हनुमान बोटके, उत्तम जमदाड़े, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए। कमलकांत गुप्ता जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, धन्यवाद। पिपरिया से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, नाम हमने ले लिया। शेख मुखसा जी, प्यार भरा आदाब आपको भी, और हम बिल्कुल खैरियत से हैं, दुआओं में हम कोशिश करते हैं सबको याद रखें। ऑल राइट, सनावत से आपने हमें मेल किया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए, कोशिश हम पूरी करेंगे सॉन्ग प्ले हो। मोहम्मद सादिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लिखा है आप अपनी पसंद का कोई भी गीत, सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दीजिए, बिल्कुल हम सुनवाएंगे। और मुश्ताक, शाकिर, अलकमा, अल्तमश, इन सब का नाम लेने की अपनी रिक्वेस्ट की, साथ ही में रमेश गौड़, शादाब और अयूब साहब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। और राइट, हमने सबका नाम ले लिया। दिग्दर्शन गौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरठ कैंट से आपने मेल किया हमें, और राधा रानी, संजय, अनिल, संदीप, दर्शन, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, दिनेश वर्मा जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया हमें, करुणा वर्मा जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, सॉन्ग हम पूरी कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में प्ले हो। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें, आपको भी नमस्कार। वीरम गाम गुजरात से आपने मेल किया हमें, थैंक यू मेल करने के लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे ये ट्रैक आज प्रोग्राम में प्ले ज़रूर हो। ऑल राइट, तो नेक्स्ट ट्रैक किसका है, नेक्स्ट ट्रैक तो छोड़ दीजिए, मतलब नेक्स्ट मेल किसका है, ताज मोहम्मद जी का हमारे पास मेल आ गया है, और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, गुलाम साबिर राही, साथ ही साथ मेहराज जहां, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। बाकी आपको बता दूं, इनका मेल काफ़ी कलरफुल रहता है, बहुत सारे रोज़ेस और पत्तियां और अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स मौजूद रहते हैं, बड़ा आंखों को ठंडक देता है इनका मेल। ऑल राइट, देख लेती हूँ इधर बीच जितने मेल आए क्या सब शामिल हो गए। रामेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें, और आपने हमें मुंगीसापुर कानपुर देहात से मेल किया है। निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, कमलेश और समस्त कठेरिया परिवार की ओर से इन्होंने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद लिखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया। ऑल राइट, हरजिंदर शिंडा जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है पंजाब से, और जसवीर, सीता और गीता, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने, और साथ में लिखा है अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। अच्छा जी, हम अपनी पसंद का तो आज इस प्रोग्राम में आपको गीत नहीं सुनवाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रैक होगा वो स्पेशली आपको डेडिकेटेड होगा, वो हमारे किसी लिसनर की ही पसंद का है। तनुजा देवांगन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो मेल किया उसके लिए, तो आपने हमें मेल कहाँ से किया है, आपने हमें पलारी छत्तीसगढ़ से मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए। नितीश, ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद एक बेहतरीन सा ट्रैक हमारे किसी लिसनर की पसंद का है। बाकी लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हॉटमेल प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, अपने पसंद का सॉन्ग सुनने के लिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com इस मेल एड्रेस पर

Alright, 2:03 का वक्त हो गया है और आपका फेवरेट प्रोग्राम जी हाँ हॉट मेल का आगाज़ हो गया है. हमारे पास बहुत ढेर सारे मेल्स आ चुके हैं और अपने लिसनर्स को हम ये बता दें कि हम सभी लिसनर्स की पूरी कोशिश करेंगे आज मेल शामिल करें, लेकिन 2 के बाद वाली सारी मेल्स हम ज़रूर शामिल करेंगे. तो पहला मेल जो हम शामिल कर रहे हैं आज प्रोग्राम में वो है मल्होत्रा टीडी. ऑलराइट, टीडी मल्होत्रा, इन्होंने हमें चंडीगढ़ से मेल किया है, सेक्टर 67 से. साथ ही साथ इन्होंने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, कुछ लोगों का नाम लिया है, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, शुभचंद्र, साहिल, बिट्टा बजाज. थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, नेक्स्ट मेल जो हम शामिल कर रहे हैं शाहरुख नूर अंसारी जी का. इन्होंने लिखा है, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद.

0: मेल करिए अपना नाम, अपनी रिक्वेस्ट और जिस शहर से हमें मेल कर रहे हैं आप लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. फिलहाल ये ट्रैक, ये छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण.
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

2:14 मिनट का वक्त प्रोग्राम हॉट मेल एंजॉय कर रहे हैं आप आज 100.7 एफएम रेनबो पर. और नेक्स्ट मेल अकरम हुसैन जी का हमें प्राप्त हो गया है सीतामढ़ी से. आप हमें मेल करते हैं बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमी, ममता रानी, पूनम कुमारी और मोहम्मद आसिफ. इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए. जय जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है उत्तम नगर होली चौक से. और आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की. हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो. तुलसी मस्कीन जी, आपको भी नमस्कार. और आपने लिखा है एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की. ऑलराइट, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आपने मेल किया हमें. वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, नितेश देवांगन जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया बलारी छत्तीसगढ़ से. दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना, पुना राम, कृष्णा देवांगन, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट किया. लिखा है कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए, किसी के भी गीत के साथ हमारा मेल बस शामिल कर लीजिए. देखिए हमने आपका मेल शामिल कर लिया है. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, नेक्स्ट मेल वकील अहमद जी का हमारे पास आया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं. और आपने लिखा है हॉट मेल प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, गाना सुना दीजिए. गाने के बोल इन्होंने लिख के दिए हमें. और जो लोग दोबारा दोबारा मेल करते हैं उनके मेल पड़े जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए मैं बार बार, इनफैक्ट सभी हमारे जितने आरजेज हैं वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ रिपीटेड मेल्स मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है जो जेन्युइन होते हैं ना वो कहीं इधर उधर छुप जाते हैं. आपका मेल हम ज़रूर शामिल करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है. देखिए शामिल हो गया आपका मेल. आपने हमें सीतापुर से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए. और बताया है कि मैं आम के बाग में हूँ इस वक्त और हवा बहुत मस्त चल रही है. वेरी गुड, तो इन्जॉय करिए आम को भी और हवा को भी. संजय जी का मेल हमारे पास आ गया है चौक खंडवा. ओके, बड़ा बम चौक खंडवा से आपने हमें मेल किया है. ऑलराइट, और साथ ही साथ एक सॉन्ग सुनने के रिक्वेस्ट किए. थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए. बड़ा अच्छा सा मेल किया है आपने और इस मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बबलेश पनवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है बाड़मेर राजस्थान से. डैनी पनवार, मनीष पनवार, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की थी, हमने सबका नाम ले लिया है. ऑलराइट, नेक्स्ट मेल किसका हम शामिल कर रहे हैं फटाफट देख लेते हैं. ये तो हमारे रिपीटेड मेल्स हैं. अनिल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका मेल हमें मिल गया है कुरावली से. माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की, हमने नाम सब के ले लिया. ऑलराइट, थैंक यू. ओके ओके ओके ओके. ऑलराइट, बेनेट कुमार का मेल हमारे पास आ गया है. आपने पिछले प्रोग्राम में भी मेल किया था हमें, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए हमें. और आपने लिखा है कुछ मेरे दोस्त हैं, आज़ाद सिमरी से ओमकार, सीतापुर से शमा परवीन अंसारी, सीतापुर से सुरभि, सीतापुर से सीमा रावत, राजा जीपुरम लखनऊ से संतोष मौर्य, हरदोई से वीरपाल पट्टी और अतरौली संडीला से ममता, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, हमने सब का नाम ले लिया है. और साथ ही लिखा है मेरा मेल ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद. और एक फिल्म का गाना लिखा है, फिल्म का गाना लिखा नहीं है, कौन सा गाना है, एक मेल और कर दीजिए, फिल्म का गाना हमें ज़रूर बता दीजिए. विकास जी ने मेल किया हमें उन्नाव से. आपका कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ और एक सॉन्ग सुनवा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. बिल्कुल, हम कोशिश पूरी करेंगे आज इस प्रोग्राम में आपका, आपकी पसंद का जो ट्रैक है वो प्ले हो जाए. बोधराज खुरवाल जी, आपका भी मेल हमें मिल गया उत्तम नगर दिल्ली से. और कमला रानी, गीतिका खुरवाल, भानु प्रकाश, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है. साथ ही साथ एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है. पूरी कोशिश करेंगे आज ये ट्रैक इस प्रोग्राम में प्ले हो. ताले बंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आरजे फातिमा जी, कैसी हैं आप? आई एम फिट एंड फाइन. मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ. मैं अभी से ट्यून किया हूँ एफएम, आप बोल रही थी. खाना खा लीजिए. इत्तेफाक, देखिए हम खाना खाने के लिए ही बैठे थे उसी वक्त. अरे वाह, क्या बात है. देखिए वो इत्तेफाक आपको लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ऐप टाइम था जब मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि भाई दोपहर का लंच कर लीजिए. खैर, एक गीत प्ले कर दीजिए.

ओके, हम पूरी कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम में ये ट्रैक ज़रूर प्ले हो. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रैक, नेक्स्ट ईमेल हम किसका शामिल कर रहे हैं? मोइनुद्दीन अंसारी जी का मेल हमारे पास आया है. और वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल खैरियत से हैं. आपने लिखा है, हम सिस्टर्स उमरा अंसारी, हसबा अंसारी, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से, और हमारे साथ साजिदा अंसारी, ज़िया, आतिका, सलामा, फसीहा, आपके प्रोग्राम्स इंजॉय कर रहे हैं. हमें एक सॉन्ग है आतिफ असलम जी की आवाज़ में, वो सुनवा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आज इस प्रोग्राम में वो ट्रैक ज़रूर प्ले हो. फ़िलहाल वक्त हो गया है एक और बेहतरीन से ट्रैक का, तो इस ट्रैक को इंजॉय करेंगे. ये भी ट्रैक हमारी किसी लिसनर की ही पसंद का है, मिलकर इन्जॉय करेंगे. और बाकी लिसनर्स ने जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी पसंद का ट्रैक अगर इन्जॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें फटाफट मेल करिए. हमारा मेल एड्रेस मैं बता देती हूँ आपको, fmakashwani@gmail.com. अपना नाम, जो सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो, और जिस शहर से आप मेल कर रहे हैं ये लिखना कतन ना भूलिएगा. फिलहाल ये ट्रैक इन्जॉय करिए. स्टे ट्यून्ड एंड कीप इन्जॉयिंग.

0: प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: ऑलराइट, 2:28 का वक्त हो गया है और नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया, आपने हमें बाजार पानीपत से मेल किया है। लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद्र मल्होत्रा, इन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए।

हमें ओके नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल करें. मसरूर हसन जी ने हमें गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से मेल किया है. सैयद मसरूर जी ने शाइना हसन नाजिया इब्राहिम इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और लिखा है एनी सॉन्ग. ऑलराइट, कोई भी सॉन्ग जो हम नेक्स्ट प्ले करेंगे वो स्पेशली आपको डेडिकेटेड होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आ गया है. अहमद बागवान जी की मेल एड्रेस से मेल आया हमारे पास. बलिया से मेल किया है और नूर आयशा इकबाल अखलाक और साथ ही साथ आमना आशु जूही सतव आरजू राबिया और समस्त बागवान परिवार से के सदस्यों को इन्होंने उनका नाम लेने की बेसिकली इन्होंने रिक्वेस्ट की थी. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, अनिल कुमार जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है उमरखेड़ महाराष्ट्र से. श्रीमती सरिता प्रणीता सिद्धांत लाडला टुकटुक सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, राधेश्याम शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया. हांडी खेड़ा ज़िला सिरसा से इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो. रामराज जी आपका भी शुक्रिया. रायबरेली से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है. राजू भानु भैया बंटी यादव पप्पू मनीष नीरज बजरंगी सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए, हम सॉन्ग सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे. ऑलराइट, हिम केशवर साहू जी का छत्तीसगढ़ से मेल आया हमारे पास. करण राहुल साहू चंपा साहू इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी. थैंक यू मेल करने के लिए. लक्ष्मण लुखांडे जी एनी सॉन्ग एनी फिल्म और आपने हमें महाराष्ट्र से मेल किया है. कल्पना ताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षिता लोखंडे इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और लिखा है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेल ज़रूर शामिल कर लीजिएगा. मेल हमने शामिल कर लिया. दीपेश वर्मा जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है. सरगांव छत्तीसगढ़ से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं. पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, नाम हमने ले लिया है. सुदर्शन शाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नेपा नगर मध्य प्रदेश से मेल आ गया हमारे पास इनका. कुशल पल्लवी प्रखर सुदर्शन नीति सुरभि अश्विनी मंगला राजेंद्र जी आप सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू. अनिल कुमार कटारिया जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है पानीपत हरियाणा से. मंजू कटारिया नरेश मल्होत्रा ज्ञान भूषण शर्मा इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. बबलेश पनवर जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया. आपका मेल मैं शायद ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ. यासीन अंजान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें और लिखा है गीत ना अगर हमारी पसंद का सुनवा सके तो कोई बात नहीं, किसी भी गीत में बस नाम शामिल कर लीजिएगा. साइमा हसन बाबू अहद मिफ्रा बेबी चाहत सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. साथ ही साथ सादिया का भी नाम लिखा है. ओके नरेश जी आपका मेल शामिल हो चुका है. सुधाकर जाधव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जाफराबाद से मेल हमें प्राप्त हो चुका है. प्रशांत राजे कुमार संचिव कुमार प्रथमेश कुमारी प्रणाली कुमार सरवद कुमारी सानवी कुमारी कल्पना इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. मोइनुद्दीन अंसारी जी आपका मेल हमें प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं. थैंक यू. राजेश वर्मा जी राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया. प्रीति कार्तिक आर्यन मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नरेंद्र सुथर का मेल हमारे पास आया है राजस्थान से. आपका मेल मैं शायद शामिल कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में. मनोज सुथार हिमांशु सुथार और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो. ताज मोहम्मद जी आपका भी शुक्रिया, आपने हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेल किया है. आपका मेल शामिल हो चुका है ऑलरेडी. आफ्ताब अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मेल हमारे पास गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हो चुका है. एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, साथ ही लिखा है पेड़ लगाइए जीवन बचाइए. बेशक पेड़ लगाइए और जीवन बचाइए, बहुत ही अच्छा नारा है आपका. अहमद जी का मेल हमारे पास आया है. होस्ट जी आदाब व नमस्कार, आपको भी आदाब व नमस्कार आपके आने से. ऑलराइट, थोड़ा सा प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए. ऑलराइट, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है. दुखनी सदफ जूही इकबाल इमरान बिटिया आमना आसमा सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. राधे कुमार जी का मेल हमारे पास आ गया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है. गंग जला सहरसा बिहार से आपने मेल किया है. थैंक यू मेल करने के लिए, हम कोशिश पूरी करेंगे ये सॉन्ग आज प्ले हो. गगनदीप ठांडी जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है.

और मेल करने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। जो सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की वो भी हम ज़रूर प्ले करेंगे। नवा शहर पंजाब से आपका मेल हमें प्राप्त हुआ है। सत्येंद्र चंसोलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जालौन उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया, किसी भी गीत में हमारा मेल शामिल कर लीजिए, हमने आपका मेल ऑलरेडी शामिल कर लिया है। राजेश वर्मा जी का मेल हम शामिल कर चुके हैं, ओके। मनोज जी आपका भी शुक्रिया, और आपने हमें मध्य प्रदेश से मेल किया है, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग हम आज इस प्रोग्राम में ज़रूर प्ले कर पाए। साई गायकवाड़ जी आपका भी शुक्रिया, गुड आफ्टरनून, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और लिखा है आपने, कोई सा भी गीत बारिश से जुड़ा सुनवा दीजिए, ओके। महाराष्ट्र से आपने मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। इतनी दूर दूर से जब मेल्स आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि भाई हमारी जो हियरिंग है, हमारे लिसनर्स हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। फागुराम यादव जी, ऑल राइट, फागुराम यादव जी का जब तक मैं मेल पढ़ती वो क्या ही बताएं बस। खैर, नमस्कार आपको भी, और आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो। संबलपुर कांकोर से आपने मेल किया, ज्योति और ओजस्वी यादव इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू। लक्ष्मण लोखांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से आपका मेल आया हमारे पास। शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता आपका मेल शायद मैं शामिल कर चुकी हूँ। मोहम्मद शादाब खान, ऑल राइट, ओपन कर रही थी, मोहम्मद शादाब खान का ओपन हो गया। सोमदत्त जी का हरदोई से मोहम्मद शादाब जी ने मेल किया है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हो सके तो ज़रूर सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल, कोशिश हम पूरी करेंगे सॉन्ग प्ले हो प्रोग्राम में। सोमदत्त जी पटियाला पंजाब से आपका मेल हमारे पास आ गया है, और ज्योति, गुरमंत कौर, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, साथ ही एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। पूरी कोशिश की जाएगी कि सॉन्ग आज प्ले हो। संजय ढिंगिया जी, बागपत उत्तर प्रदेश से आपका मेल हमें मिल गया है। नमन अपार, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। पूजा पूनम गगनेजा जी, जलालाबाद वेस्ट से आपने मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल भले चंगे होंगे, राइट, ओके। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हम किसकी शामिल कर रहे हैं देख लेते हैं फटाफट। कौशिक वाधवान जी, आपका भी मेल हमारे पास आ गया है। गुजरात से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मम्मी पापा महेश, सबका नाम लेते हैं, और लिखा है कि कैसी हैं आप, हम बिल्कुल ठीक हैं, गुड आफ्टरनून लिख के भेजा है, साथ ही साथ एक स्मूदी का पोस्टर भेजा है। इस स्मूदी को देख कर, इसमें इतना सारा ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम और तमाम तरीके के फ्लेवर्स मुझे जो दिख रहे हैं ना, इसको देख करके दिल चाह रहा है कि ये अंदर से बाहर निकल के आ जाए। बोधराज खोरवाल जी, उत्तम नगर दिल्ली से आपका मेल हमारे पास आ गया। कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमारे हमें। और फिलहाल ये ट्रैक हम एंजॉय करेंगे आपके साथ मिलके, और चेक कर लेते हैं छोटा सा कोई कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है। नहीं, ब्रेक नहीं है फिलहाल, ये ट्रैक एंजॉय करिए, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ।

फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, गजब कहानी से ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, ये किसी कोई हमारे लिसनर है, उन्हीं की पसंद का था, तो उनके चेहरे की जो स्माइल है वो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। ऑलराइट, श्री नारायण जी का मेल हमारे पास आ गया है और आपने हमें उन्नाव से मेल किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। मोहित कुमार, उत्कर्ष, आराध्या, काजल, रिंकी, कृष्णा, कृष्णावटी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, हमने सब का नाम ले लिया है। थैंक यू मेल करने के लिए। सरफुद्दीन अंसारी जी, आदाब, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, मैं बक्सर बिहार से आपको मेल कर रहा हूँ। फातिमा खातून, सुरित, रमेश, डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी, सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है भाई, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए हमें। तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। हितेंद्र दास जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया। एनी सॉन्ग टू रीड आउट माय नेम प्लीज़ आरजे, सी आई हैव ऑलरेडी रेड आउट योर नेम। आपने कुछ लोगों का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, मानस दास, शिफाली दास, वर्षा दास, मधब दास, और आपने हमें असम से मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए। संदीप जी का मेल हमारे पास आया है, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, और जलंधर से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। ज्योति, मन्नत, भरत, कमल, पिंगा, ऑलरेडी पिंगा वाला चौक इनका एड्रेस है, राइट, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। हम कोशिश पूरी करेंगे आपकी पसंद का ट्रैक आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले हो। गुड आफ्टरनून अशोक राज जी। लखीमपुर खीरी से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है और आपने जो सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है वो भी पूरी कोशिश की जाएगी आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास मेल राहत हुसैन जी का आया है। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। हमें एक सॉन्ग सुनवा दीजिए अगर हो सके तो। बिल्कुल, अगर हो सकेगा हम ज़रूर प्ले करेंगे। नेहता और बिजनौर से आपने मेल किया, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। दिलीप कुमार जी, और आपका मेल भी हमें प्राप्त हो गया भागलपुर बिहार से, थैंक यू। जो सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है पूरी कोशिश करेंगे आज हम ये सॉन्ग प्ले हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मुझे पता है हमारे तकरीबन सभी लिसनर्स को ये ट्रैक बहुत पसंद है। बाराबंकी से

0: मेल हमारे पास आ गया है बाबू अंसारी जी का. गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. और सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, साथ ही साथ कुछ लोगों का नाम लिखा है, कुलदीप गुप्ता, फैज़ अंसारी, महेंद्र, दीपान, गौश, मोहम्मद अंसारी. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. मोहम्मद साबिर अंसारी का मेल हमारे पास आ गया. अस्सलाम वालेकुम. और वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और लिखा है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा हमारा मेल. उर्दू में लिख के भेजा है, अच्छा लग रहा है. मेरे दोनों भाइयों के नाम ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी और तालिब अंसारी. अच्छा, थैंक यू मेल करने के लिए हमें. ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. उषा मोहन जी का मेल हमारे पास आया है, पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से. टिल्लू नायक, मधु नायक, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, साथ ही साथ अनिल मोहन का भी. ओके, थैंक यू मेल करने के लिए. पंकज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. गुड आफ्टरनून. और गुड आफ्टरनून आपको भी. एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो पाए. आपने नूतन, किरण, जग्गी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए. ऑलराइट, हमने एक ट्रैक क्यों कर लिया है वो हमारे किसी लिसनर की पसंद का है, वो हम अब तक पहुंचा देते हैं. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, सो स्टे ट्यून.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है. मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो.

मुद्दत फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर, और हमारे एक लिसनर है उन्हीं की पसंद का ट्रैक है ये, तो मुझे पता है कि ये ट्रैक सुन करके आप खुश हो गए होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रैक किसकी पसंद का हम प्ले करेंगे वो तो एक सेकेंडरी बात है, पहले हम सारे मेल्स जो बचे हैं ना वो शामिल कर लेते हैं। शिव प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, ये बड़े अनोखे ढंग से मैसेज किया है आपने। ऑलराइट, फतेहपुर से आपका मेल आया है हमारे पास और लिखा है, ईयरफोन के इस्तेमाल से पहले जान ले खास नियम, नहीं तो बहरे हो सकते हैं आप। ओके, आपने अपने सॉन्ग सुनने की कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, फिलहाल आपने मेल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोइनुद्दीन अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलराइट, मैं आपका मेल बहुत स्टार्टिंग में, आज प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका मेल शामिल हुआ था, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से आपने मेल किया और आतिफ असलम की आवाज़ में एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की थी। मुझे याद आ गया। बाबू अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बाराबंकी से मेल किया हमें, गुड आफ्टरनून, और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्रैक, क्योंकि लास्ट ट्रैक होने वाला है आज इस प्रोग्राम का, तो वो आप ही की पसंद का हो या किसी और की पसंद का हो, कोई बात नहीं। शमसुल कमर राही, आपने हमें मेल किया है गंज डुंडवारा से, और शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। और साथ ही में लिखा है, कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए हमें। श्रेया कुमारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रांची झारखंड से, और मैं आलमबाग लखनऊ में सुन रही हूँ इस वक्त प्रोग्राम आपको आपका। ऑलराइट, मैं अपने पति और छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रोग्राम सुन रही हूँ। ऑलराइट, गुड, ग्रेट गोइंग। और एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, काशू, जिग्नू, तितली, क्रिस्टी, लड्डू और मिस्टर सुशील, इन सब का नाम शामिल करना चाहती हूँ। देखिए, हमने सबका नाम शामिल कर दिया। मोहम्मद फरमान जी, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आपका मेल हमारे पास पहुँच चुका है, और आपने सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। राही जी का मेल हमारे पास आ गया है लखनऊ से, मेरी इच्छा है एक गीत सुनने की, अगर सुना देंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें इस मेल के लिए, बहुत शुक्रिया। मैं चेक कर लेती हूँ किसी का मेल छूट तो नहीं गया। दिलावर खान जी, आपका शुक्रिया।

आपने हमें मेल किया रघुवीर नगर से, थैंक यू मेल करने के लिए। थ्री ब्रदर के ईमेल एड्रेस से हमारे पास मेल आया है तेलंगाना हैदराबाद से। गुड आफ्टरनून मैम, पिछले प्रोग्राम में बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्स प्ले हुए हैं, फुल एन्जॉयमेंट किया हमने। साबिर अंसारी, तालिब अंसारी और आसिफ अंसारी, ये तीन भाइयों का नाम है। ऑलराइट, थैंक यू मेल करने के लिए हमारे। ओके सुरेश नारंग जी, आपका मेल मैंने शायद अभी नहीं शामिल किया है, कितनी अकेली तन्हा सी लगी। ऑलराइट, ये सॉन्ग वो सुनना चाहते हैं। ओके और सहारनपुर से आपने हमें मेल किया है आशा, सुरेश, सोनाली, सैयद, मसरूर, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। वारिस अली ख़ान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हुई है, आपका मेल शामिल हो गया है। ऑलराइट हाजी मजहर जी, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, मेहरबानी होगी। कहा है कि मेहरबानी भाई, हम तो आपके लिए ही है यहाँ पे कि भाई आपके पसंद के ट्रैक्स हम प्ले करें, आपके मेल्स पहले हम शामिल करें और ट्रैक्स प्ले करें। ऑलराइट आपने रजिया मोहम्मद सादिक आज़ाद अली सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। जावेद अख्तर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें, किसी भी गीत में हमारा मेल शामिल कर लीजिए। मुबारकपुर आज़मगढ़ से हम आपको मेल कर रहे हैं। ऑलराइट आपका मेल हमें मिल गया है और मेरे ख्याल से आज इस प्रोग्राम का ये लास्ट मेल है। मैंने कोशिश की है कि सभी की पसंद, सभी के नाम शामिल हो जाएं, तकरीबन सभी के नाम मैंने शामिल कर लिए। अगर किसी का छूट गया तो बिल्कुल मायूस मत होइएगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका नाम ज़रूर शामिल किया जाएगा। फ़िलहाल इस प्रोग्राम के साथ, इस ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और एक छोटे से म्यूज़िकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप एन्जॉइंग।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: 3:04 का वक्त हो गया है और आगाज हो गया है प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का। तो आज कौन से रंग बिखरेंगे इस प्रोग्राम में, वो सब कुछ आपके साथ साझा करूंगी। लेकिन उससे पहले एक और एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक लंच नहीं किया है तो प्लीज़, ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, हाथ धोइए, इत्मीनान के साथ अपना डब्बा खोलिए। जी हाँ, लंच बॉक्स और डब्बा मतलब बड़ा कनेक्टिंग है। डब्बा जब आता है ना तो बड़ा अपनापन लगता है। अपना लंच बॉक्स ओपन करिए, उसके बाद खाना खाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए और वापस काम पे लग जाइए। बस इसी नोट पर आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का, इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत स्वागत है।

0: प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: ऑलराइट, प्रोग्राम सतरंगी दुनिया एंजॉय कर रहे हैं आज आप अपनी होस्ट फातिमा के साथ। और आज टॉपिक थोड़ा सा हल्का लिया है क्योंकि भाई इस टाइम तक आते आते काफ़ी सारा, मतलब आप कह सकते हैं आधे

0: ज़्यादा दिन गुजर चुका होता है तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में सब रहते हैं। टॉपिक है, बहुत सुनने में बहुत इजी सा साउंड करेगा, लेकिन हाँ है तो बड़ा दमदार टॉपिक जैसे कहते हैं। देखिए, हर उम्र में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। बचपन में हम इन जिम्मेदारियों को पहचान नहीं पाते। जब हम जिम्मेदारी को समझते हैं तो ज़िंदगी को और बेहतर बना लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बेफिक्री भरा जो वक्त होता है वो होता है बचपन। अगर इस सुनहरे दौर में हम जिम्मेदारियाँ भी समझ लें तो हमारा बचपन और भी शानदार बन जाता है, और साथ ही साथ हमारे लाइफ में एक अलग सा डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी डेवलप हो जाती है। जिम्मेदारी, देखिए, सुनने में बहुत बड़ा और भारी भरकम अल्फाज लगता है, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें तो सच्चाई इसकी बिल्कुल उलट है। हर उम्र में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बचपन में हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब हम जिम्मेदारी को समझते हैं तो ज़िंदगी को और भी बेहतर बना लेते हैं। ये बात मैंने भी आपसे कही, और कैसे बना लेते हैं इसके बारे में हम आपको आपसे आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम बचपने में इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी लाइफ में हमें वो समझ आ जाएगी कि जिम्मेदारी उठाना किसे कहते हैं और अकाउंटेबिलिटी लेना किसे कहते हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम मच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो ये हमें एक नॉर्मल प्रोसेस लगेगा। मच्योरिटी अटेन करने पे ये हमारे सर पे एक बोझ की तरह नहीं आएगा, बल्कि हमारे लिए तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग सी एक बात होगी। हाँ ठीक है, इट्स ओके, तो हमें पता ही ऐसे होता है, ये वाला नोट आ जाएगा। तो बस इसको आपके साथ साझा करने के लिए हमने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद एक बेहतरीन सा ट्रैक। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

ऑलराइट, 3:18 का वक्त हो गया है और स्टूडियो में आ चुकी है मोना. अगले कुछ घंटे यानी कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के बाद आप कुछ घंटे रहेंगे मोना के साथ. बेहतरीन ट्रैक्स और बेहतरीन इनपुट्स आपको मिलेंगे उनके एंड से. फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने मोना से तो पूछा नहीं लेकिन मुझे पता है कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ अगर बाहर निकल रहे हैं ना तो खुद को हाइड्रेटेड ज़रूर रखिए. घर से अपना पानी लेकर चलिए, कोशिश करिए बाहर पानी खरीद के ना पिए, क्योंकि भाई पेट का मामला जो है ना ख़राब हो जाता है थोड़ी सी लापरवाही से. और आइट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में आज हम जो बातें कर रहे थे ना वो पेरेंट्स को डिनोट नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्टली बात कर रहे थे अपने बच्चों से. जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों से या थोड़े बड़े बच्चों से भी या जो थोड़ा युवावस्था में भी है उनसे भी. भाई देखिए, जैसे हमने आपसे डिस्कशन किया इस बारे में कि जिम्मेदारी लेना अगर आप बचपने में ही या कम उम्र में सीख जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. अब कैसी जिम्मेदारियां आप लेंगे, कैसी जिम्मेदारियां, भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना कमरा साफ़ सुथरा रखना है. अब कमरा साफ़ सुथरा रखने में सबसे पहला जो पॉइंटर आता है वो ये होता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपना बेड सेटल डाउन कर दीजिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पिलो कहीं और पड़ा हुआ है, बेडशीट कहीं और चली गई है, तो इन सब चीज़ों को सेटल डाउन करने की हैबिट डालिए. साथ ही साथ टाइम पे पढ़ाई करना, टाइम पे स्कूल जाने की तैयारी करना, ये भी एक जिम्मेदारी समझने का पार्ट है. इसके अलावा आप अपने जूते पहले से ही पॉलिश करके रखिए, खुद पहनिए. खाने के बाद अपनी जो प्लेट्स हैं वो सिंक में जाके खुद रखिए. हाँ, पटकिएगा नहीं बिल्कुल भी. पता चला मम्मा ने कहा कि भाई सिंक में प्लेट रखा और यहाँ से इधर टनटनाते हुए पहुँचे किचन में और भम. ऐसा नहीं करिए. देखिए, ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. अपने कपड़े सही जगह पर रखना, पेड़ पौधों को और अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उनकी देखभाल करनी

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

3:24 का वक्त हो गया है. एक लास्ट ट्रैक मैंने क्यों किया इस प्रोग्राम का, और इसी ट्रैक के साथ वाइंड अप करूंगी आज इस प्रोग्राम को, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी रोज़ हम आपसे दोबारा ज़रूर रूबरू होंगे. फ़िलहाल वक्त हो गया है एक बेहतरीन से ट्रैक का, और उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सबका इंतज़ार कर रहा है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल

0: मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने
1: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
0: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खीरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
1: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी, आपकी, सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था।

0: क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी।

चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें,

0: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो।
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए।
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊं।

0: कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरे कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ

0: कहते रहे।
1: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो।
2: तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
3: दो बहन एक भाई।
0: पर मुझे देर हो रही है।
2: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
0: सेठ, मुझे देर हो रही है।
2: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
4: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
5: जी मालिक।
6: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
2: हाथ से निकल गई।
6: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
0: माँ
6: ने बच्चे को छाती से चिपटा कर पूछा,
7: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
6: पर बच्चे कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
7: बड़ी
6: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्र रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पर सभी की माएँ हमको बाय बाय करने

0: शायद दो माएं रो रही थी लेकिन मेरी मां हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडी की तरफ
1: वाह क्या बात है बहुत ही खूबसूरत बात है एक मां की पुकार एक मां ही सुन सकती है जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक मां के दिल तक ही पहुंच सकती है इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे क्या उनमें भी यही भावना थी और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बरसाया
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं टैप्स बोलते हैं उसको धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ जहाँ पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं तो काफी जोश था उस टाइम पे 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में मैं उनमें से एक था तो पूरे स्कूल में नाम हुआ इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने ट्वेल्थ क्लास में और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया
1: वाह क्या बात है जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा कि उनका हीरो उनके बीच में था तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस ऐसा कुछ हुआ
0: देखो जाना तो काफी लोग जाते थे ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में अपने क्लास में हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं एक अलग ही इज्जत से देखते हैं वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो
1: क्या बात है ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला दुलार भी मिला ये बताइए स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे
0: हाँ यस मैं मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा घर में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे मैं काफी शरारी था मेरे ट्वेल्थ ए की बात कर रहा हूँ अगर कोई मेरे ट्वेल्थ ए वाला सुन रहा है तो काफी शरारती था मैं लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था गोलू मोलू तो था ही मैं पर मैं काफी लोकप्रिय था मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो हम उनसे बात करते रहते हैं जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: अच्छा ये बताइए शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए आर्मी का तो काम ही है आर्म्ड फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है आचार व्यवहार तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए
0: नहीं शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है बहुत डिसिप्लिन होता है हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है कितना डिसिप्लिन तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए एनडीए में मन चंचल होता है आप सिलेक्ट हो गए होते हो एनडीए में पहुंच जाते हो आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए टाइम पे उठना टाइम पे काम करना टाइम पे हर चीज करना वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं हमारे कोस्टमेट्स होते हैं कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं वो हम में लाते हैं
1: वाह क्या बात है तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया एनडीए के उपरांत एनडीए के बाद फिर आगे कहां किस ओर रुख किया आपने कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया देहरादून में स्थित है इंडियन

0: जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है, वहां से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में. मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया. और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी. और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए. मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे. 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया. और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ.
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है. तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल. मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है. जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है. अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती.
1: वाह, क्या बात है. अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया.
1: मैं आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है.
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को. अच्छा, तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं.
1: अच्छा.
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे. तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था. एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा.
0: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवम्बर. बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है.
1: वाह, क्या बात है. तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा,
1: हमेशा आपके साथ रहता है. कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना, आपको उठने पे भी मदद करता है.
0: मदद करती है.
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग. और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माई मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है. उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा. एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा. ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन.
1: जी, कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है. और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है, तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग. कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी.
0: तो जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई.
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है. एंड हाँ. वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में.
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे. एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं.
1: हाँ, हाँ.
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके.
1: जी.
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना.
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है. और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं. लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी. तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है. माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए. सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर here who has such kind of

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल. और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर. और उनकी से बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियाँ हम जैसी हैं. और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया. खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है. लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था. एक बात बताइए कर्नल तनवर मुझे, पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में. तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल. इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है. मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में. फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास. स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे. तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा. और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है. जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था. सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया.
0: वाह क्या बात है. अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है. हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं. और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है. आई एम स्टिल एन ऑफिसर. क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, I can well predict. Yes, I'm talking to an officer. और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी.
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए. फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं. वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं. आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग. और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है. और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी. हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा.
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत. वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है और आप जी रहे हैं उसे आज भी. लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए. कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में. मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं. और ये शायद फोर्थ टर्म था. और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है. वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं. उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन.

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अनुसंधान अधिकारी यूनानी कुल पद 16 हैं, जिनमें बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। अनुसंधान अधिकारी पैथोलॉजी 2 पद, अनुसंधान अधिकारी फिजियोलॉजी 1 पद, सहायक अनुसंधान अधिकारी 1 पद, सहायक अनुसंधान अधिकारी वनस्पति विज्ञान 2 पद, स्टाफ नर्स 7 पद जिसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, लेखाधिकारी मुख्यालय 1 पद, अनुसंधान सहायक रसायन विज्ञान 2 पद, बैकलॉग रिक्तियों समेत अनुसंधान सहायक वनस्पति विज्ञान 3 पद, अन्वेषक सांख्यिकी 3 पद, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 12 पद, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक 3 पद, प्रूफ रीडर 1 पद, हिंदी सहायक 2 पद, फार्मासिस्ट 6 पद, सोशल वर्कर 2 पद, रेडियोग्राफर 1 पद, कंपाउंडर 3 पद, आशुलिपिक ग्रेड 3 7 पद, उच्च श्रेणी लिपिक UDC 31 पद, निम्न श्रेणी लिपिक LDC 26 पद, स्टाफ कार चालक 4 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ 43 पद, जिसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.ccrum.res.in। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक रहेगी। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उप सलाहकार औषधीय पादप, सहायक सलाहकार वनस्पति विज्ञान, वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी वनस्पति विज्ञान, सहायक अनुसंधान अधिकारी और लेखाकार, इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। पात्रता मानदंड प्रारूप आदि अन्य जानकारियों के लिए देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट आयुष.gov.in। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026। कैंसर उपचार अनुसंधान एवं शिक्षा का उन्नत केंद्र टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस, सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी, सहायक प्रोफेसर हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, सहायक प्रोफेसर पैलिएटिव मेडिसिन, सहायक प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी, सहायक प्रोफेसर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, सहायक प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सहायक प्रोफेसर इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर, सहायक प्रोफेसर प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च, वैज्ञानिक अधिकारी कैंसर बायोलॉजी, मेडिकल फिजिसिस्ट ई, वैज्ञानिक अधिकारी डी बायोस्टेटिस्टिक्स, वैज्ञानिक अधिकारी डी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी सी सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी बायोस्टेटिस्टिक्स, वैज्ञानिक अधिकारी बी न्यूक्लियर मेडिसिन, वैज्ञानिक सहायक बी CRI सुविधाएं, तकनीशियन ए CRI लैब्स। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट actrec.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने में कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनकी दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे APS धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th NDA 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है, हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर

0: निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। मैं और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, एस्प्री डी कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
0: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल आल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर,

0: ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण है कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशस्त्र हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहकर आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की। आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया।

0: एनडीएम के आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की, अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं, मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला, माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में,
0: अच्छा,
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई, जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है, जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफ़ी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रहती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई कैसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
0: है। यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया, वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और कर्नल तनवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ, मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक उस मेरी जिंदगी का एक बहुत ही बहुत इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशेष

0: बड़ा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
1: जी।
0: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
1: जी।
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद। बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। योजना के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। प्रदेश के अलीगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा एक विशेष राष्ट्रीय कार्यशाला सह लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कलाग्रा से पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित करेगा। कार्यक्रम की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस फोरम में ब्रिक्स देश

भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कलाग्रा से पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित करेगा। कार्यक्रम की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस फोरम में ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीकी तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कार्यक्रम में संत कबीर नगर में विकास प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भरता और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमीरपुर में सूचना विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने किया। प्रभारी मंत्री ने प्राकृतिक एवं प्रगतिशील खेती कार्यशाला में प्रतिभाग कर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। वहीं जौनपुर में भी विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह बिजनौर जिला कारागार में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासनों व प्राणायाम का अभ्यास कराया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ, धड़कन लखनऊ की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बताइए, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी 100.7 FM रेनबो पर आज आप जुड़े हैं अपने सतरंगी दोस्त या कहें मिसमराइजिंग आरजे मोना के साथ, और 5:05 का वक्त हो चला है और इसी वक्त के साथ शुरू हो गया है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है FM Top 10। यस, तो सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग, एंड जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई है क्योंकि जब से जो लास्ट हमारी आरजे थी ना फातिमा, जब नाम लेकर गई है उसके बाद से मेल्स की एक लंबी कतार लग गई है कि भाई आप बड़े टाइम से आए नहीं, तो उनके भी नाम हम शामिल करेंगे, बताएंगे कि हाँ बड़े लंबे टाइम से नहीं आए लेकिन आज आए हैं तो प्रोग्राम में तहलका तो डेफिनेटली मचाएंगे। एंड एज यू नो कि समय बीतने के साथ साथ हर जगह बदलाव होता है, ठीक वैसे ही बॉलीवुड में भी तमाम चेंजेस आए हैं, इनफैक्ट आते ही जा रहे हैं। और आज बॉलीवुड में ना बाउंड्रीज बिल्कुल ब्लर हो चुकी हैं, एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग नहीं करते और सिंगर सिर्फ सिंगिंग नहीं करते। और जब बात एक्टर्स के गाने की आती है

ना, तो वो सिर्फ सिंगिंग नहीं होती बल्कि होता है उनका पर्सनल एक्सप्रेशन। जी हाँ, कभी वो इमोशनल हो जाते हैं, कभी फन वे में गाना गाते हैं, तो कभी भाई वो अपने आप से ही करते हैं एक्सपेरिमेंट। और इसी क्रॉसओवर ने बॉलीवुड को और ज्यादा क्रिएटिव और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। तो आज प्रोग्राम एफएम टॉप 10 में हम कुछ ऐसे ही सॉन्ग्स से करेंगे आपको एंटरटेन, जिन्होंने ना सिर्फ गाने को, या ये कहे जिस गाने ने एक्टर या एक्ट्रेसेस की पहचान तो बनाई ही, साथ ही आप अपने जो फेवरेट एक्टर्स हैं ना, उनसे ज्यादा उनके गानों को करते हैं पसंद। जी हाँ, बड़ा ही बढ़िया सा ये ट्रैक जो धीरे धीरे पीछे से बजने लगा है, ये आप जो सुन रहे हैं फ्रॉम द मूवी विकी डोनर। आपको बता दूं कि इस गाने में जो आवाज दी है वो है एक्टर आयुष्मान खुराना। अच्छा, जिन्होंने सिंगिंग के फील्ड में ना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में इनकी एंट्री हुई फिल्म विकी डोनर से, और जिसका सॉन्ग पानी दा रंग खुद आयुष्मान ने ही गाया था। एंड आयुष्मान पहले ऐसे एक्टर बने जिनका डेब्यू मूवी और डेब्यू सॉन्ग बेहद ही हिट और सुपर हिट रहा। एंड इसके लिए इन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड। तो करिए इस सॉन्ग को एंजॉय, और उसके बाद करेंगे कुछ और बातें।

अच्छा 5:10 का वक्त हो रहा है एफएम टॉप 10 पर, आज आप हैं मोना के साथ हो, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, हर बार जब भी यानी हर रोज हम जब ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं टॉप 10 ऐसे सॉन्ग्स लेकर आते हैं जिन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खास हम टॉपिक लेकर आते हैं। और आज तो भाई अलग ही बिल्कुल लेवल पे हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि हम बात उन एक्टर और एक्ट्रेसेस की कर रहे हैं जिन्होंने सिंगिंग के फील्ड

में भी अपना हाथ आजमाया है। So, सबसे पहला सॉन्ग हमने प्ले किया आयुष्मान खुराना का और बहुत ही अमेजिंग ये सॉन्ग था और अमेजिंग ये मूवी भी थी और अमेजिंग ये सॉन्ग इसलिए भी था क्योंकि ये उनकी डेब्यू मूवी थी, डेब्यू सॉन्ग था जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। अच्छा, उसके अलावा हमारी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जिसमें बॉलीवुड के रेयर मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट में से एक है जिनका नाम है फरहान अख्तर। जी हाँ, फरहान अख्तर डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर भी है जिन्होंने ऑफिशियली रॉक मूवी जो आप आई थी, आपको शायद याद होगा ये रॉक ऑन, इसका पूरा नाम था रॉक ऑन, और उसमें जब इन्होंने गाना गाया था यारी जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, और उसके बाद इन्होंने एक फिल्म थी वज़ीर उसमें अतरंगी यारी सॉन्ग भी गाया था जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसे मैंने क्यों कर रखा है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई ये आजकल के एक्टर्स हैं जो गाना गा रहे हैं, देन लेट मी टेल यू कि ये आजकल की बात नहीं, ये दौर बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। जी हाँ, एक्टिंग के साथ सिंगिंग बहुत पहले से ही चलती चली आ रही है, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट द आइकॉनिक सॉन्ग संग बाय अमिताभ बच्चन। जी हाँ, वो जो होली सॉन्ग था या फिर उनकी मूवी का तुम्हारे अंगने में मेरा क्या काम या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, ये लिरिक्स जो है ना आगे पीछे भी हैं क्योंकि इसके कई वर्जन्स भी निकले हैं, तो ये गाने हम सभी बहुत इंजॉय करते हैं, और ऐसे ही वज़ीर का ये गाना है जिसमें फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन दोनों की ही वॉइसेस है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सॉन्ग आपको सुनाया जाए। एंड ऑफ कोर्स जब बात दोस्तों की आती है, फ्रेंडशिप डे की आती है ना, तो ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है, तो अगर आप भी अपने दोस्त से करते हैं प्यार तो ये सॉन्ग कर सकते हैं उन्हें डेडिकेट।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का

0: फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जी हाँ, तो आज हम बॉलीवुड के क्रॉसओवर्स की बात कर रहे हैं, और ख़ास करके उन क्रॉसओवर्स की जहाँ जो हमारे एक्टर्स हैं वो उन्होंने हाथ आजमाया है सिंगिंग में भी। अच्छा, बॉलीवुड से हॉलीवुड का म्यूज़िक क्रॉसओवर का भी बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जिन्होंने इंटरनेशनल सिंगिंग लॉन्च किया है, और इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, ये जो सिंगल लॉन्च किया था, ये इसका नाम था इन माई सिटी, और ये ग्लोबल पॉप साउंड एंड म्यूज़िक का एक अलग ही रंग दिखाता है।

अच्छा आज आपको लग रहा होगा ना कि भाई बड़ी ही जल्दी जल्दी आज इन्होंने सारी बातें की, बड़ी ही जल्दी से वेलकम किया, बड़े फटाक से गाने दिए जा रही हैं। दरअसल आज हम अपना एक बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम आप जानते हैं कि लेकर आते हैं, वो है पत्रकार से वार्ता। और आज भी 5:30 पर आप हमारा ये कार्यक्रम सुनेंगे, इसलिए मेरी बड़ी ही ख्वाहिश है कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाने सुना सकूं, ये बता सकूं कि भाई हमारा जो बॉलीवुड चेंज हो रहा है, जहां पे हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना बड़ी मेहनत कर रहे हैं सॉन्ग्स गाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए एंटरटेनमेंट हर किसी को पसंद है, सॉन्ग्स हर किसी को पसंद है, तो वो एक हाथ इसमें भी आजमाना चाह रहे हैं। अच्छा, जिसमें हमने बात करी आयुष्मान खुराना की, फरहान अख्तर की, अमिताभ बच्चन की, एंड ऑफ कोर्स प्रियंका चोपड़ा की। एंड प्रियंका ने तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का जो सफ़र है ना बहुत ही खूबसूरत तरह से तय किया, वो तो हम देख ही रहे हैं, और सिर्फ एक्टिंग के ही दौर में नहीं म्यूज़िक के भी फील्ड में। और जब बात हम प्रियंका की करें तो हम कभी भी जो नाम नहीं भूल सकते हैं वो है परिणीति चोपड़ा का। Yes, आपको बता दूं कि परिणीति ने यूं ही हाथ नहीं आजमाया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि शी इज अ ट्रेंड सिंगर। और वो जब गाना गाती है ना तो यकीन मानिए कि आप वो गाना सुनते रहेंगे और कब उनकी आवाज में खो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से ये ट्रैक उनकी ही आवाज का मैंने प्ले कर दिया है। और एक चीज और बता दूं कि सिंगिंग जो उनका पैशन है उसे वो इतनी शिद्दत से फॉलो करती कि कई कॉन्सर्ट्स ने भी उसमें उन्होंने शिरकत की, और कई कॉन्सर्ट्स भी वो करती हैं।

अच्छा, बहुत सारे जो दोस्त हैं ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोशनी रावत जी, रामराज जी, संतोष जी, तालिब अंसारी जी, सबका मेल आया है। एंड रोशनी जी ने तो बड़े ही प्यार से हमें मेल किया है जिसमें उन्होंने शायरी लिखी है, वो मैं पढ़ूंगी अगले प्रोग्राम में। एंड अभी जिस हम एक्टर की बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड में एक्चुअली सिंगिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था ना, उनका नाम है जूनियर बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये जो हमारे सिंगर हैं ना, ये इतने ही कूल अर्बन वाइब लेकर आए थे इस गाने में, इतना ही ज़्यादा एटीट्यूड था इस सॉन्ग में कि जब भी हम ये सॉन्ग सुनते हैं कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि ये एक्चुअली हमारे अभिषेक बच्चन ने गाया है। जी हाँ, तो उनकी ही मूवी ब्लफ मास्टर का ये ट्रैक सीधे आपके रेडियो सेट्स पे।

स्पीच है ना वो थोड़ी सी स्पीड हाई हो जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर या एक्ट्रेसेस के बारे में हम आज के प्रोग्राम में बता सके जिन्होंने एक्टिंग के अलावा सिंगिंग के फील्ड में भी अपना हाथ आजमाया है। और ऐसे तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिसमें हमारी श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह भी शामिल है, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, श्रीदेवी, माधुरी एंड ऑफ कोर्स अमरीश पुरी तक ने भी गाना गाया है। तो सोचिए कैसी लंबी लिस्ट है जहां एक्टिंग के अलावा हमारे जो एक्टर्स हैं ना उन्होंने सिंगिंग में एक्सपेरिमेंट किया है, अपने इमोशंस को रखा है, चाहे फन वे में गाना गाया हो या इमोशनल लेवल पे, लेकिन उनके गाने हमेशा ही पसंद किए जाते हैं। फिलहाल 5:26 और ये लीजिए बात करते करते 27 का वक्त हो चला है। प्रोग्राम आप सुन रहे थे FM टॉप 10, जहां अब इसी ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम को मैं करती हूँ वाइंड अप, लेकर आऊंगी 6 प्रोग्राम शाम अवर। और ये जो सॉन्ग है ना ये आप सुन ही रहे होंगे सलमान खान यानी हमारे दबंग खान की आवाज में, ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी के किसे करिए एंजॉय और कहीं जाइए। जुड़े रहिए आपके अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
7: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज।

0: experienced doctors or personalized care.
1: My pediatric brain and spine surgery, PICU, EEG, MRI, genetic test, physio or speech therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है.
3: अब सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम पत्रकार से वार्ता. वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी से आप सुनेंगे प्रवीण कुमार की बातचीत.

0: नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं पत्रकारिता की दुनिया, उसकी चुनौतियों और समाज में उसकी भूमिका के बारे में। हम रोज रेडियो, मोबाइल ऐप पर खबरें सुनते हैं, अखबार और न्यूज पोर्टल पर खबरें पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज देखते भी हैं, सोशल मीडिया पर समाचारों को स्क्रॉल भी करते रहते हैं। लेकिन एक खबर को आप तक पहुंचाने के लिए पत्रकार किन हालातों से गुजरता है, ग्राउंड जीरो का सच क्या है, पत्रकारिता में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसी तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी जी। स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद प्रवीण।
0: श्रोताओं, आपको बताते चले कि प्रमोद जी करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर समेत कई जगहों पर काम किया है और फिलहाल न्यूज 18 ग्रुप में डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर पर कार्यशील हैं। तो प्रमोद जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता की इस दुनिया में कदम रखने का विचार कैसे आया?
1: प्रवीण जी, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो मुझे 20 साल 25 साल पीछे जाना पड़ेगा और वहां पे जा करके अगर मैं अपने शहर को देखता हूं, जहां से मैं आता हूं, मेरा शहर है गोंडा, जो यूपी का काफी पिछड़ा हुआ इलाका, तब तो बहुत था, आज भी वो पिछड़े इलाकों में ही नाम आता है। तो वहां पे तब मीडिया क्या है, मीडिया में कैसे काम होता है, इसके बारे में जानकारी शून्य के बराबर थी, मुझे तो उससे भी कम थी। लोगों को यही लगता था कि झोला लटका के जो घूमते हैं वो पत्रकार हैं, उनको कोई सैलरी मिलती नहीं है, कुछ स्टिपेंड मिल जाता होगा, लोगों का एक परसेप्शन यही था। मैं लखनऊ में आकर के पढ़ाने लगा तो यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानकारी हुई, मन में जिज्ञासा जगी कि कुछ ऐसा किया जाए जो अन्य फील्ड से हटके हो। तो मैंने सोचा पत्रकारिता की जाए, इसके लिए एक ही जगह है गढ़ उसका दिल्ली। वहां गया तब जाके समझ में आया कि ये भी कोई फील्ड है जिसमें सैलरी मिलती है। तो ये मेरा परसेप्शन पहली बार खत्म हुआ कि नहीं, पत्रकारिता में भी बाकी के जॉब की तरह सैलरी आती है। मैंने वहां जाके फिर पढ़ाई की और वहीं से मेरा करियर शुरू हो गया। चुनौती सफलता दोनों कदम ताल करते रहे।
0: जी, तो करियर की शुरुआत कहां से हुई, किस अखबार या चैनल से?
1: दिल्ली पहुंच करके सबसे पहला तो मेरा काम यह था कि कोई मुझे जानने वाला नहीं था, मैं किसी को जानने वाला नहीं था, तो मुझे खुद से ढूंढना था कि इसकी पढ़ाई शुरू कहां से की जाए। जो अखबारों में देखा, लोगों से पूछा, तो समझ में आया कि अगर दिल्ली में पढ़ाई करनी है तो सिर्फ दो जगह है, IIMC और दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पत्रकारिता संस्थान है। मैं चूंकि मई के महीने में गया था, ये साल 2007 की बात है, तब IIMC में सारे एडमिशन्स वगैरह क्लोज हो चुके थे, ले देके बचा मेरे लिए जामिया। मैंने उसमें फॉर्म डाला, एग्जाम्स दिया, लेकिन चूंकि बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं और मैं तो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था, तो किसी तरह इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ले दे करके ये था कि भाई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाया जाए, तो थोड़ी सी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने जागरण इंस्टीट्यूट नोएडा में एडमिशन पुख्ता किया और मुझे प्रिंट जर्नलिज्म में पढ़ाई का मौका मिला। वहां से पढ़ाई की और उसके अगले साल मुझे पहली बार पत्रकारिता करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया। यहीं से मेरे करियर की शुरुआत।
0: जी, और इस तरह से दैनिक जागरण के साथ आपके पत्रकारिता की करियर की शुरुआत हुई।
1: जी,
0: तो क्या आपको आज भी वह अपनी पहली

0: स्टोरी याद है जो आपको एक नई पहचान दी या पत्रकारिता में आपको एस्टेब्लिश किया?
1: बिल्कुल मुझे याद है, मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा ही था, 5वें दिन खबर आई कि आप वहां से वापस आ जाइए और आप आके पानीपत में ज्वाइन कर लीजिए। मैं वापस पानीपत आ गया। ये बात है जुलाई 2008 की। पानीपत में भीषण बारिश हुई तो मैंने वहां पे एक खबर लिखी कि पानीपत में बरसा पानी। मेरी ये पहली ऐसी खबर थी जिसने उस शहर में काफी कुछ प्रशासनिक तौर पे कोहराम जैसा मचा दिया। श्रोताओं को ये पता होगा कि पानीपत में भी एक छोटा सा जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहां से हर साल यात्रा निकलती है। तो जब बारिश हुई, चूंकि पानीपत शहर काफी कंजस्टेड था, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो जल भराव धीरे धीरे वो जगन्नाथ जी की सीढ़ियों तक तो पहुंच गया। मैं अपने कैमरामैन के साथ ये देखने निकला कि शहर के हालात हैं कैसे। जब मेरी नजर उस मंदिर पर पड़ी तो उसकी चौखट पर वो नाले का पानी छू रहा था। मैंने कैमरामैन से बोला कि आप ऐसी फोटो लेना जो इस पानी को और अंदर विराजमान जगन्नाथ जी की मूर्ति को एक साथ करते हुए दिखाए, और ताकि प्रशासन पर ये चोट पड़े कि कम से कम यहाँ तो आप व्यवस्था कीजिए। फिर कुछ और विजुअल्स के साथ उस स्टोरी को फ्रंट पेज पे लिया गया जो पानीपत का एडिशन निकलता था। तो पानीपत में बरसा पानी, ये जो मेरी पहली स्टोरी थी इसी शीर्षक से, इसने मुझे ये दिखाया कि हाँ, कुछ यहाँ पे अलग किया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और इस तरह से आपको एस्टेब्लिश किया पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो फील्ड पे काम करते हुए तो क्या-क्या चुनौतियां देखने को मिली?
1: सबसे बेसिक चुनौती जो आती है, आज के भी जो पत्रकार होंगे, जो वरिष्ठ होंगे उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जो नए पत्रकार आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो फील्ड में आती है वो होती है खबर निकालना या सूचना जानकारी लेना। क्योंकि आप जब किसी अधिकारी के पास, किसी सरकारी महकमे में जाते हैं, और चूंकि आप उन्हीं से सवाल करके उन्हीं से जवाब लेना चाहते हैं, तो जाहिर है वो अपने जवाब को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो उनकी इस लुका छिपी में आप उस सच को कैसे बाहर लेके आएंगे। दरअसल यही चुनौती है और यही सारी पत्रकारिता है। पहले हम लोगों को सिखाया जाता था सिलेक्शन, लेकिन अब हो गया है कि आपको रिजेक्ट करनी है। आपके पास अब 1000 खबरें आएंगी, आपको चुनना केवल 20-30 है।
0: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी समझ उस स्तर की हो कि आप रियल, जो आम आदमी से जुड़ी खबरें हैं, उन्हें छांट पाएं।
1: प्रवीण जी, ये बात आपने बहुत सही बात कही है। आज के युवाओं के मन में क्या आता है कि एक माइक, एक कैमरा और वो हो गए पत्रकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे पत्रकार तो कदापि नहीं बन पाएंगे। शॉर्ट वीडियो बनते हैं वो भले बन सकते हैं, पत्रकार नहीं बन सकते। पत्रकार बनने के लिए मैं सबसे पहली चीज यही बोलूंगा, आप पढ़िए, चीजों को समझिए। अगर आप प्रशासन पे उंगली उठाने जा रहे हैं तो आप ये समझिए, जानिए कि किस कानून के तहत उंगली उठा सकते हैं, आपके पास वो राइट्स हैं भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अपने वीडियो के चक्कर में आप ही फंस जाएं।
0: बिल्कुल। वैसे पत्रकारिता का फलक बहुत बड़ा है, इसमें संस्कृति, खेल, अर्थव्यवस्था जैसे तमाम क्षेत्र हैं, तो आपकी रुचि इनमें से किस में है?
1: शुरुआत में जैसा कि आज के 100 में से 99 पत्रकार, युवा पत्रकारों की रुचि होती है, वो दो ही फील्ड होती है, या तो क्राइम या तो पॉलिटिक्स। शुरुआत में मुझे भी लगा कि क्राइम फील्ड की तरफ बढ़ना चाहिए, गया भी, किया भी, लेकिन असल में बात बोलूँ तो मन नहीं लगा। पूरे इस जर्नी में जो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो हिंदुस्तान में काम करते हुए आया। मैं हिंदुस्तान में काम कर रहा था नोएडा में, और वहाँ मुझे अचानक बिजनेस में काम करने को मिला, और आज मुझे 12 साल हो गए बिजनेस की फील्ड में काम करते हुए, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज के युवाओं को बोलूंगा, बहुत कम युवा यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि बिजनेस की फील्ड में काम करने के बहुत अवसर हैं, इस तरफ आइए, आप निराश नहीं होंगे।
0: बिल्कुल। और हिंदी या भारत के अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें तो आर्थिक जगत की खबरें बहुत ही कम जगह पाती हैं।
1: बिल्कुल कम जगह पाती है। पहले तो मैं यही कहूंगा कि उन भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इन भाषाई क्षेत्रों के लोगों को अभी तक अपने लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, अब वो मिल रहा है तो वो हाथों हाथ ले रहे हैं।
0: बिल्कुल। यह तो हो गई पत्रकारिता की बात। और गाने में रुचि?
1: गाने में एक गाना है जो मैं बचपन से गुनगुनाता आया हूँ, खुशियां और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं पत्रकारिता में और क्या हमारे नए पीढ़ी के युवाओं को करना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिन्हें करियर बनाना है। खबर लिखने के लिए कहीं ना कहीं हमें बेहद निपुण भाषा की जरूरत पड़ती है, बेहद स्तरीय भाषा की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या कुछ खास आपने किया?
1: देखिए, दो चीजें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि पहले लोग अपनी भाषा यानी हिंदी भी सीखना चाहते थे अखबार पढ़ के, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उसका लेवल कितना बड़ा था, कितना विश्वसनीय था। लोगों को कहा जाता था, जो तैयारी करने वाले छात्र आते थे दिल्ली में, उनसे कहते थे कि भैया आप एडिटोरियल पढ़िए ताकि आपको लिखने की शैली का पता चले। तो आज के जो युवा पत्रकार हैं वो अगर इस तरफ आना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि अपनी लिखने

0: इस शैली पर जरूर काम करें। आपकी खबर पढ़ी तब जाएगी जब उसकी शैली लोगों के मन में आएगी। 5W1H यानी ये सवाल बेसिक होते हैं किसी भी खबर को लिखने के। 5 सवाल, कैसे, कहाँ, कब, क्यों और कौन। तो ये चीज आज भी वैसी ही मायने रखती है, ये हमेशा सरोकार में रहेगी। खबर होती है सवाल की और हमारा काम है उसका जवाब देते हुए चलना। तो इस पर हमको ध्यान जरूर रखना है खबर लिखते समय। आपकी खबर कोई रोक नहीं सकता।
1: तो भाषा को मजबूत करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए?
0: भाषा को मजबूत करने के लिए पहली चीज तो ये है कि आपकी बेसिक्स पे पकड़ होनी चाहिए। अब आप पत्रकारिता में पढ़ने आगे, संस्थान आपको ये चीज नहीं पढ़ाएगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप साहित्य पढ़िए, साहित्य जरूर पढ़िए। लोगों के हाथ में मोबाइल है, रील्स है, तो बेचारे किताबों से दूर भाग रहे हैं। आपको पत्रकारिता में आना है, पर आप भाषा पढ़ें, जो पसंद हो वो पढ़ें, पर भाषा पढ़ें। भाषा जितना पढ़ेंगे, जब आप 100 किताबें पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में एक किताब जैसी भाषा आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़िए।
1: बिल्कुल, भाषा को बेहतर बनाने के लिए पढ़ने की जरूरत है। आज का दौर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का है, जहाँ पहले खबरें सुबह अखबार में या रात को 9 बजे टीवी पर मिलती थी, अब हर सेकेंड फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। एक पत्रकार के रूप में आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, ये बदलाव तो बहुत बढ़िया है। जब हर चीज की गति आज बढ़ रही है, गाड़ियों की गति बढ़ रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 200 किलोमीटर में गाड़ियां चल रही हैं, तो खबरों को भी उसी स्पीड से भागना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन गति बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्रोल खो जाए। लिहाजा आप गति कितनी भी तेज रखें, चाहे वो बात डिजिटल मीडिया के हो चाहे वो अखबार के लिए हो। डिजिटल मीडिया क्या है? ये टीवी और अखबार का रूपांतरित, मान के चलिए मेटामॉर्फोसिस है दोनों का। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, इनके लिए ज्यादा चुनौती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, आज लोगों के मन में जो भी पाठक हैं उनके मन में डिजिटल को लेकर सबसे ज्यादा शंका होती है। टीवी पर तो वो थोड़ा भरोसा कर लेंगे, अखबार पे ज्यादा भरोसा करेंगे, लेकिन डिजिटल को लेकर के 100 में 3 आदमी भरोसेमंद होता है, क्योंकि इधर खबर आई उधर बदल गई।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चुनौती बेसिक तौर से डिजिटल के लिए है। मैं स्वयं डिजिटल में काम कर रहा हूँ इस समय, इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ। वहां पे हमको क्या करना है, स्पीड के साथ साथ कंट्रोल जरूर रखने हैं। अगर हम बेसिक्स खोएंगे तो हम जाहिर बात है कि इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे, हमारे ऊपर सवाल उठेंगे, प्रशासन भी सवाल उठाएगा, जनता तो खैर सब कुछ समझ ही रही है।
1: तो अभी पत्रकारिता के क्षेत्र को पहले आपने देखा, अभी पत्रकारिता में चल रहा है, इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं असर देखा जा रहा है, इस प्रभाव को कैसे देखते हैं?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सारे काम चुटकियों में वैसे ही कर रहा है जैसे कोई जिन करता था। अब चूंकि इसका प्रसार हर जगह हो रहा है, इसको हर जगह अप्लाई किया जा रहा है, तो बेचारा पत्रकारिता की क्षेत्र ही क्यों इससे अधूरा रहेगा। यहाँ भी ये जरूर आया है। अब यहाँ आने की भी चुनौती वही है, आप ChatGPT पे चीजें आपको वो निकाल के फैक्ट दे देता है, लेकिन उस फैक्ट को वेरीफाई किए बगैर आप यूज मत कीजिए। इसने आसान किया है काम, तो मैं यही कहूंगा AI ने काम आसान जरूर किया है, चुनौतियां भी बढ़ा रहा है, खतरे भी पैदा कर रहा है नौकरियों के लिए, ये भी बात है। जैसे बाकी के फील्ड में AI से चुनौती है हमारी यानी इंसानों की, वैसे ही पत्रकारिता में भी चुनौती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सहूलियत ये है कि हमारे पास टाइम है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा उस फैक्ट को चेक करने के लिए, ये जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले श्रोताओं को आपकी पसंद का एक और गाना सुनवाना चाहेंगे।
0: आवारापन मूवी का, आवारापन बंजारापन, एक खला है सीने में।
1: आइए सुनते हैं प्रमोद जी की पसंद का ये ट्रैक।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में, और हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों की बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी जी। अक्सर कहा जाता है कि पत्रकारिता कांटों की राह है, कई बार ऐसा होता भी है कि कोई खबर को दबाने के लिए कहा जा रहा हो, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ?
1: इस सवाल का बहुत ज्यादा मैं उधेड़ के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जाहिर बात है जिसके ऊपर असर जा रहा है वो इस पर पलटवार करेगा जरूर। वो तो चुनौती यही है, और वो सिर्फ दबाने के लिए आपको बात नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीजों से आपको प्रलोभन दे देगा। तो जब सामने से आपको ऐसा कोई प्रलोभन आए तो ये जरूर ध्यान रखें कि हम यहाँ पैसे कमाने नहीं आए हैं। दूसरी बात, अगर वो दबाव डर के रूप में आए तो मैं आज के युवाओं को बताना चाहूंगा, ये इकलौती ऐसी फील्ड है जहां आपको बिना जाने सुने मदद करने वाले आज भी खड़े हैं। आप किसी भी राज्य में चले गए अगर, और वहां आपको कोई संकट आ गया, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके साथ वहां के लोकल पत्रकार कंधे से कंधा मिला के खड़े मिलेंगे। तो इस फील्ड का, इस जज्बा को आप भी बनाए रखिए।
0: एक पत्रकार के रूप में निष्पक्षता बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है?
1: देखिए, ये तो पहले भी था, क्योंकि पहले इंटरनेट कम हाथों में था, फेक न्यूज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चलते हैं। मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, आपको कोई भी फैक्ट आता है मोबाइल पे, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपको ऐसी कोई भी खबर जो कि सोशल मीडिया से मिली हो उस पर कतई

0: तुरंत विश्वास ना करें, देखिए उसके सोर्स क्या क्या है। अदरवाइज आपके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपके कोई खबर आती है, आप ये मान के चलिए, प्रथम दृष्टया यही मानिए ये गलत है। जिस डाटा का इस्तेमाल करके आप उस फैक्ट न्यूज को पढ़ रहे हैं, उसी डाटा का इस्तेमाल आप उसको चेक करने के लिए भी करें।
1: बिल्कुल, बिना क्रॉस चेक किए हुए सोशल मीडिया पर आए हुए खबरों को फॉरवर्ड न करें। तो पत्रकारिता की तो बात हो ही रही है, लेकिन पत्रकारिता से आपके जीवन में क्या बदलाव है?
0: मेरे जीवन में ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा पत्रकारिता से हर किसी के जीवन में बदलाव आता है। बस यहाँ मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे जीवन में दो बदलाव आए। पहली चीज तो ये है कि अभी मैं कोई बात कहता है, ये बात मेरी पत्नी ना सुन रही ज्यादा बढ़िया है, अगर पत्नी भी कोई बात कहती तो सोचता हूँ इसको पहले फैक्ट चेक कर लूँ कि कोई बात कही गई सामने से तो मैं सहसा उस पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि मैं जान ला लूं ये सही है क्या गलत है, भले वो सही हो। ये तो एक आदत में आ गई। दूसरी क्या है, गलत कोई चीज हो रही हो लेकिन मन में ये बात रह जाती है कि काश मैं यहाँ कुछ कर पाता, तो मैं यही कहूंगा कि पत्रकारिता जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक जॉब नहीं है, ये जॉब के साथ साथ जिम्मेदारी है।
1: वैसे तो आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन जब शुरुआत की थी पत्रकारिता की तब उस समय कुछ ऐसा चुनौती लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए?
0: ऐसे प्रवीण जी दो मौके मेरे सामने आए जो थोड़ा लगा कि यहाँ पे अगर मैं कर लेगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आता है आदमी के अंदर। पहला तो आया जब मैं पानीपत अपनी करियर की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये बात 2008 की है, पानीपत शहर के बीच में दो शमशान हैं जहाँ शव जल रहे हैं, अगल बगल मकान है। मुझे लगा ये तो बड़ा बढ़िया मुद्दा है, मैं वहाँ की तस्वीरें ली, अपने आके ब्यूरो चीफ से बात की, संपादक से बात की, उन्होंने कहा भैया ऐसी खबरें मत लगाइए। हमने कहा सर इससे तो लोगों को तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं, मैंने उनसे जाके बात भी करी है, लोग कह भी रहे हैं, बोले सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं। तो पहली चुनौती तो ये समझ में आई कि सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं हो सकता तो ये ऐसी भी आपके सामने कंडीशंस आएगी। दूसरा वहाँ पे आई कि पानीपत जो है वो कालीन के लिए अभी भी दुनिया में प्रसिद्ध है, वहाँ कालीन बनती हैं, अच्छी कालीन बनती है, देश दुनिया में जाती है। लेकिन उसकी जगह क्या होती है, आप गूगल करके देखेंगे, कुछ साल पहले तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा होती थी पानीपत में। मैं इसका कारण खोजने निकला एज ए पत्रकार, ऊपर से मैं विज्ञान का छात्र था। कारण ये निकल के आया कि जो पेंट वगैरह यूज करते हैं उन कालीन को बनाने में, उनको रंगने में, उसकी वजह से ये अम्लीय वर्षा वहाँ ज़्यादा होती है। मैं जब इससे बात करने के लिए वहाँ के एनवायरमेंट कंट्रोल बोर्ड के पास गया तो अधिकारी ने मुझे चाय पिलाया और धीरे से दिया टरका, बोला हम आपके बॉस से बात कर लेंगे। जाहिर सी बात है मैंने बॉस को फ़ोन लगाया, बॉस ने कहा अरे वहाँ कहाँ पहुँच गए, ये सब थोड़ा ना करना है आपको। तो ये चुनौती भी आपके पास आती है, इसके लिए तैयार रहिए, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चुनौती तो मेरे साथ करियर शुरू होने से पहले ही आई, फिर भी मैं इस करियर में रहा। इसके बाद मैंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लोगों का डिनाई करना भी जारी रहा और मेरा खोजना भी जारी रहा। तो ये तो एक दूसरे के पहलू हैं, आपको इनसे दो चार होना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, यानी पत्रकारिता कोई सीधा रास्ता नहीं है, कई बार आपको घूम फिर करके चलना पड़ता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रणवीर जी।
1: आज के इस अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और पत्रकार से, जानेंगे उनके अनुभव और विचार। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पत्रकार से वार्ता, हमारा खास कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी से, जहां बातचीत कर रहे थे प्रवीण कुमार जी।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाले नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौ माता आधारित खेती न केवल कृषि को सशक्त बनाती है बल्कि गौ माता की रक्षा भी करती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 4-5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास शुरू किया।

किए गए हैं। प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग व मार्केटिंग पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने कृषि विज्ञान केंद्रों को प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन का आधार बनाया है। उनके किसान के और संस्थान इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। विजिट माय स्टेट अभियान के तहत अब श्रद्धालु अयोध्या नैमिषारण्य के साथ ही साथ प्रयागराज अयोध्या, प्रयागराज चित्रकूट और प्रयागराज विंध्याचल धाम की यात्रा नियमित रूप से कर सकेंगे। इन सेवाओं का लाभ इसी वीकेंड से शुरू हो जाएगा। यूपीएससी टीडीसी प्रदेश में विजिट माय स्टेट अभियान को बढ़ावा देते हुए यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बना रहा है। श्रद्धालु और पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। विशेष टूर पैकेज की बुकिंग यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। सभी यात्रा पैकेज में समूह बुकिंग पर विशेष छूट भी दी जाएगी। प्रदेश में आगामी 21 जून को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष विभाग द्वारा 3

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। विशेष टूर पैकेज की बुकिंग UPSTDC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। सभी यात्रा पैकेज में समूह बुकिंग पर विशेष छूट भी दी जाएगी। प्रदेश में आगामी 21 जून को 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष विभाग द्वारा 3 बड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर प्रतियोगिता वाले सेक्शन में ऑनलाइन प्रतिभाग कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार पहली स्लोगन प्रतियोगिता होगी, जिसके तहत हिंदी भाषा में न्यूनतम 2 लाइन अधिकतम 4 लाइन की होगी। दूसरी योग चित्रकला प्रतियोगिता होगी। तीसरी योगासन प्रतियोगिता होगी, जिसके अंतर्गत वीडियो अधिकतम 1 मिनट की होगी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य आम जनमानस को योग के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ, धड़कन लखनऊ की। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम अवध।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

क्या खूब कहा है किसी ने कि गुजारा हो जाए कहीं भी जिंदगी का सफर, गुजारा हो जाए कहीं भी जिंदगी का सफर, मगर लखनऊ बिना दिल को करार नहीं मिलता। तहजीब, मोहब्बत और अदब की जो बात यहाँ है वो किसी और शहर में कभी नहीं मिलता। अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। 6:10 का वक्त हो लीजिए, इसी वक्त के साथ शुरू हो गया है आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है शाम अवध, जिसे लेकर हाजिर है आपकी अपनी मेस्मराइजिंग आरजे मोना। एंड यस, एज यू नो कि भाई जब हम बात प्रोग्राम शाम अवध की करते हैं तो हम बात करते हैं उन सारी खबरों की जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, यानी कहाँ पर हमारे लखनऊ में क्या कुछ खास हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास है, या फिर अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भाई मेरे पास खास जानकारी है ना, क्यों ना आपको वहीं घुमाने ले जाओ। तो अननेसेसरी यूं ही कुछ प्लान मत कर लीजिए, बल्कि कुछ फ्रूटफुल प्लान करिए और ऐसी जगह घुमाऊंगी आज जहाँ आप ना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सारी खबरें जानने के लिए आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। यस, 100.7 FM रेनबो के साथ प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध। बहुत सारी जानकारियां हैं मेरे पास जो की हैं सिर्फ आपके लिए। भाई ये खबरें मैं अपने पास रख के करूंगी क्या। तो एक और बेहतरीन से एंटरटेनिंग सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, उसे करिए एंजॉय। और जब लौट कर आएंगे तो ये पहली खबर होगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए कहीं जाए नहीं एंड कीप रॉकिंग विद 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वाओ।
1: तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं वाओ, क्योंकि जब प्रोग्राम शामेवद होता है ना, तो बहुत सारी ऐसी वाओ वाली खबरें होती है हमारे पास जो हम शेयर करते हैं आपके साथ। और खास करके जो स्टूडेंट्स से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, वो जब हम शेयर करते हैं ना, तो भाई हमारे जो स्टूडेंट्स के चेहरे पे मुस्कान होती है ना, वो और ज्यादा खिल जाती है। फिर आपके मुंह से निकलता है वाओ, क्या खबर लेकर आई है मोना। फिलहाल 6:14 का वक्त, और सबसे पहली खबर जैसा मैंने कहा था हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो चलिए आपके साथ करती हूँ शेयर। और खबर ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के तहत यूजी और पीजी कोर्सेज में ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन कुछ हैं जिन्हें शायद नहीं पता हो या मिस हो गया हो, तो आपको बता दूं कि डेट बहुत जल्दी नज़दीक आ रही है, इसलिए जल्दी से एक्टिवेट हो जाइए। जी हाँ, यूजी में 22 जून और पीजी में 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप www.lkouniv.in पर जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं।

जी हाँ, बहुत मस्त सा ये ट्रैक, बिल्कुल डांसिंग नंबर है, इसे करिए आप एंजॉय, जो कि आ रहा है 100.7 FM रेनबो पर। और उसके बाद हमारे जॉब सीकर्स के लिए है कुछ खास खबरें, कहीं जाए नहीं, बस यूं ही जुड़े रहिए।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: ओ माय गॉड, व्हाट एन ऑसम सॉन्ग। भाई जी, बज के 24 मिनट का वक्त, और जब माहौल इतना ऑसम हो, इतना बढ़िया हो, तो आई एम श्योर कि आपको इंतजार रहता कि बस बढ़िया से गाने बजते रहे, जानकारियां मिलती रहे, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। सो प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना शाम अवध, मिसमराइजिंग और जमुना है आज आपके साथ। और जैसा मैंने आपके कहा कि भाई अगर आप जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं अपने लिए जॉब, हमारे जो जॉब सीकर्स हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही खास जानकारी है मेरे पास। और खास करके खबर यह है कि CISF में पैरामेडिकल पदों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, जिसके लास्ट डेट होगी 7 जुलाई। जी हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो क्वालिफिकेशन इसकी 12th रिक्वायर्ड है, यानी आप 12th पास होने चाहिए या समकक्ष डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप cisfrect.cisf.gov.in पर जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। क्या हो गया, सोच रहे हैं मिस हो गई है ईमेल आईडी। डोंट वरी, अगर ये वेबसाइट आपसे मिस हो गई है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, cisfrect.cisf.gov.in, इस पर जाकर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। याद रखिए कि 7 जुलाई है लास्ट डेट, इसलिए बिल्कुल भी लेट नहीं करिएगा, और जब आपको जॉब मिल जाए तो भाई हमारा मुंह मीठा कराना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल किंग की आवाज में बेहतरीन सा ये ट्रैक सीधे आ रहा है आपके रेडियो सेट पे, से करिए एंजॉय, और लौट कर आएंगे तो कहीं सोच रही हूँ आज घुमा दूँ आपको।
1: The last ride.

0: सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है।
7: सिर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी।
8: देखिए भाई, बात मजाक मजाक में ही की गई लेकिन सच बिल्कुल कही गई है ना। जी हाँ, तो हेलमेट जरूर पहन के निकलिए। ये हमेशा ही हम आपको बताते रहते हैं, जब भी हम आपको ट्रैफिक अपडेट्स देते हैं तो हम आपको जरूर कहते हैं कि जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं ना, उन्हें जरूर से जरूर फॉलो करें। और ये हमारे फायदे के लिए नहीं, ये आपके ही फायदे के लिए है।

0: 6:32 का वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका, अपना शाम है अवध, मोना है आज आपके साथ एंड आधे घंटे का वक्त कैसे बीत गया भाई कुछ खबर ही नहीं लगी। फिलहाल बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना वो मेल के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके मेल्स भी शामिल करेंगे हम अब से कुछ देर में हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा था कि आप जब लौट कर आएंगे, आपको जो मैंने सॉन्ग सुनवाया उसके बाद मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊंगी। तो भाई ये जो खबर है ना हमारे उन लिसनर्स के लिए जो कहीं प्लानिंग कर रहे हैं घूमने जाने की। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि साउथ इंडिया अगर आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तब तो बढ़िया है, फिर तो ये खबर आपके लिए है। और अगर नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कहाँ जाए, कन्फ्यूजन है ना, तो डोंट वरी, आज आपका सारा कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं और आपको ले चलते हैं साउथ। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने जून में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से दक्षिण भारत की यात्रा कराने का प्लान किया है। जी हाँ, ये टूर पैकेज अनाउंस किया है। इसकी शुरुआत होगी 29 जून से। ये 11 रात और 12 दिन का टूर पैकेज होगा जिसके दौरान आपको तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर, इसके साथ ही मीनाक्षी मंदिर, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराए जाएंगे। आपको बता दूं इसमें 3 कैटेगरीज होंगी जिसमें इकोनॉमी कैटेगरी होगी, 3rd AC कैटेगरी होगी और 2nd AC कैटेगरी होगी और इसके हिसाब से अलग अलग आपको अमाउंट पे करना होगा। तो पैकेज की जो बुकिंग है ना वो गोमती नगर पर्यटन भवन स्थित IRCTC कार्यालय में हो रही है। आप सारी डिटेल्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं जो कि है www.irctctourism.com और बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे जो कि है www.irctctourism.com। उसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो 2 फोन लाइन नंबर्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ आप उस पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि है 8287930908। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8287930908 और उसके अलावा दूसरा नंबर है 8287930199। सुबह नंबर मैंने आपको दे दिया, वेबसाइट मैंने आपको दे दी, कौन सा कार्यालय है यानी आपको गोमती नगर में जाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बस अगर आपके घूमने जाने की प्लानिंग है तब तो आप यहाँ घूम सकते हैं और नहीं प्लानिंग है तो बना लीजिए ना और एंजॉय करिए।
1: मैंने डैड को अपने बारे में बता दिया
0: और इन्होंने डैड को अपने बारे में बता दिया ऐसा ये कह रही है। लेकिन फिलहाल ये जो ट्रैक मैंने प्ले कर दिया है फ्रॉम द मूवी जर्सी, इसे करिए आप एंजॉय जो आ रहा है सीधे आपके रेडियो सेट्स पे।

ऑलराइट, सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना वो मेल के जरिए हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। रामराज जी का हमारे पास मेल आया है, लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो नमः, टॉप 10 कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा रहा और आधे घंटे के कार्यक्रम में भी उन्हें बड़ी ही मजा आई। कह रहे हैं जिस स्पीड से आपने जानकारियाँ दी और गाने बजाए हमें बहुत मजा आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से हमारे साथ रामराज, राजू, भानु शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, इन्होंने ये भी लिख दिया है। और इसके अलावा लिखते हैं, आशीर्वाद पहुंचे तो हमें गाना जरूर सुना दीजिएगा। भाई हम गाने ही सुना रहे हैं, आप बस हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और पहले ही हमारे पास मेल आ चुका था रोशनी रावत जी का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई टाइम नहीं रहा मेल लेने का, लेकिन अब वक्त है, थोड़ा सा ज़रूर ले सकते हैं। लिखती है, गुड इवनिंग मोना दीदी जी, आप कैसी हैं, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, बहुत दिनों बाद आप आए हो, आई मिस यू। थैंक यू सो मच रोशनी जी। और आगे जो आपने शायरी लिखी है, लिखते हैं कि आने में इतना वक्त लगाया ना करिए, अपने चाहने वालों को इतना तड़पाया ना करिए। चलिए भाई, कोशिश रहेगी नेक्स्ट टाइम से नहीं तड़पाऊंगी, एंड थैंक यू सो मच। ताली बंसारी जी का भी हमारे पास मेल आया है, अरे वाह आरजे मोना जी वेलकम, थैंक यू सो मच। राजा कटरा बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए और बहुत ही खूबसूरत सा एक कार्ड भी है जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, और ऐसी ही खास जानकारी हमारे उन दोस्तों के लिए है।

जो नीट एग्जाम देने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि नीट एग्जाम फिर से हो रहे हैं और इसी के लिए संडे को 21 जून को ये आयोजित हो रहा है लखनऊ में। और खास जानकारी है हमारे उन दोस्तों के लिए, वो क्या है बताते हैं आपसे कुछ देर में। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाए नहीं, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: अरे को बोलते नहीं है
2: ये नेटवर्क इशू
3: भैया काट के फिर से बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो हेलो
3: हेलो एफएम
2: हाय ओ कॉल लग गई मेरी।
3: हां जी अब हर दिल से निकलेगी एक ही आवाज हेलो एफएम।
1: आपके दिल की बात आपके पसंदीदा गीतों के जरिए पहुंचेगी हर दिल तक।
3: आपका फेवरेट फोन इन शो हेलो एफएम सुनिए हर शाम 7 बजे 100.7 एफएम पर।
4: जी हाँ बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है ये आपका, ये हमें पता है क्योंकि जब मेल और फोन के कार्यक्रम होते हैं ना तो आप कभी भी हमसे बात करने में पीछे नहीं हटते। सबसे कुछ देर में ये कार्यक्रम हम फिर से शुरू करने वाले हैं, फिर से यानी कि 7 बजे भाई आपको इंतजार रहता है और जब 24 घंटे बाद ये कार्यक्रम दोबारा आता है ना तो आपको भी इंतजार होता है कि कब जल्दी से हमारी कॉल लग जाए और हमारी भी हो जाए बात। तो अगर आप भी चाहते हैं हमसे कनेक्ट करना तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं हमारे फोन लाइन नंबर जो कि है 0522223884 और हमारा दूसरा मैजिकल नंबर है

0522238852 इन दो नंबर्स पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो समझ जाएगा दूसरे कॉल पे हो रही है हमारी बात। ये मत सोचिएगा कि जो है हम फोन नहीं उठा रहे और आप नाराज हो जाते हैं, ऐसे जल्दी से नाराज नहीं हुआ जाता है। चलिए एक और जानकारी ये है कि प्रायोजित कार्यक्रम में NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 तक। चलिए इन सारी जानकारियों के बीच हमारे पास एक बहुत ही खास खबर है हमारे उन परीक्षार्थियों के लिए जो 21 जून यानी संडे को लखनऊ में आयोजित होने वाले नीट री एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं और रोडवेज बस या ECT बसों का आप यूज करते हैं यानी इससे ट्रैवल करते हैं तो आपको 50% तक की छूट मिलेगी किराए में। जी हाँ, ये जो किराए की छूट है जो 50% आपको मिलेगी, ये छूट 19 जून की रात 12 बजे से 21 जून की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। और इसके लिए आपको करना क्या है कि बस जो आपका प्रवेश पत्र है उसकी फोटोकॉपी आपको कंडक्टर को देनी होगी। तो बस इस छोटी सी चीज को आप करिए, 50% का डिस्काउंट लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो बेहतरीन हो। इसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन नगमे यहाँ हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए। और एक और बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आई एम अवेयर की आवाज में फ्रॉम द मूवी मन मर्जियाँ सीधे आ गया आपके रेडियो सेट पे, इसे करिए एंजॉय।

कभी कभी जिंदगी में होता है ना, हम किसी से इतना प्यार कर लेते हैं, किसी शख्स से इतना ज्यादा प्यार कर लेते हैं कि लगता है कि वही हमारी पूरी दुनिया है, और हम उसके लिए पूरी जिंदगी में जिससे भी हमने कोई भी रिश्ता हो उसको सब त्याग के पीछे छोड़ के बस उसके लिए पूरी दुनिया को छोड़कर बस उसे ही चल लेते हैं। और इसी चीज़ को, इसी फीलिंग को ये खूबसूरत सा गाना प्रोजेक्ट करता है। मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद होगा। लेकिन चलिए अब आपका थोड़ा सा मूड ट्विस्ट करते हैं और करते हैं चेंज एक बेहतरीन से ट्रैक, यानी आज की रात जो कि मधुबंती बागच की आवाज़ में है, इसी ट्रैक के साथ आज आपको प्रोग्राम शाम अवध में छोड़ कर जाते हैं, यानी वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आते हैं आपका अपना, जिसका नाम है हेलो FM। कहीं जाएगा नहीं, जल्दी से मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके कॉल का कर रही हूँ वेट, बस न्यूज़ ब्रेक के उस पर। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के साथ बज चुके हैं, अब सुनिए यूपी के टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी हर तरफ से फोर लेन हो गई है।

कानपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने कृषि विज्ञान केंद्रों को प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन का आधार बनाया है। अनेक किसान और संस्थाएं इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ समेत प्रदेश के 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ समेत प्रदेश के 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज गाजीपुर में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 का प्रथम चरण निर्धारित तिथि 20 जून के पूर्व पूरा हो गया है। 710,230 मकानों की गणना हुई है और इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कल आगरा में पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित करेगा। कार्यक्रम की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए आज लखनऊ में संभव अभियान के 6वें चरण की शुरुआत प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। देवरिया में मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा एवं उप महानिरीक्षक एस चिन्नप्पा ने मुहर्रम को लेकर बैठक की और शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में योग सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन आयुष विभाग गौतम बुद्ध नगर द्वारा ओखला पक्षी विहार, विभिन्न राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और आसपास के क्षेत्रों में योगाभ्यास एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: राइट, तो भाई 7:06 का वक्त और ये हो गए 30 सेकेंड। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपका अपना, जिसका नाम है हेलो FM, और आज मोना है आपके साथ। तो भाई जितने एक्साइटेड आप होते हैं ना बात करने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि क्या कुछ नई बातचीत होगी आपके साथ, कौन होगा हमारे साथ और वो कितने एक्साइटेड होंगे, और कौन उनमें से हमारे ऐसे भी लिसनर्स होंगे जो कहेंगे भाई आज कॉल पहली बार लगी है। अच्छा, हमेशा ही अच्छा लगता है जब आप बात करते हो, और उसके अलावा बड़े ही इंटरेस्टिंग से जो सॉन्ग्स होते हैं और हर एरा के सॉन्ग्स होते हैं वो आप हमसे करते हैं डेडिकेट। तो अगर आप भी चाहते हैं हमसे बात करना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन लाइन नंबर्स पे, जो कि है 0522-223-8845, और हमारा दूसरा नंबर है 0522-223-8852। इन दो नंबर्स पे आप कर सकते हैं हमें कॉल। फिलहाल कुछ जो कॉलर्स हैं ना वो ऑलरेडी कॉल करने लगे क्योंकि पास नंबर्स

0: सेव रहता है। बड़े ही स्मार्ट है हमारे लिसनर्स। तो चलिए आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो जी, गुड इवनिंग, किससे बात हो रही है?
1: मैं इमरान सारी बात कर रही हूँ, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से।
0: कहाँ चली गई थी इमरान आप कॉल करके?
1: कहीं नहीं मैम, मैं तो हेलो हेलो कह रही थी।
0: अच्छा, उस हेलो हेलो में और हमारे हेलो हेलो में कहीं गैप हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी
1: जी मैम।
0: चलिए और बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं?
0: बस बिल्कुल बढ़िया। और बताइए क्या चल रहा था?
1: गर्मी एंजॉय कर रहे हैं मैम, और क्या करेंगे।
0: अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना है कि कोई गर्मी भी एंजॉय करता है।
1: यस मैम, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं।
0: हाँ,
1: और आम खा रहे हैं।
0: अरे वाह, ये बात हुई भाई, गर्मी है और आम की बात ना करे तो कैसे हो सकता है ना।
1: यस मैम।
0: चलिए बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं आप?
1: मैम मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ ए फ्लाइंग जेट मूवी का, टूटा जो कभी तारा।
0: ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक। किसे सुनाना चाहती हैं?
1: मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी फुफी गोला गोकरण नाथ पे, साजिद अंसारी, आतिका अंसारी, सलामा अंसारी, फसीह अंसारी और अपनी सिस्टर हुस्बा अंसारी और अपनी अम्मी नासिर अंसारी।
0: ऑल राइट, चलिए ठीक है, आपसे कुछ देर में आपका ये जो सॉन्ग है वो मैं करूंगी प्ले, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके
1: ओके मैम।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए भाई, ये इमरा से तो हमने कर ली बात और उन्होंने कौन सा गाना सुनना ये भी हमें बता दिया है। अब जानते हैं कौन से हमारे कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो जी, थोड़ा सा तेज बोलिए।
2: हाँ जी, मैं मिंटू चंदेल जलंधर से।
0: मिंटू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत।
0: कैसे हैं सर आप?
2: जी बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है।
0: जी क्या हो रहा था?
2: बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, वो आपकी आवाज से और एक्साइटमेंट से ही पता चल रहा।
2: जी देखिए ना मोना जी, ऐसा है ना
0: जी,
2: मेरी आज 20-25 दिन के बाद कॉल लगी है।
0: अरे वाह।
2: और पहले हुई थी सादा भाई से हुई थी बात। उस टाइम मेरी पहली बार कॉल लगी थी।
0: अच्छा जी, और अब ये सिलसिला कंटिन्यू हो गया।
2: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गैप तो इतना डालना ही चाहिए ना
0: जी। ये बात तो सही है,
2: जो आपके इधर भी आपके जहाँ भी जो लोकल कॉलर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा सवर करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए और कुछ दिन का गैप पहले तो बहुत अच्छा लगेगा ना।
0: वैसे यही तो नहीं है, सब्र ही तो नहीं है।
2: आपने मेरे को सीधा ऑन एयर ले लिया।
0: सीधे ऑन एयर ले लिया, मैं इधर उधर तो काम नहीं करती, सीधे ऑन एयर।
2: और मैं अपना परिचय द्वारा देना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
2: बीपीओ कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर से मिंटू चंदेल जी।
0: जी चलिए बहुत बहुत तो फिर से स्वागत है, अगर आपने फिर से नाम बता दिया। बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
2: मोना जी ना, कल प्रोग्राम जो पेश कर रहे थे, थोड़ी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा
0: जी।
2: जैसे आपने अभी कॉल लिया है ना, शुरू में ही चलो कॉल ले लिया है ना, सेकंड कॉल लगी। कल जो प्रोग्राम तरन्नुम जी ने पेश किया था बिल्कुल बेकार प्रोग्राम था, उन्होंने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की।
0: मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू रहा हो। देखिए कभी कभी आप बिहाइंड द क्या काम चल रहा है ना, बिहाइंड द सीन्स जैसे हम कहते हैं ना, हमें नहीं पता होता है। तो वैसे यहाँ पे इतनी सारी टेक्निकल चीजें, हो सकता है कोई फोन लाइन में इशू हो गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इसलिए कॉल रिसीव नहीं, वरना हार्डली ही कभी हमारे आरजीज ऐसा करते, ऐसा होता नहीं है।
2: और मैं ना एफएम लखनऊ के बारे में दो लाइनें सुनाना चाहूंगा, एक दोस्ती के बारे में।
0: जी जी बिल्कुल।
2: वादा है आपकी दोस्ती खास रहेगी, यादों की झलक दिल के पास रहेगी, नहीं भूलेंगे आपको और आपकी दोस्ती को
0: जी,
2: मकसम जब तक इस दिल में आखिरी सांस रहेगी।
0: हाँ हाँ हाँ, धर्मेंद्र जी के फैन है आप। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, प्लीज बताइए आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे।
2: हाँ जी आप सुना दिए मोना जी, गाना है रफ साहब की आवाज में, कोई भी गाना प्ले कर दीजिए बहुत अच्छा लगेगा, और आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी का ही कोई भी ट्रैक ना?
2: हाँ जी कोई भी सुना दीजिए।
0: चलिए ठीक है, कोई एक बेहतरीन सा ट्रैक आपसे कुछ देर में प्ले करूंगी, आप बस हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। ओके
2: ठीक है जी।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो हेलो

0: हेलो। हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: मैम मेरा नाम है गुलाब
0: गुलाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप
1: जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ
0: जी। कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं?
1: मैम, ग्राम रामपुर राय पोस्ट हैदराबाद जिला उन्नाव से।
0: उन्नाव से जी। तो कैसा है वहाँ का माहौल, या ये कहें कि वेदर?
1: मैम बहुत ही अच्छा है इस वक्त, तो थोड़ा मतलब कि राहत मिली है, मतलब कि इस वक्त
0: जी
1: तो मुझे ठंडा मौसम है थोड़ा।
0: वैसे कोई लखनऊ से कोसों दूरी नहीं, पड़ोसी हैं हमारे, लेकिन मुझे लगता है शायद कहीं एक उम्मीद हो कि भाई यहाँ गर्मी नहीं हो रही।
1: जी मैम
0: जी बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मुझे सॉन्ग सुनना है किक मूवी का, ये मैनू प्यार ना मिले तो मर जावा।
0: अरे बाप रे, क्या ऐसी बातें हैं?
1: नहीं बस मैम, बस सुनना है, अच्छा लगता है सॉन्ग
0: अच्छा, बस इतनी सी बात है ना कि बस अच्छा
1: बस
0: लगता है।
1: मैम।
0: चलिए डेफिनेटली ये ट्रैक मैं प्ले करूंगी अब से कुछ देर में। आप बताइए किसे डेडिकेट करना चाहते हैं ये सॉन्ग?
1: मैम आपको
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और मैम मेरी दो सिस्टर सुनती हैं, सपना और संध्या, इन
0: जी
1: दोनों
0: जी
1: को।
0: चलिए अब से कुछ देर में ये ट्रैक मैं प्ले करूंगी, आप बस हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा। ओके
1: जी मैम।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो भाई बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनकी कॉल मैंने ले ली, और अब वक्त हो चला है कि गाने भी तो प्ले करें, कब तक बात करते रहेंगे, है ना? तो चलिए इमरा जी का जो ये ट्रैक उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था फ्रॉम द मूवी अ फ्लाइंग जेट, वो मैंने कर दिया है प्ले, इसे करिए आप एंजॉय।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: ऑल राइट, तो 7:17 हो 45 सेकेंड हो रहे हैं. प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना हेलो एफएम. बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक जिसमें है धर्मेंद्र जी. जी हाँ, धर्मेंद्र जी का एक ट्रैक हमसे रिक्वेस्ट की थी मिंटू जी ने, जो मैंने प्ले कर दी है. और आप जानते हैं कि अब से कुछ देर में यानी कि 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार, और उसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा जुड़ेंगे. इसीलिए गुलाब जी, आप ये मत सोचिएगा कि आपका सॉन्ग नहीं प्ले होगा. हम प्रादेशिक के बाद दोबारा जुड़ेंगे और आपका सॉन्ग प्ले करेंगे. फिलहाल मिंटू जी, ये सॉन्ग करिए आप एंजॉय.

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए

0: दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर लखनऊ उन्नाव हरदोई सीतापुर बाराबंकी रायबरेली ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
0: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ. शैलेंद्र तोमर

0: ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज के भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था, प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंत प्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया, समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अब सुनिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के डेली अपडेट्स।
4: पॉइंट विद अ 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट पोर्चुगल इन ग्रुप के, न्यूकास्ट यूनाइटेड स्ट्राइकर योआन विसा इक्वलाइज्ड फॉर द अफ्रीकन साइड आफ्टर PSG's जाओ नेवेस हैड गिवन पोर्चुगल द लीड। कोलंबिया टॉप दैट ग्रुप आफ्टर अ 3-1 विन ओवर टूर्नामेंट डेब्यूटेंट्स उज़्बेकिस्तान इन मेक्सिको सिटी। बायर्न म्यूनिख फॉरवर्ड लुइस डियाज एंड क्रिस्टल पैलेस डिफेंडर डैनियल मुन्योज अमंग द गोल स्कोरर्स फॉर कोलंबिया। टू ऑफ द को-होस्ट्स रिटर्न टू एक्शन लेटर। कनाडा फेस कतर इन ग्रुप बी इन वैंकूवर। Jesse Marsh's side drew 1-1 with Bosnia and Herzegovina in their first game of the tournament last week. Elsewhere, Mexico will look to make it 2 wins out of 2 when they face South Korea in Guadalajara. For more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
5: World Football Update from the BBC.

ऑलराइट, तो 7:32 का वक्त हो रहा है। अभी आपने सुना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के डेली अपडेट्स, और उसके पहले भाई आपने सुना प्रादेशिक समाचार, और उसके पहले हम कनेक्टेड थे प्रोग्राम हेलो एफएम में। तो लीजिए दोबारा शुरू हो गया, हम दोबारा कनेक्ट हो गए और जुड़ेंगे।

0: हमसे तो जाएंगे कहाँ। सो आज मोना है आपके साथ एज यू नो, और बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं ना वो हमें बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हें इंतजार नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ऐसे लिसनर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई फोन नंबर कोई बता दे, शायद उनके पास नहीं हो। तो चलिए जल्दी से आप नंबर बताते हैं, उसे नोट करिए, और आप भी अगर चाहें तो हमसे कर सकते हैं बात। नंबर है 0522-223-8845। हमारा दूसरा मैजिकल नंबर है 0522-223-8852। सो ये वो दो मैजिकल नंबर्स है जहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे कर सकते हैं बहुत सारी बातें, सुन सकते हैं अपना फेवरेट सॉन्ग और जिसे भी चाहे उसे कर सकते हैं डेडिकेट। तो चलिए अब लेते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल और जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, थोड़ा सा तेज बोलिए।
1: हेलो, नमस्कार मैम, कैसी हो? मोना दीदी, मैं
0: नमस्ते बात कर रही हूँ। राशनी जी बहुत बहुत स्वागत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात हो रही ना तो मैं ज्यादा ही खुश हो गई क्योंकि 6 महीने पहले हुई थी आपसे बात।
0: हाय दया, 6 महीने हो गए। देखा मैंने कह भी दिया,
1: बहुत ज्यादा ही खिदा हूँ आपकी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी, और आपको सुनना ना सबसे हाँ। ज्यादा अच्छा लगता है, हमेशा आपका इंतजार रहता है।
0: हाय हाय हाय, देखिए आप लोग को इंतजार रहता है इसलिए मैं फटाक से चली आती हूँ। हालांकि ये जो फटाक वाला टाइम है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है,
1: आपका बहुत ज्यादा ही लेट हो जाता है। हाँ। इंतजार करते करते कितना ही करें,
0: अब क्या ही करूँ क्या ही आपको बताऊँ। आप बस अर्जी लगाए रहिए कि भाई हमको प्रोग्राम जल्दी दे दे, आपसे जल्दी मिलवा दे।
1: तो
0: चलिए उम्मीद है कभी ना कभी सुन लेंगे। चलिए बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: गाना मोहब्बत का सुना दीजिएगा, चलते चलते। वैसे मेरे गाने से कोई लेना देने नहीं, सिर्फ आपसे बात करनी थी।
0: हाय हाय, मतलब गाना मैंने छोड़ा, साइड में बातें करी जाए। और कहीं अगर दो लड़कियों ने बात करनी शुरू कर दी ना तो फिर हमारे जितने बाकी लिसनर्स हैं ना वो बेचारे वेट करते ही रह जाएंगे।
1: हमारी बबीता जी है ना, बबीता राव
0: जी जी जी,
1: लखनऊ से
0: जी,
1: वो और मैं, हम दोनों ने आज तय कर रखा था कि आज मोना दीदी से बात होगी, चाहे तेरी लगे कॉल या मेरी लगे कॉल।
0: अरे वाह, तो अब तो फिर शाम में चुगली होगी बहुत बढ़िया मजे से।
1: वो तो बाद में कर लेते हैं।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छा है, किसी को डेडिकेट करना चाहती हो तो आप नाम ले सकते हैं।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट करेंगे,
0: थैंक यू,
1: और हमारी बबीता जी
0: जी,
1: नीलू दीदी, गुलाबसा दीदी, महेंद्र भैया, यासिर भैया, और भी जितने लिसनर हमारे सुन रहे हैं, और ये मोहम्मद ताली भैया, मतलब जितने भी हैं सारे हमारे एफएम के जितने भी हैं, सब हमारे भाई बहन सब जो डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए
1: हमारा ऐसा रिश्ता होगा कि सबसे हमारी मतलब बातचीत होती रहती है।
0: अरे वाह, चलिए बहुत बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जब आप जैसे लिसनर्स हमसे बात करते हैं ना तो जो हमारी एनर्जी ना बिल्कुल डबल हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दीदी कितने खुश हैं हम।
0: चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव। ओके बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।
0: अच्छा कितना अच्छा लगता है ना जब इन्हें हम लिसनर्स ना कह के हमारे दोस्त कहते हैं, क्योंकि हमसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं होते हैं, कभी देखा नहीं होता, फिर भी प्यार तो पूछिए मत बेशुमार होता है। चलिए फिलहाल कुछ देर में रोशनी का जो फेवरेट ट्रैक है वो मैं करूँगी प्ले, और फिलहाल जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है, किससे बात हो रही है हमारी?
2: शमा परवीन, जिला सीतापुर, पचैनापुर मस्जिद के पास से बात कर रहे हैं। और बताइए मैम आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ शमा जी, आप बताइए आप कैसी हैं? हेलो हेलो शमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, ओ लग रहा है कनेक्शन में कोई हो गई है प्रॉब्लम। हेलो चलिए शमा जी से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, अभी जानते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो
3: सलाम अलैकुम
0: जी, नमस्कार, किससे बात हो रही है?
3: साहिबा अंसारी, मेहवागंज लखीमपुर खीरी से बोल रहे।
0: साहिबा बहुत बहुत स्वागत है, कितना ऐसे धीरे धीरे बोल के आप मुस्कुरा रही हैं।
3: नहीं मैम फोन लगा रहे थे, हमने सोचा कि हमारी कॉल नहीं उठेगी।
0: हाँ और फाइनली उठ गई,
3: हमने देखा नहीं आपने कॉल उठा ली हमारी।
0: अरे वाह, मजा आई
3: जी।
0: अच्छा अचानक से ऐसे सरप्राइजेस मिल जाते तो अच्छा लगता है ना
3: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा है, बस ऐसे
3: तो आप बहुत अच्छे।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बस ऐसे ही खुश रहिए।
3: आपसे हमारे 3 महीने बाद बात हो रही है।
0: 3 महीने? अच्छा अभी 6 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, अभी एक दोस्त थे उनकी पहली बार हुई, अभी देखते हैं क्या क्या होता है आगे।

0: देखिएगा
1: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए। बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं आप? ओके, तो किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: मैम सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: थैंक यू।
0: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, यहाँ के लहन मंसूरी भाई समाप्ति है, लगता है महक अंसारी है, साजिया अंसारी है, रिंकी पिंकी है, रोशनी दीदी है, जावेद अख्तर भाई है, सत्यम कुमार भाई है, आसिफ अंसारी।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन सभी लोगों को डेडिकेट किया। हाँ जी
0: मैम, थोड़ी सी हमारी छोटी बहन से बात कर लीजिए
1: जी। कराइए। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल अच्छी हूँ। छोटी बहन, छोटी बहन का नाम क्या है?
0: मेरा नाम
1: शाजिया। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी
2: हम भी आपसे पहली बार बात कर रहे हैं।
1: अच्छा पहली बार बात कर रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट टाइम आप फोन करिएगा तो आप पहले बात करिएगा, ठीक है ना?
2: लगता ही नहीं, अगर लगता है तो कोई उठाता ही नहीं है।
1: देखिए अगर उठाते नहीं तो हो सकता है कि हम दूसरी लाइन पे जो दो नंबर्स रहते हैं ना, तो दूसरी कॉल पे हम बात कर रहे होते हैं।
2: उठाते है, देखो पहली बार कॉल लगता नहीं है, ठीक है, फिर अगर लगता है तो उठाते हैं, अगर उठा भी लेते हैं तो काट देते हैं।
1: कभी कभी हो जाता है, कोई टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। चलिए कोशिश रहेगी मूरी की जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करें तो हमारी आपकी बात जरूर हो, ठीक है?
2: और दीदी की कॉल अक्सर लगती रहती है
1: हमारी। चलिए आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं प्रे करूंगी कि आपकी कॉल लग जाए, इसके लिए भी मैं प्रे कर लूंगी। चलिए थैंक यू सो मच। हेलो हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी, गुड इवनिंग, किससे बात हो रही है?
3: मैम रजनीश बोल रहे लखनऊ से।
1: जी रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी मैम थैंक यू
1: जी। और बताइए क्या चल रहा था?
3: मैम बस आपका कार्यक्रम सुन रहे थे, कॉल लगा रहे थे और लग भी गई। हम फिल्म है मैम धर्मवीर,
1: हाँ,
3: और सॉन्ग है हम बंजारन की बात, ऐसे कुछ करके गाना है।
1: अच्छा मतलब गाना भी नहीं पता, बस सुनना है?
3: नहीं मैम गाना हाँ। मुझे अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा लगता है। चलिए किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
3: मैम जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए है।
1: सभी के
3: अभी
1: लिए
3: ऑन ईयर है मैम कि ऑफ ईयर है?
1: आप ऑन ईयर हैं, इस वक्त आपको हर कोई सुन रहा है। और आपने जो
3: जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो गाना कहा आपसे कुछ देर में वो प्ले करूंगी, आप बस हमारे साथ जुड़े रहेगा। ओके
3: ठीक है मैम।
1: ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो 7:40 का वक्त, बहुत सारे कॉल्स मैंने ले ली, बहुत सारी बातें कर ली है। और गुलाब जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी किक मूवी का ये ट्रैक जो उन्हें बहुत पसंद है, तो मैंने कर दिया है प्ले। इसे करिए आप एंजॉय।

ये कंडीशन ना आए, हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका प्यार मिल जाए। फिलहाल रोशनी जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी मोहब्बतें मूवी का ये ट्रैक जो मैंने कर दिया है प्ले, इसे करिए आप इंजॉय, और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और लिसनर्स से हम करेंगे बात। फिलहाल करते रहिए इंजॉय अपने 100.7 FM रेनबो के साथ। मुना है आज आपके साथ।

जिनको प्यार हुआ होगा वही ये जान सकते हैं कि चलते चलते क्यों रुक जाते हैं, बैठे बैठे क्यों खो जाते हैं, या भूख या प्यास क्यों मिट जाती है, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप हमें कॉल करते हैं और आपका जो प्यार हम पे एकदम भर भर के आता है, आप कहें कि भर भर के आप जो प्यार देते हैं ना, उससे हम ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो इट्स 7:46 इन माई स्टूडियो क्लॉक, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना हेलो FM, जहाँ हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हुए थे और आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी तो हम बैक टू बैक गाने ही प्ले करेंगे, वरना बातें करते रहेंगे तो गाने कहाँ जाएंगे। और ये जो ट्रैक आप धीरे धीरे पीछे सुन रहे हैं, इसकी रिक्वेस्ट हमसे की थी साहिबा जी ने, जो मैंने कर दी प्ले, इसे करिए आप इन्जॉय, और लौट कर आएंगे तो कुछ और लिसनर्स से करेंगे बातें। कहीं जाए नहीं, स्टे कनेक्टेड, स्टे म्यूजिकल विद 100.7 FM।

0: ऑल राइट, तो भाई ये तो छुपे रुस्तम निकले और ये सॉन्ग साहिबा ने हमसे की थी रिक्वेस्ट, जो मैंने प्ले कर दिया है। अब प्रोग्राम में टाइम बहुत कम बचा है और कई सारे जो दोस्त हैं ना वो हमारे साथ मेल के जरिए भी जुड़े हैं और उनका मेल मैं ज़रूर करूँगी शामिल, भले ही नाम लूँ लेकिन शामिल ज़रूर करूँगी। फिलहाल जो कॉल पर हमारे लिसनर्स जो वेट कर रहे हैं, आइए उनकी कॉल रिसीव करते हो, जानते कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम सावली गौतम ग्राम दुगौर बीकेटी बस्ती का तालाब।
0: अच्छा जी, बस यही अपने पड़ोस से ही कॉल आ गई।
1: यस मैम,
0: कैसी हैं आप?
1: हम ठीक है मैम, आप कैसी हैं?
0: बस बिल्कुल बढ़िया। और बताइए क्या हो रहा था?
1: हम कुछ नहीं, खाना खा रहे थे।
0: अकेले अकेले? हाय,
1: परिवार में सभी लोग।
0: और इस परिवार में हमें नहीं याद किया?
1: नहीं मैम, आपको भी याद किया।
0: अरे हमारे कहने पे याद किया तो क्या किया। चलिए कोई बात नहीं, आप खाना एंजॉय करिए, हम तो आपकी बातें ही एंजॉय कर रहे हैं। बताइए आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं?
1: धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: आए है।
1: यही सॉन्ग।
0: किसको डेडिकेट करेंगी?
1: मैम सबसे पहले आपको।
0: अच्छा जी, मैं अब मैं नहीं निकलूंगी।
1: और सभी सुनने वालों के तो।
0: चलिए आपसे कुछ देर में आपका ये सॉन्ग मैं जरूर प्ले करूंगी, आप बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड इवनिंग, किससे बात हो रही है हमारी? हाँ जी, थोड़ा सा लाउड बोलिए।
1: हेलो,
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी? मैम थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अच्छा जी, लखीमपुर खीरी से। क्या नाम है आपका?
1: पार्वती।
0: पार्वती?
1: यस।
0: ऑल राइट पार्वती, तो और कैसी हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छी हूँ।
0: बहुत अच्छी हैं, कितनी अच्छी?
1: बहुत अच्छी। पहली बार कॉल लगी मैम, बहुत हो रही है।
0: अरे वाह, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, और खास करके जब कोई लिसनर हमसे पहली बार बात करते हैं ना तो हमें भी बड़ी मजा आती है। तो अच्छा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देर ट्राई कर रही थी, लग नहीं रहा
0: था। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा सॉन्ग सुनना चाहती हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, आज कोई अच्छा सा एक सॉन्ग जो हमारे लिसनर्स हमसे रिक्वेस्ट करें, आप उसे ही इंजॉय करिएगा और नेक्स्ट टाइम हमें जरूर कॉल करिएगा, ठीक है? किसी का नाम लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और फिर जब नेक्स्ट टाइम सुनेंगे तो आप जो चाहिए वो गाना हमसे रिक्वेस्ट करेगा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी,
0: भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। मतलब प्रोग्राम खत्म होते होते साक्षात भगवान आ गए हमारे प्रोग्राम में।
1: जी दीदी, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है। दीदी, मैंने बीच में क्या है कॉल लगाना बंद कर दिया था, लेकिन आज आप आई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना लगाया जाए।
0: चलिए, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, और आपने कॉल लगाई और आपकी कॉल लग भी गई।
1: हाँ दीदी, लग भी गया। दीदी, दो बार और भी लग गया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ था।
0: हाँ, तो हो सकता है दूसरी लाइन पे हम बात कर रहे होंगे। आप बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं।
1: दीदी, आपकी पसंद का कोई सा सुना दीजिए, मेरा तो कॉल शामिल होगा, इससे मैं खुश हो गया दीदी।
0: अरे वाह, चलिए भाई, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें कॉल की, हमसे कनेक्ट किया। और बस हमारे लिसनर्स अच्छे अच्छे गाने हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसे करिए एंजॉय। किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, मोनू राजवंशी जी हैं जी। और हमारे एक मित्र और हैं, वो उनका नाम तो मैं भूल गया, सभी को डेलीकेट।
0: दोस्तों का ही नाम भूल गए।
1: कभी कभी भूल जाता
0: हूं। चलिए कोई बात नहीं, आपके सारे दोस्तों के लिए जो भी आप चाहें वो सॉन्ग आप हमसे डेडिकेट करवा लीजिएगा नेक्स्ट टाइम आप जब भी कॉल करिएगा, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो ये ट्रैक रजनीश जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी धर्मवीर से, जो मैंने कर दिया है प्ले, इसे करिए आप एंजॉय। प्रोग्राम में टाइम बहुत कम है, कोशिश रहेगी कि कुछ मिस तो ज़रूर शामिल कर लें।

देखिए भाई, नफरत की तो कोई जगह नहीं और ना ही होनी चाहिए। मुझे लगता है छोटी सी जिंदगी है, उसमें क्या ही किसी से नफरत करना, क्या ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना। बस भर भर के प्यार कीजिए, और जब वो शख्स नहीं रहेगा या आप कभी नहीं रहेंगे, तो बस यही प्यार है जो बीच में रहेगा और लोगों को याद करेगा। इट्स 7:56 माय स्टूडियो क्लॉक। भाई ये प्रोग्राम हो चला है कि हम इसे वाइंड अप करें। मोना आपसे आज प्रोग्राम से टाटा बाबा का है, लेकिन इससे पहले हम जाए हमारे जो दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड है उनका नाम हम जरूर लेंगे। बाबू अंसारी देवकाली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारी कॉल आप लेती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तेज बहादुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा प्यार भरा नमस्ते ऐसा कहते हैं। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड इवनिंग मोना मैम, गुलफशा सिद्दीकी संजगला से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है आपको सुन के, थैंक यू सो मच। मोनू सेठ जी, मोना जी कैसे हैं आप? क्रिकेट खेलने गया था इसलिए बहुत देर से जुड़ा। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आप या तो क्रिकेट खेलने गए होते हैं या शॉप गए होते हैं या कहीं बिजी होते हैं, लेकिन मुझे याद रहता है। चलिए थैंक यू सो मच। एंड हम तो बहुत अच्छे हैं दीदी, आप बताइए कैसी हैं? बोली आपकी लगती मीठी मिश्री होती जैसी, मेरा नाम पता बता दीजिएगा। चल लीजिए हमने बता दिया, अमृता महौली, महौली सीतापुर से, इंद्र

वाले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके अलावा आशा, अवनीश, विनीश और गरिमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाने ज़बरदस्त बजा रही हैं, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, ये मोनू सेठ जी ने कहा है। कोमल तिवारी जी लिखती हैं, नमस्ते, आपका शो सुन रहे हैं, आपको भी नमस्कार। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ ज़िला सीतापुर से जुड़े हुए हैं, प्रस्तुत करने वाली मोना दीदी को गुड इवनिंग, साधक प्रणाम। और उसके अलावा राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामराज जी जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने तो गाने की भी रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन आई एम सॉरी भाई, हम इस प्रोग्राम में नहीं प्ले करते हैं गाने, आपको पता है हम सिर्फ सारे सॉन्ग्स अपने जो कॉलर्स हैं उनका लेते हैं। एंड बबीता राव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वेरी गुड इवनिंग टू यू टू स्वीट हार्ट, इन्होंने लिखा है, स्वीट हार्ट मोना जी आपको भी नमस्कार। एंड 4 बजे से ये सुन रही हैं, वैसे 4 बजे तो मैं आई नहीं थी, मैं तो 5 बजे आई थी। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। एंड बस इन्होंने मेल किया क्योंकि इनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, चलिए हमने आपकी कॉल ले ली। तो अब ये आज का जो लास्ट ट्रैक है, इसी के साथ मैं आपको यहीं पर ही छोड़ कर जा रही हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट हमसे हमारे लास्ट जो लिसनर थी उन्होंने की थी, जिनका नाम था भगवान जी। और हमारे साथ हैं आज अनामिका, जो आने वाले कुछ घंटे आपको करेंगी बहुत सारा एंटरटेन। तो अब मैं चलती हूँ, रखिए अपने बहुत सारा ख्याल और अपने अपनों का ख्याल। चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित वीवा टेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की और कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक एवं विकासगत आवश्यकताओं की गहन जानकारी होती है। ऐसे में उनके सुझावों एवं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शासन को शीघ्र कार्ययोजना प्रेषित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने तथा समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे।

इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए आज लखनऊ में संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत प्रदेश के महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की स्वास्थ्य और पोषण के प्रति प्रतिबद्धता को एक नई गति देना है। इस अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों को सम्मानित किया गया। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर संबल जिले की बहजोई में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला का राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच रहा है।

विभिन्न जनपदों को सम्मानित किया गया। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर संबल जिले की बहजोई में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला का राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
4: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
3: चांदनी सी छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: ती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

सच ही कहा है किसी ने कि तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ऐसा होता है ना कि अगर किसी अपने से मुलाकात की उम्मीद होती है तो उनसे मुलाकात के एहसास को ही महसूस करके ऐसा लगता है जैसे तपती जमीन पर अचानक से ठंडी फुहारें बरस पड़ी हों। ये दिल और इस दिल की सारी तमन्नाएं मचल उठती हैं और इस दिल के एहसास को जब गजलों की शक्लों सूरत में कागज पर उतारते हैं तो जैसे हमारे दिल की सूरत हाल का आबशार हो जाता है। एहसासों के इसी आबशार में आज आप हैं अपनी रात की हमसफर अनामिका के साथ, सिर्फ और सिर्फ

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

कि जो लफ्जों में बयां ना हो सके वो इश्क, जो जुबां से पहले आंखों में उतर जाए वो इश्क, जो दिल की धड़कनें तेज कर दे लेकिन डर ना लगे वो इश्क, जो तुझे किसी से ना हो सिर्फ मुझसे हो जाए वो इश्क। और अगर इनमें से इश्क कुछ भी नहीं तो मुझे बेवजह जो हो गया है तुझसे वो इश्क है। यकीन मानिए साहब, एक ऐसा साथ मिल जाए जो आपके साथ बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, निस्वार्थ भावना से जिंदगी की इन दुश्वार ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना चाहे, आपके साथ दौड़ना चाहे, आपके सपनों को उस खुले आसमान में गोते लगाते हुए देखना चाहे, तो ये जिंदगी का सफर बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, मिल जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना।

कहते हैं ना कि इस दिल को अक्सर वही लोग जिंदगी में चाहिए होते हैं जो हमारे लिए लगभग नामुमकिन होते हैं, जिन्हें हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कदर नहीं है जिन्हें हमारी। लेकिन दिल क्या करे, ये दिल मजबूर हो जाता है मोहब्बत में, और इस दिल को अक्सर वही लोग चाहिए होते हैं जिंदगी में जो बिल्कुल नामुमकिन होते हैं। इसी पर मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है कि है रवा उस राह पर जिसकी कोई मंजिल ना हो, कि है रवा उस राह पर जिसकी

कोई मंजिल न हो, जुस्तजू करते हैं उसकी जो हमें हासिल न हो। चाहता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो।

मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना, ना उदास कर। तू खिजां का फूल है, मुस्कुरा। जो गुजर गया सो गुजर गया। जी हाँ, बीती बातों को सोच के या बीते किसी गम के बारे में सोच के उदास होना किसी भी समस्या का हल कभी नहीं हो सकता। और बिखरी हुई पुरानी यादें सिर्फ और सिर्फ आपके दिलो दिमाग को जद्दोजहद में डाल देती हैं। इसीलिए अपने आज में खुश रहने वाला इंसान जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकता, कभी दुखी नहीं रह सकता। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अपने आज में जीना सीख लीजिए। देखिए, एक बार फिर से जिंदगी खुशगवार लगने लगेगी।

रात के गहरे सन्नाटे के बीच बहुत खामोशी में बहुत तन्हाई में बहजात का ये शेर अक्सर याद आता है कि कहाँ हो तुम चले आओ। मोहब्बत का तकाजा है गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है।

8:43 और घड़ी की सुइयां मुझे ये इशारा कर रही हैं कि फिलहाल आबशार गजलों की आबशार के आप मेरा नाम काका गजलों की आबशार से जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन आपको अभी कहीं नहीं जाना है क्योंकि एक न्यूज़ ब्रेक के बाद 9 बजे आपके फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ एक बार हम फिर मिलेंगे। तो जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड 200.7 FM धड़कन लखनऊ की। बस 15 मिनट में हम फिर से एक बार आपसे मुलाकात करेंगे बहुत सारी बातों के साथ, एक से एक खूबसूरत गानों के साथ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक

0: का विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।

0: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर

24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: रात के खामोश पहर में

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

हम बताते हैं कब तक। जी हाँ, रात के 10 बजे तक, और आपके इस फेवरेट प्रोग्राम जो आपको बिल्कुल 10 बजे तक बैठने नहीं देगा, लगातार थिरकने पे मजबूर करता रहेगा, आपके फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ आज हाजिर हूँ मैं अनामिका, कहाँ सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पे, धड़कन लखनऊ की। तो थिरकते रहिए, डांस वांस करते रहिए और कैलोरी बर्न करते रहिए।

हाँ जी, 9:06:55 और आ गए हम। जी हाँ, आ गई अनामिका आपके साथ रखने के लिए। जी हाँ, किस्म कहा, केवल और केवल यानी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम में, जो सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो पे, जो बन चुका है धड़कन लखनऊ की। तो भाई, उन्होंने पूछा था कब तलक, और आप भी सोच रहे होंगे, सोच क्यों रहे होंगे, आप तो डेली प्रोग्राम सुनते हैं, और 9 से 10 के बीच थिरकना ये तो होता ही होता है। तो इस क्रम को हम आज भी बिल्कुल जारी रखेंगे इसी क्रम में। और भाई, बातें होंगी बहुत सारी, क्योंकि मेल्स तो आना शुरू हो गए और बातें तो हमारी वैसे भी नहीं खत्म होती, और हम हैं आज आपके साथ आपकी रात की हम सफर अनामिका। तो बातें भी होंगी, मुलाकात हो चुकी है, और खुशी सबसे ज्यादा इस बात की है कि हम आ चुके हैं आपको एक बार फिर से खूब थिरकाने, खूब थिरके 9 से 10 अपने फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम में। और इसी के साथ ही साथ एक बात आपको बताते चलते हैं कि अगर दिल में छुपी हुई है कोई बात जो कहना चाहते हैं आप, तो लिख डालिए हमें कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे। जी हाँ, इस मेल आईडी के थ्रू आप हमसे तुरंत जुड़ जाएंगे, जहाँ हम पढ़ेंगे आपका मेल और आपकी खूबसूरत बातें, और गाने होंगे एक से बढ़ के एक। और जैसा कि वादा है कि जब तलक हम हैं तब तक आपका थिरकना बंद नहीं होगा। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, और ये वादा ऐसे पूरा होने जा रहा है कि आ गई है ठुमकेश्वरी। और एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलते हैं कि अगर दिल में है कोई बात, तो लिख डालिए आप कहाँ, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com के थ्रू।

हाँ जी, 9:14 और 36 सेकंड हो रहे हैं और इस प्रोग्राम के दौरान टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। ये थिरकते हुए, गाने सुनते हुए और अपनी बातें कहते हुए और साथ ही साथ आपकी बातें सुनते हुए, क्या मतलब बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी टाइम बीतता है, क्या कहते हैं। हाँ जी, तो अब बात करने के लिए कई लोगों को पता है कि बात हम कैसे आपस में करेंगे, कैसे माइक इस पार और उस पार होते हुए भी एक दूसरे से हम रूबरू हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिन्हें नहीं पता है उन्हें एक बार और बताते हुए चलती हूँ कि आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwanilucknow@gmail.com के थ्रू। जी हाँ, इस मेल आईडी पे आप हमें कहेंगे अपने दिल की बात, हम सुनेंगे और बिल्कुल यहाँ से बैठ के हम रूबरू हो सकते हैं। और बहरहाल अभी दलजीत को सुन के भाई मजा आ जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है माइंड कैसा भी हो, माइंडसेट आपका कैसा भी हो, बिल्कुल खुशनुमा खुशगवार हो जाता है सब कुछ, क्या कहते हैं। और अब बारी है कुछ ऐसे गानों की जिसे सुन के आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बस एक ही ख्याल आएगा कि भाई पैकिंग नई लेकिन स्वाद वही। लेकिन इन गानों के बारे में बात करने से पहले और इन पे थिरकने से पहले चलिए चलते हैं, कुछ मेल्स ले लेते हैं जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें इतनी मोहब्बत के साथ इतने खूबसूरत से मेल करते हैं, इतने खूबसूरत से मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो भाई पहले लेते हैं आपके मेल्स। और सुल्तान साहब ने आबशार के दौरान ही मेल किया था और कहते हैं बहुत दिन के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली। और भाई मैं बहुत बढ़िया, सुल्तान साहब आप कैसे हैं, और बहुत सारी तारीफ के साथ, प्रोग्राम की बहुत सारी तारीफ के साथ कहते हैं आप शार भी, इनको बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम की बहुत सारी तारीफ के साथ। सुल्तान साहब थैंक यू सो मच आपके इतने सुंदर से मेल के लिए, तो खूबसूरत से मेल के लिए। और आप हमें लिखते हैं बरेली से। इसी के साथ ही साथ मोनू जी आपने लिखा है भाई कि गजलों की महफिल खूबसूरत सजा दिया मैडम जी, वैसे इतने दिनों बाद आई आप। तो मोनू जी आपसे बताते चलते हैं कि कुछ कुछ मजबूरियां होती हैं जिंदगी में, है ना। तो अब इसके बाद अब बारी है रामकृष्ण साहब की। और रामकृष्ण साहब की एक बहुत खास बात ये है ना कि ये हमें भारत के बाहर से यानी नेपाल से लिखते हैं। सोचिए अगर सीमा पार से कोई हमारे प्रोग्राम को इतनी मोहब्बत दे रहा है तो दिल क्यों ना हो घोटे गार्डन गार्डन। तो रामकृष्ण ढकाल साहब कहते हैं नमस्कार, रेनबो एफएम का लोकप्रिय प्रोग्राम पॉप टाइम के सभी सुनने वालों को और संचालिका नाविका जी को बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी गुड इवनिंग नमस्ते। बहुत दिन के बाद फिर आज आपको सुनने का अवसर मिला, प्रोग्राम बहुत सुंदर है और मैं हमेशा सुनता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी सुनने को मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल रामकृष्ण साहब आपका थैंक यू सो मच आपको आपके इतने सुंदर से मेल के लिए। विजयपाल यादव जी कहते हैं कि आपको भी नमस्ते विजय जी, और कहते हैं प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आबशार भी आपको बहुत पसंद आया, गजलें बहुत अच्छी लगी आपको, थैंक यू सो मच, आपको थैंक यू इतनी मोहब्बत देने के लिए हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम को। आप हमें लिखते हैं जिला खीरी से। और इसी के साथ ही साथ रामराज जी कहते हैं गणेश भगवान के नाम के साथ कि इन्हें पॉप टाइम रायबरेली से कहते हैं कि इन्हें पॉप टाइम बहुत पसंद है, डेली सुनते अपनी पूरी फैमिली के साथ। और इनकी एक शिकायत भी है कि कल पॉप टाइम इनका मेल नहीं पढ़ा गया। तो रामराज जी सो सॉरी, कल के लिए अगर आपका मेल नहीं पढ़ा गया, आपको पता है बहुत सारे मेल्स आते हैं, कभी कभार हो जाता है इधर उधर मिसमैच हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्ती का ये तकाजा है कि नाराज बिल्कुल नहीं होना है। तो इन्जॉय करिए प्रोग्राम और बस थिरकते रहिए, आपसे हमारा ये वादा है कि पैकिंग नई और स्वाद वही के साथ हम आपको थिरकाते रहेंगे और बस एंटरटेन करते ही रहेंगे।

0: पीछे गंदे सॉन्ग यार।
1: डांस नहीं पागल है जनता ना बहुत
0: आवर्जन
1: क्या ट्रोल हो जाएंगे मत करो

9:24 और 4 सेकेंड और देख रहे हैं बंधु कितना मजा आ रहा है, पैकिंग नहीं लेकिन स्वाद वही। जी हाँ, और ये टैग लाइन मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, और ये टैग लाइन इसलिए कि पैकिंग मतलब गाने बिल्कुल नए तरीके से भले ही फिर से बनाए गए हो, फिर से फिल्माए गए हो, लेकिन टेस्ट वही है भाई, मतलब उन गानों का स्वाद जरा भी इधर उधर नहीं हुआ है, क्या कहते हैं। और ये गाने आज भी जनता जनार्दन को थिरकने पे मजबूर कर देते हैं, सही है ना बंधु। तो भाई टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है, और इस टाइम बीतने के साथ ही साथ आपकी ये जो मोहब्बत आई है मेल्स के थ्रू, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अगले मेल के, क्योंकि आज तो भाई मजा आ गया मेल्स देख के, इतने सारे मेल्स मतलब अभी इतने सारे मेल्स, मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ूंगी। तो हम दोस्त हैं, इस बात को भूलना नहीं है, और ये याद रखते हुए अगर मैं मैसेज आपके थोड़े छोटे छोटे छोटे छोटे कर दूं तो बुरा नहीं मानिएगा, और हम आपके मेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई अब लेंगे मेल अंसारी यशनूर जी का, और भाई आप, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, और आप कैसे हैं। तो थैंक यू इतनी सारी तारीफ करने के लिए। और आप हमें लिखते हैं जिला बरेली से शहरून नूर अंसारी, फरियाज अंसारी, शकील अहमद इदरिसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी हमें लिखते हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और कहते हैं कि हेलो एफएम रेनबो लखनऊ, पॉप टाइम प्रोग्राम के सारे गाने सुन के मूड रिफ्रेश हो जाता है। अरे मेरा भी होता है ऐसा, क्या मेरा भी होता है, हम भी आपके साथ ही साथ रखते हैं। और कहते हैं छत पर प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आया, और भाई और इन्होंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स का नाम लिया है जिन्हें हम बिल्कुल लेंगे, क्योंकि आप हमें इतनी मोहब्बत के साथ उतने प्यार से मेल कर रहे हैं। तो तन्वी तिवारी, प्रतिष्ठा दुबे, प्रतिमा दुबे, गोविंद दुबे, अरविंद दुबे, दीपा दुबे, श्याम कुमारी, और आप हमें लिखते हैं मिर्जापुर से। जी हाँ, और इसी के साथ ही साथ तालिब अंसारी साहब हमें कहते हैं, अनामिका अर्जय मैडम गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग, आप हमें लिखते हैं बाराबंकी से, और कहते हैं क्या धमाल प्रोग्राम तालिब साहब, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही विनीत कुमार जी हमें लिखते हैं सीतापुर से, और कहते हैं पॉप टाइम प्रोग्राम को प्रेजेंट करने वाले अनामिका जी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते और थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ही साथ आप हमें कहते हैं सीतापुर से सुरभि, सीतापुर से क्षमा परवीन अंसारी, सीतापुर से संतोष मौर्य, हरदोई से वीरपाल, पट्टी से संजय अतरौली, संडीला से ममता, हरदोई सीमा रावत, राजाजीपुरम, लखनऊ से रिंकी पिंकी, रायबरेली से, अच्छा आप सब हमें एक साथ सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत के लिए थैंक यू सो मच। इंद्रपाल मिश्रा जी हमें कहते हैं आपकी मीठी बोली के कारण प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, प्रेजेंटेशन क्या कमाल, गाने एक से बढ़के एक, थैंक यू सो मच इतनी हमें इज्जत अफजाई के लिए और इतनी सारी तारीफ के लिए, तो दिल कैसे ना हो गार्डन गार्डन, और अलग अलग तरीके के गुलाब खिल उठते हैं इसमें। और इसी के साथ ही साथ अब गुलफशा जी, कमल पांडे जी का मैसेज पढ़ते हैं, भाई हम लाइन से मैसेज पढ़ेंगे, हम सब दोस्त हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं। और इसी के साथ ही कमल पांडे जी हमें कहते हैं सीतापुर से, और मेल छोटा थोड़ा सा छोटा करूँगी कमल जी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कहते हैं 9 से 10 ये हाई बीट पे सुनने बजने वाले गाने सुनते हैं, खूब थिरकते अपनी फैमिली के साथ, और मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद, मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही साथ गुलफ्सा सिद्दीकी हमें कहती हैं हेलो गुड इवनिंग मैडम जी, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, आप प्रोग्राम कितना झकास करते, क्या बात है, आप भी मेल कितना झकास लिखती हैं, बहुत सुंदर सा मेल, और थोड़ा छोटा करूंगी और आपके फैमिली मेंबर्स का नाम ले लेती हूँ, साहिबा अंसारी, सानिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, हम सब सुन रहे हैं आपको, हम भी सुना रहे हैं आप सभी को, तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से इतने सुंदर से मेल के लिए। और ये जो मेल्स है ना भाई, ये मतलब एनर्जी हाई कर देते हैं बिल्कुल की भाई, तो बिल्कुल आपके एंटरटेनमेंट में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्या कहते हैं। तो इसी के साथ अगला गाना जो कर देगा एक बार फिर से आपको थिरकने पे मजबूर।

भाई 9:35 और 18 सेकेंड, और ऐसा लग रहा होगा ना बार बार कि अरे ये टाइम, मतलब मैं जब आती हूँ इतना ऐसा लगता है कि कितना टाइम फिर से बीत गया। 9 से 10 का ये जो टाइम है ना हमारा आपका साथ, और ये थिरकते हुए गाने, थिरकाते हुए गाने, मजा आ जाता है। क्या कहते बंधु, सच है ना? तो भाई चलिए ले लेते हैं अगले मेल को, क्योंकि इतने सारे मेल्स आए, इतनी सारी मोहब्बत आई है आपकी मेल्स के थ्रू कि अब हम इसे मिस नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी मेल्स लेते हैं, भले ही थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्ती का तकाजा है कि दोस्ती में ना गुस्सा। यस, किसी का मेल छूट ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मेल छोटा करने की। तो चलिए राजकमल यादव जी के मेल के साथ शुरू करते हैं। और राजकमल जी कहते हैं पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, और कहते हैं नमस्कार मैडम जी, मैं बहुत बढ़िया। राजकमल साहब आप कैसे हैं? कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी 4 साल की बेटी है बताते हैं आप, और कहते हैं हिमांशी, और वो डांस करने लग गई है, तो हिमांशी को बहुत सारा प्यार, और संगीता जी को भी नमस्ते। और भाई थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत से मेल के लिए। चलिए इसी के साथ ही अभिषेक जी, अभिषेक जी सीतापुर से हमें लिखते हैं और कहते हैं कि हेलो मैडम, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं और मेरी भाभी और भाभी की सिस्टर और भाभी की सिस्टर के बच्चे, मतलब एक साथ इन्होंने नहीं लिखा, मैं और मेरी भाभी और मेरी भाभी की सिस्टर और मेरे भाभी के बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि आप लोग आशियाना से रामेश्वरम डोसा से डोसा खा के कार में बैठ के प्रोग्राम सुनते हुए जा रहे हैं। तो एक बात बताइए अभिषेक जी, ये बात एक लाइन में लिखी जा सकती थी, इतना गैप दे दे के, इतना गैप दे दे के, खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत है किसी भी तरीके से लिखी जाती है, हर तरीके से खूबसूरत ही होती है। और प्रोग्राम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इसी के साथ ही थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमें मेल करने के लिए, इतनी सारी तारीफ के लिए। महेंद्र दीपन जी कहते हैं नमस्ते मैडम जी, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, और आप हमें लिखते हैं नागौर जिला राजस्थान से। तो देख रहे हैं आप सीमा पार से, हमें यूपी के बाहर से भी मैसेजेस आते हैं, तो कितनी खुशी होती है, और क्यों ना इस दिल के जंगल में सब कुछ बाग बाग हो जाए। और इसी के साथ ही महेंद्र जी हमें कहते हैं कि मुझे लगता है आपको मैं बहुत दिन के बाद सुन रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के इस दौर में वादा ये है कि रात 12 बजे तक आपकी रात की हम सफर अनामिका आपको बिल्कुल फुल ऑन एंटरटेन करेगी। तो भाई सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और इसी के साथ ही साथ मोनू जी दो मैसेज करते हैं, और दोनों मैसेजेस में खूब सारी तारीफ करते हैं कि भाई प्रोग्राम सुन के मजा आ गया, थैंक यू मोनू जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही जितेंद्र नामदेव जी हमें कहते हैं शहडोल MP से, ये लीजिए एक और मैसेज आ गया यूपी के बाहर से, तो बड़ी खुशी होती है भाई ये मैसेजेस देख के। और आपको भी गुड इवनिंग, नमस्ते, और थैंक यू सो मच इतनी तारीफ के लिए, थैंक यू आपके मेल के लिए। और इसी के साथ ही साथ आशीष शर्मा जी हमें कहाँ से लिखते हैं, माई नेम आशीष, हरदोई से मेल कर रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आहा बहुत तारीफ करते हैं हमारी कि हम जब आते हैं प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं, थैंक यू। और आपके मेल से भी हमारे प्रोग्राम में 8-16 ऐसे ही बस चांद बढ़ते ही जाते हैं आप लोगों के मेल से, और इतनी सारी तारीफ के लिए थैंक यू, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपके मेल के लिए। और इसी के साथ ही साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, बस बात वही कि वो जो मैंने कही थी

हाँ जी, 9:46 और 20 सेकेंड, 21 सेकेंड, 22 सेकेंड, मन करता है ना कि कोई ऐसी रस्सी मिल जाए कि समय की गले में बांध दे और रोक ले, कह दे रुक जा, अभी हम थिरक रहे हैं। लेकिन ये बातें ना सिर्फ खुश करने वाली होती हैं, लेकिन क्या है ना कि खुद को खुश करना अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए थिरकते रहिए और थिरक के भी आप बहुत खुश रहते हैं। तो वही, चलिए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। और बस वही बात हम भी कहते हैं कि सेम टाइम सेम जगह, उसी वक्त पे उसी जगह हम आपको आ जाते हैं थिरकाने। और एक बार फिर से आपको अपनी मेल आईडी बताते चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायत आती है कि भाई आपकी मेल आईडी हमको याद नहीं थी, पता नहीं थी, हम अपनी बात कैसे कहते। तो आपके लिए एक बार फिर से मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। 9:47 हो चुके हैं और हो अगर आपके दिल में कोई बात तो कह डालिए, आप सुनेंगे हम और बहुत सारी बातों के साथ थिरकते रहेंगे। चलिए इसी के साथ ही साथ अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो सोचेंगे बताइए मेल किया और इन्हें क्या ही अपने बात कहने से फुर्सत नहीं पाती है। तो एजुकेशन प्रिपेयर यानी सौरभ प्रजापति, इनके मेल आईडी का नाम था एजुकेशन प्रिपेयर। आप हमें लिखते हैं अमेठी गांव गौतमपुर से और कह रहे हैं कि लहजों की क्वीन, नमस्ते। आपको भी नमस्ते, क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम दिया है आपने, थैंक यू। और इसी के साथ ही आप लिखते हैं कि 8 से 11, 12 बजे तक भाई प्रोग्राम, 12 बजे तक है रात के हम सफ़र का मतलब, 12 बजे तक हम आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि 12 बजे तक आपकी यादों के साथ चलते रहेंगे आप, हम और आप। तो आप बता रहे हैं कि आप पूरा प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोग्राम सुनते सुनते आप मैथ्स के क्वेश्चन को हल करते हैं, भाई ऐसे कैसे कर लेते हैं आप। मैथ्स पढ़ते हुए तो मेरी गिग्गी बन जाती थी और मैं कुछ नहीं करती थी उस समय, मैं सोचती थी कि बस अब मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ पढ़ रही हूँ। तो आप तो बड़े बहादुर निकले सौरभ जी। तो चलिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और आपके इस मैसेज के लिए आपको थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही साथ अच्छा उन्होंने दो लाइन लिखी है, भाई पढ़ लेती हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी है कि रोजी एक चाल से चलता हूँ, पैर बंधे से लगते हैं, याद आती है वो उंगलियाँ जिन्हें पकड़कर हम इटलाते हुए चलते थे। क्या बात है, याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी मम्मी को फ़ोन कर लीजिए अगर कहीं दूर हैं तो। और इसी के साथ ही वैभव प्रकाश जी हमें मेल करते हैं महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से, और कहते हैं पॉप टाइम सुनने वाले सभी लिसनर्स और अनामिका मैडम को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और भाई एक इन्होंने बहुत सारी लाइन्स लिखी हैं तो इसे मेल को थोड़ा छोटा करेंगे ना वैभव जी, आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास।

मेल सबके लेना है क्योंकि मोहब्बत तो सबने भेजी है। इजित और प्रोग्राम पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच, आपने हमें महाराष्ट्र से इतनी सारी मोहब्बत दी इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही साथ आइए बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। शिव प्रकाश जी का मेल फतेहपुर से, और आप कहते हैं प्लीज़ मैडम बात स्वताओं को ज़रूर शेयर करें, एक बात स्वताओं को ज़रूर शेयर करें प्लीज़। तो इसका आप ना मुझे थोड़ा इलैबोरेट करें, ये तो नहीं समझ में आया। ईयरफोन के इस्तेमाल से पहले जान ले खास नियम। अच्छा ये तो देखिए ऐसा है शिव प्रकाश जी, बिल्कुल आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन अब ये प्रोग्राम ऐसा है कुछ कि हम आपकी इतनी सारी बातें नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी मोहब्बत अभी लाइन में है, बहुत सारे मेल्स अभी लाइन में है। तो मैनुद्दीन साहब हमें कहते हैं सीतापुर से, और कहते हैं आपको प्यार भरा नमस्कार, बहुत धमाकेदार प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू मैनुद्दीन साहब। और इसी के साथ ही आंचल हमें कहती हैं क्या खूबसूरत पेशकश, थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच। बाबू अंसारी जी हमें कहते गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग, और आप हमें कहते हैं प्रोग्राम हनहनुआ लहलहुआ जबरदस्त, अरे इतना सारा उपमान, थैंक यू सो मच। और इसे आप बस नाचते रहिए, झूमते रहिए, थिरकते रहिए, और हम तो आपको खैर एक से बढ़ के एक गाने सुनाते रहेंगे जैसा कि हमने वादा किया था। और आप हमें लिखते, अच्छा आपने आकाशवाणी को लिखा है आई लव यू आकाशवाणी, बिल्कुल आकाशवाणी भी अपने लिसनर से उतनी ही मोहब्बत करती है, तो थैंक यू। और इसी के साथ ही मनोज विश्वकर्मा जी कहते हैं नामिका जी गुड इवनिंग, जब आप आती हैं तो प्रोग्राम कोई भी हो प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं, अरे आपके मेल से भी तो 14 चांद लगे हैं, और आपका भी थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, मेल करने के लिए। आबशार भी आपको बहुत पसंद आया, आप हमें लिखते हैं छत्तीसगढ़ से एक और मेल आया हमें सीमा पार से, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा के पार से। और इसी के साथ ही विकास जी यादव जी हमें लिखते हैं आप हमें सुल्तानपुर से सुन रहे हैं और इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू विकास जी आपके मेल के लिए। और इसी के साथ ही रोशनी रावत जी हमारी रेगुलर लिसनर, हमारी बहुत प्यारी लिसनर रोशनी जी हमें कहती नमस्ते दीदी जी, आप बहुत कलरफुल लिखा है इन्होंने, मतलब मैं दिखा सकती ना तो आपको देख के बहुत अच्छा लगता, पिंक ग्रीन ब्लू, मतलब क्या बात है, बहुत सारे दिल और बहुत सारे फूल के साथ, तो वर्चुअल है लेकिन हम ले लेते हैं। तो कहती हैं कि नमस्ते नामिका दीदी आप कैसी, मैं बिल्कुल बढ़िया, आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत दिन के बाद आई हैं आप। हाँ जी थोड़ा सा टाइम तो हो गया, आप गायब हो गई थी, तब से कितना इंतज़ार किया है, चलो कोई बात नहीं आप आए दुरुस्त आए, लेकिन आप आई तो सही, आते ही गजब की शुरुआत कर दी, मत पूछे कितना अच्छा लग रहा है, लाजवाब बिंदास कमाल प्रोग्राम, एकदम गर्दा उड़ गया प्रोग्राम, इतना बिंदास चल रहा है, इतना झूम रही है, खुद को रोकना नामुमकिन है, तो आप रोकिए नहीं खुद को, झूमते रहिए। आप हमें लिख रही हैं सफीपुर जिला उन्नाव से बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलफशा, साजिया अंसारी, साहिबा अंसारी, संध्या दीदी, सभी लोगों को मेरा सलाम बोल दीजिएगा दीदी, बिल्कुल इस प्रोग्राम के माध्यम से चला गया आपका सलाम सब तक। और बाकी के मेल्स अभी हम ज़रूर पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे, लेकिन इस सुंदर से खूबसूरत से थिरकाने वाले गाने के बाद, तो क्या कहते हैं थिरकना स्टार्ट।

हाँ जी, ये तो समझ में आ गया आज की प्रोग्राम जल्दी जल्दी बीत गया, मुझे भी पता नहीं चला और आप लोगों को भी नहीं पता चला। लेकिन आपके मेल्स देखे आज मैं, एक बात समझ में आ गई मुझे कि भाई प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी और क्या होगी कि प्रोग्राम आपने एंजॉय किया, गाने आपने एंजॉय किए। तो चलिए ले लेते हैं अगला मेल मनोज जी का। मनोज विश्वकर्मा जी हमें लिखते हैं ताराग्राम शिव जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, और कहते हैं बस बात वही कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था। थैंक यू मनोज जी, विकास जी थैंक यू सो मच एक बार फिर से मैसेज करने के लिए। एमन, हमारी प्यारी एमन की तबीयत नासाज है भाई, और आप हमें लिखते हैं संडीला से, एमन तबीयत जल्दी सही करिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, हम आपसे जल्दी जल्दी मिलेंगे। और यस, आपको प्रोग्राम मुझे पता है बहुत पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए एमन, आप जल्दी से ठीक होइए, लव यू लॉट्स। और इसके साथ ही प्रवीण जी हमें लिखते हैं कि बस ऐसे ही लेटेस्ट धमाकेदार सॉन्ग प्ले करते रहिए। तो थैंक यू प्रवीण जी। विवेक कश्यप जी हमें लिखते हैं ससरिया से और सीतापुर से, और कहते हैं भाई थैंक यू। अरे, और आपको थैंक यू विवेक जी कि आपने इतना सुंदर सा मेल किया, लेकिन ये फरमाइश प्रोग्राम नहीं है विवेक जी, सॉरी। बाबू अंसारी जी हमें लिखते हैं बाराबंकी से, थैंक यू बाबू जी, एक बार मेल आपने किया है, इससे पहले हमने पढ़ा है आपका मेल। मोहम्मद सबीर अंसारी जी थैंक यू कानपुर से हमें लिखने के लिए, और कहते हैं कि बहुत दिन बाद आई हैं आप लेकिन मुलाकात तो हुई। चलिए साबिर साहब, आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही विपिन कुमार दुबे जी हमें कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और प्रेजेंटेशन की भी इन्होंने बहुत तारीफ की है, थैंक यू सो मच। जिशान साहब, वारिस अली खान साहब, आप कहते हैं कि भाई मेल आया नहीं, मेल आई कौन सा सही है, मेल आया, मेल आ गया नहीं, ये ज़्यादा सही है। तो वारिस साहब थैंक यू सो मच आपकी इस शिद्दत से सुनने को और इतनी तारीफ के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही साथ वनीत साहब, बबीता राव जी, हमारी प्यारी बबीता जी जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं और बहुत प्यारी लिसनर हैं, इन्होंने भी खूब मतलब दिल विल बना के कलरफुल लिख के भेजा है, तो थैंक यू सो मच बबीता। आज मेल थोड़ा छोटा करूँगी इसलिए गुस्सा नहीं होने का, तो थैंक यू सो मच आपके पूरे परिवार को भी मेल प्रोग्राम सुनने के लिए, और तरक्ते रहिए बस यूं ही, बस आप भी स्वीट हार्ट ही हैं बबीता जी, थैंक यू सो मच। कोमल जी थैंक यू सो मच मेल के लिए, एम के राज और रोशनी रावत जी थैंक यू सो मच रोशनी प्रोग्राम इतना पसंद करने के लिए, मेल करने के लिए थैंक यू। धर्मवीर भारती जी, प्रवीण कुमार जी, महेंद्र जी एक बार फिर से मेल करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ ही साथ अब आ चुका है प्रोग्राम वाइंड अप करने की बारी। अब क्या है ना कि ये 10 कैसे बज जाता है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन फिलहाल आपकी यादों के सफ़र पे यानी प्रोग्राम रजनीगंधा में भी आपकी रात की हम सफ़र अनामिका रहेगी आपके साथ। लेकिन एक गाना छोड़ के जाती हूँ आपके लिए कि 10 बजे तक तो बस आप अपनी कुर्सी से ना हिलिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और हाँ लिसनर्स, हमारे बंधु भाई बहन आप सबको, दोस्त सका आप सभी को इतने खूबसूरत से मेल्स करने के लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का इतने

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: नमस्कार, रात्रि के 10 बज रहे हैं और आप सुनिए मुख्य समाचार। जनपद चित्रकूट में केंद्र सरकार की सेवा सुशासन एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संचालित समेकित जनकल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस, हरित ऊर्जा, कृषि विकास तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षण रूप से प्रस्तुत किया गया। पांचवें सिख गुरु त्याग तपस्या एवं मानवता के महान प्रतीक श्री गुरु अर्जुन देव जी की पावन शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित सिखी मेरी पहचान फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि एवं धार्मिक कार्यक्रम में भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने सहभागिता कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी का जीवन सत्य, सेवा, त्याग, सहिष्णुता और मानव कल्याण के आदर्शों का अनुपम उदाहरण है। जनपद बलरामपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने सभी लोगों से सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग सप्ताह के अंतर्गत गांव एवं विभिन्न स्थानों पर लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। योग केवल एक दिन का काम नहीं, ये 365 दिन करने का अभ्यास है। मैनपुरी जनपद में संचालित मिशन समाधान अभियान के तहत वर्षों से लंबित भूमि विवादों के निस्तारण में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील कुरावली और सदर क्षेत्र में गांव में पहुंचकर मौके पर सुनवाई करते हुए दशकों पुराने पट्टा और भूमि विवादों का समाधान कराया। तहसील सदर के ग्राम सूरजपुर मनोना में रामा देवी को करीब 48 वर्ष पूर्व पट्टे पर आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया था। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश और सीमांकन कराया तथा सभी पक्षों की मौजूदगी में उन्हें उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

तेज हो जाता है खुशबू का सफर शाम के बाद। फूल सहराओं में भी खिल उठते हैं मगर शाम के बाद। दिन तेरे हिज्र में कट ही जाता है जैसे तैसे। मुझसे रहती है खफा मेरी नजर शाम के बाद। जी हां, शाम के बाद शुरू होता है ख्वाबों का दस्तक देना। शाम के बाद ही तो सस्ती है तन्हाइयों की महफिल। शाम के बाद शुरू होता है यादों का खूबसूरत सा सफर। ढलती रात में रोशन होते हुए खूबसूरत गीतों के चराग। एफएम रेनबो पर महकती हुई रजनीगंधा और मैं अनामिका आपके साथ।

बिना नाम के रिश्ते। जी हाँ, हम सब की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमें अचानक से या यूं कहें कि नसीब से मिलते हैं, जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता लेकिन वो अजनबी सबसे ज्यादा अपने होते हैं। हर वो इंसान जिससे दिल जुड़ जाए, जरूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप में हो। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से होते हैं। जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो सबसे पहले उसी का ख्याल आता है कि काश ये बात उससे बता पाते। कभी जब दिल टूट रहा हो या सब कुछ गलत लग रहा हो, तब भी सबसे पहले उसी की याद आती है। ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता, फिर भी एक अजीब सा सुकून होता है उनके होने से। बिना नाम वाले रिश्ते अक्सर बहुत खूबसूरत होते हैं। शायद दुनिया इस रिश्ते को कभी कोई नाम ना दे पाए, लेकिन हमारा दिल ये जानता है कि रिश्ते हमारे लिए सबसे खास हैं, सबसे खास।

बात मोहब्बत की चल रही हो और सच्चा प्यार कैसे डिफाइन होगा, इस मुद्दे पे बात ना हो ये कैसे हो सकता है? सच्चा प्यार क्या होता है आखिर? सच्चा प्यार, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल सपनीली दुनिया की तरह। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि शायद ये एक ऐसा झूठ है जो फिल्मों ने फैलाया है। पता नहीं मिलता भी है कि नहीं सच्चा प्यार। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि सच्चा प्यार मिल जाए ना तो इंसान और भी ज्यादा ईमानदार हो जाता है और ऑनेस्ट हो जाता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा डरपोक भी हो जाता है। दरअसल सच्चा प्यार या प्यार हमें स्ट्रांग नहीं बनाता बल्कि इंसान बना देता है। ये जानते हुए कि पता नहीं ये सच्चा प्यार है भी या नहीं, लेकिन मुझे हो गया है।

एक दिन, एक दिन तुम्हें कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो शायद तुम्हारी जिंदगी के हिस्से में नहीं होगा, फिर भी तुम जियोगे उसके साथ गिने चुने बहुत सारे खूबसूरत शामें। उन शामों में जाने अनजाने तुम बांटोगे कई गम और बहुत सारी खुशियां, साथ में तुम सुनोगे उनकी अनगिनत बातें और हर किस्से पे मुस्कुरा दोगे। उसके नाम पर ही तुम खिल उठोगे। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे हिस्से में ना आ पाने वाला वो शख्स न जाने कब तुम्हें सबसे ज्यादा अपना सा लगने लगेगा।

लेकिन जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक तुम्हारे जुदा होने का वक्त आ चुका होता है। और वो कहते हैं ना कि तकदीर सबको सब कुछ नहीं देती, तो जो भी खुशी जिस पल में हमारे पास हो उस खुशी को उस पल में मन भर के जी लेना चाहिए।

दिल टूट ना जाए इस बात पर इतना जोर लगाया मैंने, दिल टूट ना जाए इस बात पर इतना जोर लगाया मैंने, और तुम तक आवाज जाए मेरी बस इतना ही शोर मचाया मैंने। पता है किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा पेनफुल क्या होता है? सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई रिश्ता टूट रहा हो,

बल्कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब रिश्ता चल तो रहा होता है लेकिन महसूस नहीं होता, उस रिश्ते की गर्मी महसूस ना हो रही हो, क्योंकि तब दोनों ही इस कश्मकश में होते हैं, दोनों ही कह नहीं सकते कि सब कुछ गलत है, लेकिन ये दिल भी मान नहीं पाता कि सब सही है। बस एक हल्का सा सवाल, बस एक छोटा सा सवाल दिल में जहन में रह जाता है, हर बात हर चीज में रह जाता है कि हम साथ तो हैं लेकिन मिलते कब हैं।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: नमस्कार, रात्रि के 11 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। जनपद बलरामपुर में भूमि विवादों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण

निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन द्वारा नवीन पहल की गई है। इसी क्रम में तहसील तुलसीपुर के ग्राम विजय डीह में विशेष कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने स्वयं उपस्थित होकर भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इससे गांव की समस्याओं का निस्तारण होगा और भूमि विवाद में आपसी लड़ाई व झगड़े से लोग बच सकेंगे। बदायूं में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों व संचालित योजनाओं पर आधारित डायट परिसर में 4 दिवसीय प्रदर्शनी के दूसरे दिन आमजन में सरकार की योजनाओं को जानने की उत्सुकता देखी गई। सभी ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि बुधवार को जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन व पर्यावरण डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी आगामी 20 जून तक आम जन के अवलोकन के लिए संचालित रहेगी। महोबा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन को लेकर हलचल तेज हो गई है। आगामी 21 जून को होने वाले इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। राजनीतिक जानकार इस दौरे को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के शंखनाद के रूप में भी देख रहे हैं। यही वजह है कि तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की तपस्थली के दर्शन भी कर सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थान का सुंदरीकरण किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीजी प्रयागराज ज्योति नारायण खुद महोबा पहुंच गए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे योग सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आज अमरोहा में कलेक्ट्रेट परिसर में आयुष विभाग के मास्टर योगा ट्रेनर योगाचार्य नीतीश भारद्वाज द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। योगाचार्य नीतीश भारद्वाज ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार होता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रात्रि के 11:05 और आप हैं अपनी यादों के खूबसूरत से सफर पर, अपनी रात के हम सफर अनामिका के साथ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा में, सिर्फ और सिर्फ सौदा।

ने रात के हम सफर अनामिका के साथ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। कैफी आजमी साहब की एक शायरी है कि रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा, बात नहीं करनी तो मत कर, बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। पहले बात करने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, एक छोटी सी बात हुआ करती थी और साथ में बैठ के बात कर लिया करते थे, शेयर कर लेते थे। आजकल बात तो होती है लेकिन ज्यादातर किस बारे में? बिजली का बिल, कल का स्केड्यूल, बच्चों का काम, घर में खरीदारी, वीकेंड्स के प्लान। जिंदगी चल रही है, घर भी चल रहा है और रिलेशनशिप भी चल रहा है, बस बीच का, या यूं कहें कि बीच के, इस बीच के हम धीरे धीरे बिल्कुल चुप हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं।

इग्नोर होना बुरा लगता है ना? मुझे तो बहुत बुरा लगता है इग्नोर होना। लेकिन एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि हर कोई आपकी जिंदगी का ऑडियंस नहीं है। कुछ लोग सिर्फ जिंदगी के रास्तों पर मिलते हैं, हमारी मंजिल तक हमारे साथ साथ नहीं चलते। जो आपको जिंदगी के दुश्वार राहों की, जो आपको जिंदगी के कठिन सफर से कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए देखना नहीं चाहता, आपका साथ देना जरूरी नहीं समझता, उसका साथ देना ना देना आपकी जिम्मेदारी तो कतई नहीं है। इसीलिए अपने दिल पे कभी भी कोई बोझ ना रखें, किसी भी कंडीशनल रिश्ते का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे तरफ से बहुत सारी उम्मीदें हों। बस ऐसे रिश्ते जहां जैसे छूट जाएं, उन्हें बस वहीं से जिंदगी का एक मोड़, एक किरदार मान के छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए। और इसी बात पे साहिर साहब ने कहा भी है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा।

दिल की हालत संभल गई है अब, तेरी याद आगे निकल गई है अब। कल तू शामिल था मेरी किस्मत में, कल तू शामिल था मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत बदल गई है अब। वो पूछेगा हाल मेरा, वो तुमसे पूछेगा हाल मेरा, उससे कह देना कि वो संभल गई है अब। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक हमें किसी का धोखा या किसी का फरेब नहीं सिखाता, बल्कि अक्सर मोहब्बत सिखाती है। ये मोहब्बत अक्सर हमें झूठ में रखती है, फरेब में रखती है, हमारे दिल को लाइलाज कर देती है। जिन जिन लोगों के हिस्से में धोखा आया है, फरेब आया है, उन्होंने एक बार खुद को तो पा लिया है, लेकिन अपना दिल नहीं संभाल पाते हैं मोहब्बत में धोखा मिलने पे, फरेब मिलने पे। मोहब्बत में धोखा शायद इस जिंदगी का सबसे

जॉन एलिया साहब की एक शायरी है कि सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, कि सिलसिला ही ना होता ना ही गिला होता, या तो तू मिल गया होता या तो मिला ही ना होता। कहते हैं कि आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ दिया हो, लेकिन फिर भी आपके इस इमोशन की, इस एहसास की कदर ना हुई हो, तो जानते हैं फिर नमक की तरह हो जाना चाहिए। कैसे? अपनी गैर मौजूदगी, यानी कि अपनी एब्सेंस देकर। क्योंकि खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं होता ना, तो खाना बिल्कुल टेस्टलेस हो।

लगता है उसमें कोई स्वाद नहीं होता। लाख मसालों के बाद कई बार नजदीकियां जो नहीं कर पाती हैं वो दूरियां कर देती हैं।

लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। और वैसे भी लाइफ को लेके हमारी थियरी कुछ यूं होनी चाहिए कि जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। चीजों को सुलझाने के लिए थोड़ा उलझना भी जरूरी है, निखरने के लिए थोड़ा बिखरना भी जरूरी है। और इसी बात पे किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि उस इंसान को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो।

रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, हर रात का सवेरा होना बिल्कुल तय है। हर अंधेरे के बाद रोशनी इंतजार कर रही होती है। अपने दिल में उम्मीद का सूरज हमेशा जगाए रखिएगा, क्योंकि ये जिंदगी बहुत हसीन है। सिर्फ और सिर्फ जीने का सलीका आना चाहिए और ये जिंदगी हर पल जी लेने का नाम है, क्योंकि जो है आज है, अभी है, कल किसने देखा है। बातों और यादों का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये घड़ी की सुइयां अब हमसे इजाजत मांग रही हैं। आज की रात जिन गीतों को हमने सुना, जिन जज्बातों को हमने आपने महसूस किया, उन्हें अपने दिल के कोने में कहीं महफूज रखिएगा। रजनीगंधा की ये महक आपके सपनों को और भी मीठा बनाए, बस यही दुआ है। फिर किसी दिन जल्द ही मिलेंगे, इसी वक्त इसी अंदाज में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, कोशिश करिएगा कि किसी की जिंदगी का उजाला जरूर बनिएगा। FM रेनबो 100.7 FM पर सुनते रहिए जिंदगी की धड़कनें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: नमस्कार, रात्रि के 12 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार।

0: समाचार। प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आज अमरोहा में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर राज्य मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं, महाविद्यालयों की प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र हितों एवं संस्थागत विकास से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, नवाचार, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास की आधारशिला है। उन्होंने सभी महाविद्यालयों को वृक्षारोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने, विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग सप्ताह के अंतर्गत संभल जनपद के तहसील चंदौसी परिसर में उप जिलाधिकारी नीतू रानी के नेतृत्व में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार रविन्द्र विक्रम, नायब तहसीलदार, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं, लेखपालों, अमीनों तथा तहसील के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को योग के विभिन्न आसनों एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की और कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधित प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक एवं विकासगत आवश्यकताओं की गहन जानकारी होती है। ऐसे में उनके सुझावों एवं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शासन को शीघ्र कार्ययोजना प्रेषित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने तथा समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:12 और सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए एफएम रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिस्निंग टू एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:03 हुए हैं।